प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आस्था के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको आस्था।
1: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ अहम खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के समाचारों में। घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने के लिए डोमेस्टिक अब्यूज बिल लेकर आ रही है। ये नया कानून मौजूदा प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जगह लेगा और घरेलू हिंसा से बदलते स्वरूपों को ध्यान में देखा जाएगा। इसके तहत शारीरिक हिंसा के साथ साथ आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरणों के उपयोग को लेकर बनी जो स्थिति है उसको दूर करने के लिए सरकार कानून की समीक्षा करेगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि रोड ट्रैफिक एक्ट और उससे जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन लाए जाएंगे ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हैंड्स फ्री डिवाइस और गाड़ी में लगे कम्युनिकेशन जो सिस्टम का उपयोग ड्राइविंग के दौरान किया जा सकता है या नहीं। सरकार ने निजी प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए ग्रांट इन एड स्कीम में बदलाव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च कम करना, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और कर्मचारियों की नौकरियां सुनिश्चित करना तथा निशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा को जारी रखना है। कैबिनेट ने कल नोट किया कि मॉरिशस में वर्तमान में 8,975 बांग्लादेशी कामगार कार्यरत हैं। इसके अलावा भारत से 15,840, नेपाल से और 14,821 और मडागास्कर से 9,995 कामगार देश में काम कर रहे हैं। वक्वा, क्यूपी और सैम्पिया के निवासियों के लिए पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव लाया जा रहा है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी यानी CWA ने घोषणा की है कि इन 3 इलाकों में पानी वितरण के लिए नए समय 17 जून से लागू होंगे। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।

0: हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है और पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को आज रात्रि से प्रभावित करने लग जाएंगे। सुबह के दौरान केवल ऊंचाइयों पर कुछ कुछ वर्षा हो सकती है, अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर आज दोपहर बाद वर्षा हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगे। हवा हल्की बहेगी, पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में नहीं जाएं। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहिली इलाकों पर 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:42 पर हुआ है और सूर्यास्त होगा शाम को 5:37 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
1: Your news on NBC Play. NBC Play.
3: 819 kilohertz. ये है Radio Mauritius. Radio Mauritius.
4: एक नई सुबह है आज, नई दिन की शुरुआत। आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। अभी आप सुन रहे हैं AM2 रेडियो मॉरिशस, MBC रेडियो मॉरिशस, और आप हमें रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर देख पा रहे हैं। थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए। और अगर आपने वादा किया है कि आज आपका चाप हमारा साथ देंगे, तो बेशक हमारा और आपका साथ रहेगा अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक। आज है शनिवार का दिन, शनिवार 13 जून साल 2026। परमपिता परमेश्वर भगवान से यही प्रार्थना है कि आज की सुबह और आज का पूरा दिन आप सभी लोगों के लिए अच्छी तरह से बीते। आज आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें और मुस्कुराते हुए इस दिन को बिताएं। जो बीत चुका वो एक सपना था, जो है वो आपका हकीकत है और आपका आने वाला भविष्य है। अकर्मण इंसान वो है जो अपने वर्तमान में रहता है और अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि नहीं? सो प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इस नई सुबह की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। हम आपका साथ देंगे दिन की 9 बजे तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रातकालीन सभा को गहलोत राजपूत महासभा के कार्यक्रम के साथ, और प्रोग्राम है वैदिक नाथ।

0: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से आइए सुनिए
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता
2: आनंद मंगल करूं
0: वैदिक नाथ
2: जय

दिव्यु सज्जनों प्यारे बच्चों सादर सप्रेम नमस्ते। वैदिक नाद कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जून महीने में सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में हम सभी सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का नियमित पाठ करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश गुरुवर विरजानंद स्वामी जी के आदर्श शिष्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की अमर कृति है, एक कालजयी ग्रंथ है। हमने अपने प्रवचनों में बतलाया था कि सत्यार्थ प्रकाश एक दर्पण है जिसमें हम सत्य और झूठ के सही स्वरूप का दर्शन करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश वह संजीवनी बूटी है जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र को नवजीवन प्रदान करता है। सत्यार्थ प्रकाश वो पथ प्रदर्शक ग्रंथ है जो भूले भटके लोगों को सही मार्ग दिखलाता है।

सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर हम हमारे ऋषि महर्षियों के कल्याणप्रद जीवन पद्धति का दर्शन करते हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान है और हमारे ऋषि महर्षि ईश्वर प्रदत्त वेद विद्या को अपनी अपनी पुस्तकों में, ग्रंथों में समझाए हैं। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश वेदों का द्वार है, वेदों तक पहुंचने के लिए प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है। श्रोताओं, सत्यार्थ प्रकाश में हम सभी लोगों के लिए सत उपदेश हैं, माँ के लिए, पिता के लिए, आचार्य के लिए, गृहस्थियों के लिए, वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए भी, देश और राष्ट्र के लिए, राजा और राजपुरुषों के लिए, मंत्रियों के लिए, कर्मचारियों और प्रजाओं के लिए भी सत्य उपदेश है। इसी प्रकार से बालक और बालिकाओं, विद्यार्थी विद्यार्थिनियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एकोलिए एचिजियों के लिए भी सत्यार्थ प्रकाश में अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे उपदेश स्वामी जी ने लिखा है। देवियों सज्जनों, वेद कहता है, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, अर्थात पुत्र मतलब बच्चे अपने पिता के अनुव्रती बने। जिस धर्म पथ पर, सत्य मार्ग पर पिता चलते हैं, वेद कहता है बच्चों को भी उसी मार्ग पर चलना चाहिए। और मात्रा भवतु सम्मना कि बच्चे अपनी माँ के मन वाले होवें। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी महाराज लिखते हैं, ये नास्य पितरो याता, ये न याता पिता महा, तेन यायात सताम मार्गम, तेन गच्छ ऋष्यते। प्यारे बच्चों, स्वामी जी उपदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार वेदों में परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि बच्चों को अपने माता पिता के अनुगामी होना चाहिए या बनना चाहिए, वैसे ही स्वामी जी दोहराते हैं, ये नास्य पितरो याता, ये न याता पिता मह, मतलब कि जिस मार्ग पर हमारे, तुम्हारे पिता और पितामह मतलब पिता और दादा लोग चले हैं, उसी मार्ग पर हमें बच्चों चलना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि बाप और दादा ने जीवन भर जो कुछ कमाए, जो कुछ बनाए, आज हम सभी उसी दृढ़ आधार पर खड़े हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम यहाँ से अपने कदम को सही दिशा की ओर बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, महर्षि ने इस श्लोक में एक और अच्छा विचार दिए हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में महर्षि स्वामी दयानंद जी हमें समझाते हैं और बतलाते हैं, तेन यायात सताम मार्गम कि तुम्हें चलना है, हमें चलना है सताम मार्ग पर। यदि हमारे बाप दादी सत्पुरुष है तभी हमें उनके मार्ग पर चलना है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि यदि हमारे पिता दादा दुष्ट हों तो उनके मार्ग पर कभी न चलें। सत्यार्थ प्रकाश में जहाँ स्वामी जी ने यह सुंदर उपदेश बच्चों को दिया है, वहाँ माता पिता आचार्य के लिए भी लिखा है, यानी स्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपासयानि, अर्थात माता पिता और आचार्य को अपने बच्चों और शिष्यों को हमेशा कहना है कि यानी स्माकं सुचरितानि, जो हमारे अच्छे विचार है, अच्छे गुण हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी आदतें हैं, उनको ही अपनाएं, धारण करें, और नो इतरानी, जो गलत है, अशुभ है, वो नहीं अपनाएं। तो आपने देखा ना बच्चों, जो स्वामी जी के उपदेश है, विचार है, वे केवल हमारे बच्चों के लिए ही नहीं है, अपितु दुनिया भर के बच्चों के लिए है।
अमेरिकन

अफ्रीकन, एशियन, यूरोपियन आदि देशों के लिए भी है, मतलब मनुष्य मात्र के लिए है। इसी को कहते हैं ऋषि उपदेश, जो सबके कल्याण के लिए होता है, केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं। केवल इतना ही नहीं बच्चों, स्वामी जी कह रहे हैं कि चोरी, आलस्य, प्रमाद, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ, लालच आदि दोषों को छोड़ने में तत्पर रहें, सत्य का ग्रहण करें, क्रोध आदि दोष और कटु वचन को छोड़ शांत और मधुर वचन ही बोलें और वकवाद न करें। जितना बोलना आवश्यक है उससे न्यून यानी कम व अधिक ना बोले। बड़ों को सदा मान दें, उनके सामने उठकर प्रथम नमस्ते करें, सज्जनों का संग और दुष्टों से दूर रहें, अपने माता पिता और आचार्य की तन मन और धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीतिपूर्वक सेवा करें। इसी को हम मदर्स डे, फादर्स डे और टीचर्स डे कहते हैं, जो एवरी डे है। इससे बढ़िया विचार स्वामी जी देते हैं कि ये तीनों देव हैं, देवता हैं, मातृमान, पितृमान और आचार्यवान। तो बच्चों, आपने देखा ना स्वामी जी आप लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए क्या क्या बतलाए हैं और उनके विचार कितने अनमोल हैं। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी हर प्रकार से बच्चों को सावधान करते हैं और उनकी रक्षा के लिए कहते हैं कि विद्यालय में जहाँ अपने आचार्य के साथ रहते हैं, उसी प्रकार जब भी कभी भ्रमण आदि करने को जाए तो आचार्य जी को भी उनके साथ देखभाल के लिए सदा रहना है और बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चे पेड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, नदी जलाशयों में खेलना, तैरना पसंद करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं ना विज्ञाते जलाशय, कि जो नदी है, जलाशय है, समुद्र है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। बालक बालिकाओं को हर प्रकार से माता पिता और आचार्य देखभाल किया करें। देवियों सज्जनों, हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि कहीं कहीं पर बच्चे गुम हो जाते हैं, दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं और अनेक स्थानों पर बच्चों के सोने आदि के आभूषण चोर चुरा ले जाते हैं और कभी कभी बच्चों की हत्या भी कर डालते हैं। इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वामी जी कहते हैं कि सोने आदि के आभूषणों को बच्चों को धारण न कराएं। इन आभूषणों से सुंदरता नहीं बढ़ती है अपितु खतरा बना रहता है। स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में माता पिता और आचार्य को परामर्श देते हैं कि बच्चों की सुंदरता शुद्ध आहार विहार, शुद्ध कपड़ों के साथ, अच्छी आदतों और किस के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और मंत्र श्लोक कविता पठन आदि की शिक्षा से सुंदरता बढ़ती है।

भूषणम भूषणम। इस सुंदर श्लोक में समझाया गया है कि वाग भूषणम भूषणम की मीठी वाणी जिसमें सत्यता हो, जिसमें कोमलता हो, वही सच्चा आभूषण है। इस प्रकार के मीठे सुंदर शिक्षाप्रद जहाँ सभी लोगों के लिए हैं, वहाँ बच्चों के

के लिए भी विशेष स्वामी जी ने लिखा है। आपके ध्यान के लिए ये धन्यवाद। ओम शांतिश शांतिश शांति ही।

प्रिय श्रोताओं, आपको याद दिला देते हैं कि 3 मिनट में सुबह की 6:20 होने वाली है। ठीक समय आप सुनेंगे सत्यात प्रकाश माँ के संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम, और यह कार्यक्रम आप सुनेंगे आचार्य सुनील जी द्वारा। और ये वार्ता मैं लेकर जाएगा सुबह के ठीक 6:30। ठीक 6:30 आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल, स्पोर्ट्स रिव्यू, सुनाल दे लोंग आदि आदि। उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह के 7:00 मस्त मॉर्निंग शो में, सुबह का नजाना प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मॉरिशस।

0: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। सत्यार्थ प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारी सभा की ओर से प्रस्तुत हैं विशेष कार्यक्रम। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुलास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुस्मृति के श्लोकों को उद्धृत करते हुए सदाचार अर्थात नैतिक आचरण पर जोर दिया है और उसे परम धर्म माना है। आचारः परमो धर्मः, श्रुत्युक्तः स्मार्थ एव च, तस्माद् अस्मिन् युक्तो नित्यं स्याद् आत्मवान् द्विजः। वेद एवं शास्त्र अनुकूल आचरण ही धर्म कहलाता है। जब हम इसे नित्य अपने जीवन से जोड़ देते हैं तभी हम धार्मिक कहलाने के योग्य होते हैं। तृतीय समुलास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेदोक्त कर्म और सदाचार का महत्व बताते हुए आचारहीनता का दुष्परिणाम भी बताए हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति वेदों और शास्त्रों को पढ़ता या सुनता है परंतु

उसके अनुकूल श्रेष्ठ आचरण नहीं करता, वह पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुख तभी मिलता है जब मनुष्य धार्मिक और सदाचारी जीवन जीता है। आचारात द्विज युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते, आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत। अर्थात कहने सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना, इसलिए धर्माचार में सदा युक्त रहें, धर्म संबंधी व्यवहार में सदा जुड़े रहें, क्योंकि जो धर्माचरण से रहित हैं, जो धर्म के आचरण से दूर हैं, वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख स्वरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। महर्षि दयानंद के इस कथन से क्या समझ में आया? महर्षि जी के कथन का अभिप्राय यह है कि धर्म केवल प्रत्यय या ज्ञान तक सीमित नहीं है, अपितु धर्म की सिद्धि आचरण से होती है, धर्म की सिद्धि होनी चाहिए। तीसरे समुल्लास में महर्षि दयानंद ने वेदों की निंदा करने वाले को नास्तिक की संज्ञा दी, नास्तिको वेद निंदक। जो व्यक्ति वेदों और उनके अनुकूल ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथों का अपमान करता है या अवहेलना करता है, उसे नास्तिक कहा गया है। ऐसे नकारात्मक और समाज को गुमराह करने वाले व्यक्ति को समाज और श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से दूर रखना चाहिए और बहिष्कार भी करना चाहिए। तृतीय समुल्लास में ही महर्षि दयानंद ने धर्म का चतुर्विध लक्षण बताया, अर्थात धर्म के चार प्रमुख लक्षण, वे हैं वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। यह मनुस्मृति का श्लोक है। धर्म का पहला लक्षण बताया गया वेद। वेद ईश्वर का ज्ञान और वेद अपने आप में परम प्रमाण है। वेद ईश्वर की अमर वाणी है। वेद परम धर्म है। और धर्म का दूसरा लक्षण स्मृति। स्मृति का अर्थ है ऋषियों द्वारा स्मरण किए हुए वेदानुकूल ज्ञान व ऋषियों द्वारा रचित मनुस्मृति आदि ग्रंथ। धर्म का तीसरा लक्षण है सदाचार, अच्छा आचरण, अत्यंत श्रेष्ठ पक्षपात रहित धार्मिक महात्मा एवं उत्तम विद्वान पुरुषों व महापुरुषों का व्यवहार सदाचार कहलाता है। वेदादि शास्त्र एवं महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलना सदाचार कहलाता है, उनके विपरीत चलना दुराचार कहलाता है। सदाचार पुण्य एवं श्रेष्ठ आचरण का परिचायक है और दुराचार पाप एवं दुष्टाचरण का पर्याय है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सदाचार को सुख का कारण बताया है। धर्म का चौथा लक्षण है स्वस्य प्रियमात्मनः, जो अंतरात्मा को प्रिय लगे, जो अपनी आत्मा की प्रसन्नता के अनुसार हो और जो अपनी आत्मा के अनुकूल भी हो। आत्मा वह अंतरात्मा की वह आवाज़ जिसमें किसी भी झूठ या अन्याय के लिए कोई स्थान न हो। अंतरात्मा की आवाज़ धर्म का पर्याय माना गया है। पक्षपात रहित न्याय, सत्य को स्वीकारना और असत्य को छोड़ना ही धर्म है। इसके विपरीत पक्षपात करना, अन्याय करना और असत्य का आचरण करना, असत्य को अपनाना अधर्म है। धर्म

जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति। महर्षि दयानंद ने वेद को सर्वोपरि माना है। उनके विचार स्पष्ट हैं कि यदि किसी स्मृति, पुराण या अन्य ग्रंथों की बात वेदों से टकराती है, वेदों के विरोध में आती है, तो वेदों की बात को ही परम सत्य माना जाएगा।

0: निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता। इस प्रकरण के अंत में महर्षि दयानंद ने कहा कि सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। सत्यार प्रकाश के तृतीय समुल्लास के इस नैतिक प्रकरण से क्या सीखा? प्रथम, मार्गदर्शन का महत्व। वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मा की आवाज हमारा मार्गदर्शन करते हैं। द्वितीय, जब कभी धर्म या आचरण को लेकर मन में कोई दुविधा उत्पन्न हो तो आप्त पुरुष, महात्मा, विद्वान और अनुभवी गुरु, ज्ञानी, शुभ चिंतक लोगों से परामर्श लेकर आगे बढ़ें। तृतीय, समाज में यत्र तत्र धार्मिक बातें अधिक होती हैं, आचरण कम। धार्मिक बातें अधिक होती हैं, आचरण कम। केवल धार्मिक बातें जानना पर्याप्त नहीं। महर्षि दयानंद का मानना है कि धर्म का वास्तविक फल अपने व्यवहार और आचरण में उतारने से मिलता है। जी हाँ, धर्म का वास्तविक फल अपने व्यवहार और आचरण में उतारने से मिलता है। चतुर्थ, धर्माचरण के लिए अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है। पंचम, वेद शास्त्रों के अनुकूल किया गया व्यवहार व आचरण मनुष्य को महान बनाता है। षष्ठम, धर्माचरण सुख का कारण है। आज की वार्ता यहाँ विराम लेती है। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: शनिवार 13 जून की सुबह 6:30 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कैबिनेट ने घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने के लिए नए डोमेस्टिक अब्यूज बिल को मंजूरी दी, जिसमें आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न को भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट ने गाड़ी चलाते समय संचार उपकरणों के उपयोग को लेकर बने विवाद की स्थिति दूर करने के लिए रोड ट्रैफिक एक्ट की समीक्षा और आवश्यक संशोधनों का निर्णय लिया, ताकि हैंड्स फ्री उपकरणों के उपयोग को स्पष्ट किया जा सके। वाकवा क्यूपिप सैंपिया में पानी वितरण के नए समय 17 जून से लागू होंगे, ताकि जल संसाधनों का अधिक संतुलित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। मॉरिशस में एमपॉक्स का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह का मॉरिशस ने कड़ा खंडन किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तहत कल कनाडा और बोस्निया के बीच मैच ड्रॉ गया। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिससे क्षेत्रीय तनाव कम होने और नई वार्ताओं का रास्ता खुल सकता है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट में लिए गए चंद प्रमुख फैसलों के बारे में, जो इस प्रकार हैं। घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने के लिए सरकार डोमेस्टिक अब्यूज बिल लेकर आ रही है। ये नया कानून मौजूदा प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जगह लेगा और घरेलू हिंसा के बदलते स्वरूपों को ध्यान में रखेगा। इसके तहत शारीरिक हिंसा के साथ साथ आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। पीड़ितों और उनके बच्चों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने, दोषियों को जवाबदेह बनाने तथा घरेलू हिंसा की घटनाओं को कम करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार पुनर्वास कार्यक्रमों और अदालत के आदेशों के उल्लंघन पर कड़े प्रावधान भी लागू करेगी। वहीं महिला हत्या और वैवाहिक बलात्कार को अलग अपराध के रूप में शामिल करने के लिए भी कानूनी संशोधनों पर काम जारी है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरणों के उपयोग को लेकर बनी विवाद की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार कानून पर फिर से गौर करेगी। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि रोड ट्रैफिक एक्ट और उससे जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन लाए जाएंगे ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हैंड्स फ्री डिवाइस

0: और गाड़ी में लगे बिल्ट इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स का उपयोग ड्राइविंग के दौरान किया जा सकता है। सरकार ने निजी प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए ग्रांटेड एड स्कीम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च कम करना, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, कर्मचारियों की नौकरियों को सुनिश्चित करना और निशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा को जारी रखना है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान जारी रहेगा। छोटे स्कूलों में शिक्षक और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियाँ एक ही व्यक्ति को सौंपी जा सकेंगी। कुछ वित्तीय सहायता और परिचालन खर्चों में कटौती की जाएगी ताकि जवाबदेही और निगरानी को और मजबूत बनाया जा सकेगा। नई व्यवस्था जनवरी 2027 से लागू होगी और इस पर लगभग 740 मिलियन रुपए खर्च होने का अनुमान है। कैबिनेट ने ये कल नोट किया कि मॉरिशस में वर्तमान में 8,975 बांग्लादेशी श्रमिक का कार्यरत है। इसके अलावा भारत से 15,840, नेपाल से 14,821 और मडागास्कर से 9,995 कामगार देश में काम कर रही है। अवैध भर्ती की समस्या से निपटने के लिए सरकार भर्ती पर फिर से गौर कर रही है। इस संबंध में मॉरिशस और बांग्लादेश के बीच एक समझौता तय किया जाएगा जिसके तहत बांग्लादेश सरकार की केंद्रीय एजेंसी विदेशी श्रमिकों की भर्ती प्रक्रिया को संभालेगी। कैबिनेट ने यह भी नोट किया कि लापता विदेशी श्रमिकों का पता लगाने के लिए पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ऑफिस अपनी कार्रवाई और तेज करेगा। कैबिनेट ने बीच अथॉरिटी मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक बीच रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत बीच अथॉरिटी सार्वजनिक समुद्र तटों पर भिन्न परियोजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी अन्य संस्थाओं या विभागों को सौंप सकेगी। इस संबंध में लिखित समझौते किए जाएंगे और ये नए नियम 20 जुलाई 2026 से लागू होंगे। कैबिनेट ने नोट किया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर त्रितुदेव दाउदारी को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। कैबिनेट ने दो प्रमुख नियुक्तियों पर ध्यान दिया है। गिरजा शंकर राजा रामदू सिंह को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं बराज नारू को CWA के बोर्ड का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। बलराज नारू 65 वर्षीय हैं और इस जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने सार्वजनिक सेक्टर में लंबे अनुभव का लाभ प्राप्त किया है। ये वर्ष 2011 से 2014 तक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरपर्सन रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने CEB में 33 वर्षों तक सेवा दी और इंजीनियरिंग विभाग में विभिन्न जिम्मेदारियाँ संभाली। पेशेवर जीवन के अलावा वे मराठी भाषा और सांस्कृतिक संस्कृति के प्रचार प्रसार से भी जुड़े हैं। वे मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के चेयरपर्सन रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2002 से 2016 तक मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की अध्यक्षता की और मार्च 2025 से जून 2026 तक एक बार फिर वे इस संगठन का नेतृत्व उन्होंने किया। बलराज नारू को सुनते हैं।
1: Monsieur le Premier ministre, pour la confiance placée en moi, en me nommant comme le chairman du Central Water Authority aujourd'hui. La priorité des priorités, dans une période difficile que le pays peut passer en termes de sécheresse, vous pensez une des bonnes priorités à chaud, Mopitiaou, ou à l'été, de toute façon que le CWA pour capable de satisfaction le public.
0: वाकुआ क्यूपिप और सैम्पिया की निवासियों के लिए पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव लाया जा रहा है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने घोषणा की कि इन तीन क्षेत्रों में पानी वितरण के नए समय 17 जून से लागू होंगे। ये फैसला जल भंडार में कमी की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इसका उद्देश्य उपलब्ध जल संसाधनों का अधिक प्रभावी, संतुलित और न्यायसंगत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। CWA के अनुसार इस नई व्यवस्था से प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। नए समय की जानकारी संबंधित उपभोक्ताओं को लागू होने से पहले उपलब्ध करा दी जाएगी। बात करते हैं अब ऐसे मुद्दे की जो आज के डिजिटल युग में बढ़ती चिंता का विषय बनता जा रहा है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के जरिए होने वाली ठगी के मामले मॉरिशस में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग नए तरीकों से लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं। FCC के अनुसार इस साल अब तक दर्ज की गई 57 धोखाधड़ी संबंधित जांचों में से 20 मामले इलेक्ट्रॉनिक ठगी से जुड़े हुए हैं। इन मामलों में अब तक 10 मिलियन रुपये से अधिक का

0: नुकसान हुआ है। सबसे अधिक निशाना बुजुर्ग लोगों को बनाया जा रहा है। रजनी बीकर।
1: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के लिए हालिया जांच है। असल में जांच के अंतर्गत पिछले बुधवार को डोडो टॉपअप कंपनी के निदेशक योहान मुहावियर को गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध व्यक्ति ने अपने आप को कमर्शियल बैंक का एक कर्मचारी बताया और व्हाट्सएप पर लोगों से उसने संपर्क रखा तथा उनसे उनकी बैंक संबंधी जानकारियां प्राप्त की। समझा जाता है कि उसने 2 मिलियन रुपए तक की रकम ऐंठ ली है। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट FCC के एक्टिंग हेड डैनियल चंगयान ने कहा,
2: Je trouve dans le logo de la banque locale, qui vous dit comme ça qu'il y a un problème là où dans ce cas-là, c'était une ordre de convaincre la personne. Je prétends être la banque, prétends être la police, custom, donc besoin d'une casse. Là où il y a un numéro qui une personne a venu rapporter, c'est un numéro étranger, plus 44 l'Angleterre, ou soit un numéro de Madagascar, de l'Afrique.
1: इस साल के शुरुआत से तथाकथित हेराफेरी की 57 जांच रही। 20 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से संबंधित 6 महीनों में इस तरीके से 10 मिलियन से अधिक रुपए की रकम डाइवर्ट की गई। FCC के एक्टिंग चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर इब्राहिम रोसाई ने कहा,
3: Malheureusement, c'est un monde vulnérable, une personne âgée qui est victime de sa bande fraudée. Étant donné qu'il nous a un mandat d'éducation et de prévention aussi, nous passons l'appel aux membres du public, à tout le monde, pour qu'ils aient fait bien attention quand quelqu'un demande un détail bancaire, que ce soit l'OTP, que ce soit l'account number ou ça, l'PIN number, ils besoin pas donné.
1: हाल में कुछ अलग तरीके की धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, यानी नकली डोमेन खासकर कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है।
2: At first sight, vous trouvez tout correct. Mais quand vous analysez bien, vous trouvez un petit point en plus, ou soit une exclamation, des trucs comme ça. Que des fois, la banque détectait, mais des fois, ça passait.
1: दो वर्षों में FCC में इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के 84 मामले दर्ज किए गए हैं। FCC ने इस शुक्रवार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे नकली नंबरों को उजागर किया जिनका इस्तेमाल फ्रॉड करने वाले कर रहे हैं।
0: कल सोशल मीडिया पर एमपॉक्स को लेकर एक अफवाह तेजी से फैलती रही। फेसबुक पर पीमा एफओ नामक मंच ने दावा किया कि एमोशस के एक एयर होस्टेस एमपॉक्स से संक्रमित हो गई है। हालांकि राष्ट्रीय विमानन कंपनी एमोशस ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इन दावों का खंडन किया है। एक बयान में कंपनी ने कहा कि ये जानकारी पूरी तरह झूठी और निराधार है। एमोशस ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो पीमा एफओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुनिश्चित करती है। याचना मिश्रा।
4: स्वास्थ्य मंत्रालय एमपॉक्स के मामले पर करीब से नजर रख रहा है। यदि किसी भी मामले का पता चला तो हम खुल के जनता को सूचित करेंगे। छुपाने वाली कोई बात नहीं। अभी के लिए एमपॉक्स के 2 मामले हैं। अभी भी वेसुयाक अस्पताल में भर्ती हैं। इलाज जारी है।
5: Donc, on a les deux personnes qui sont déjà admises, toujours à l'hôpital de Suya, et de payer un soin approprié.
0: तो अब ये आप डॉक्टर फाजिल कोदाबकस को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों की निगरानी जारी रखे हुए हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य अधिकारी पूरी पारदर्शिता के साथ स्थिति पर नजर रख रहे हैं। शांत मन और बेहतर जीवन शैली की ओर एक और कदम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में स्टेट हाउस पहली बार एक विशेष योग सत्र का आयोजन वहां पर किया गया। कल भारतीय उच्चायोग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का विषय था स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस पहल के माध्यम से लोगों को योग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सुमेर अकबर अली की रिपोर्ट पेश है।
6: ऐसे आदर्श जो संस्कृतियों, जबानों और सरहदों के भी परे हैं, आज योग दुनिया के 4 कोनों में रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पहली बार के लिए स्टेट हाउस रेजवी में एक योग सत्र का अहतमाम किया गया। कई मंत्रालयों और सरकारी तबकों के कर्मचारियों ने मुख्तलिफ आसन करते हुए इस सत्र में हिस्सा लिया।
7: I feel that my body has become more flexible. I am healthier.
6: इस पहल के जरिए गणराज मुर्शिदाबाद में एक सेहतमंद जिंदगी को बढ़ावा देने का इरादा रखता है।

0: करता है।
1: योगा सेट एन प्राटिक कि कंट्रीब्यूए आ सी कि नो अपेल प्रिवेंटिव हेल्थ ली एम्पेश दी मून टोम मालाद ए एन मेम टेम ली कंट्रीब्यूए आ एन लेटा द बियन एत्र de chaque individu qui participe là-dedans. Et donc, vous pensez que c'est une pratique qui nous vient propager.
0: भारतीय उच्चायोग की जानिब से भारत की दी हुई इस विरासत को अधिक पहचान और प्रोत्साहन देने के लिए कटिबद्धता और ठोस की जा रही है।
2: In the run up to the 12th yoga day,
0: श्री अनुराग श्रीवास्तव बताते हैं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में देश में कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी संस्थाओं और विभागों में इस साल का विषय योगा ए हेल्थी एजिंग रखा गया। इसके अलावा हिस्सेदारों के लिए आयुर्वेद परमपनी एक पेशकश भी की गई है। मुख्तलिफ सत्रों के जरिए आयोजक जनता को योग आसनों के फायदों पर सचेत करना चाहते हैं और सबको मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए जरूरी आदतें अपनाने की प्रेरणा देना चाहते हैं।
3: बात करते हैं अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। सभी की नजरें इन मैचों पर टिकी हुई हैं। फीफा वर्ल्ड कप के तहत कल कनाडा और बोस्निया के बीच मैच ड्रॉ गया और अभी की इसी समय यूएसए और पैराग्वे के बीच मुकाबला चल रहा है। फिलहाल आपको स्कोर बता दें, 3-1 का स्कोर है। अभी तक यूएसए ने 3 गोल डाला और पैराग्वे 1। विदेश स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची के अनुसार प्रस्तावित समझौते में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना और ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि यदि ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करता है तो इसे आर्थिक लाभ दिए जाएंगे। समझौते के तहत युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई वार्ताओं का रास्ता खुलेगा। चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान ऊंचाइयों पर वर्षा हो सकती है और बादल घिरे रहेंगे। शाम को दक्षिण पश्चिम सेंट्रल प्लाटू और पश्चिम में मौसम कुछ खराब ही रहेगा। अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर से बहेगी, जिसके झोंके 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में सावधानी से निकलने की मांग की जाती है। न्यूनतम तापमान साहली इलाकों पर होगा 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। ऊंचे इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच सूर्योदय हुआ है। सुबह 6:42 पर सूर्यास्त होगा, शाम को 5:37 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। सुकाबादू स्ट्रीट शमे ग्रोनी में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के बाला वर्दी राजू जगानायकलू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राजू के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उन्हीं के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपा शामुनि की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM। लातापी रोड ब्रिजेवेडिया में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के गिरजानंद घुमरिया की मृत्यु हो गई है। लोगों ने गिरजा के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले डेप्यूटी हेड टीचर की हैसियत से काम कर चुके हैं। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनकी पत्नी विमला देवी घुमरिया के मकान ब्रिजेवेडिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लातापी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे 2 PM। केदन लेन फ्लोरियाल में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की सोहिनी केदन की मृत्यु

हो गई हैं। पैदाइश रामजा ग्रुप, लोग उन्हें ज्ञानती के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उन्हीं के मकान फ्लोयाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीघा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 noon। आर्य मंदिर रोड पिछले गाफे में 63 साल की 63 years old की कोवी लाम्बाल नारायणन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम पक्यों, लोग उन्हें बिगर के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उन्हीं के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कपमाले हुई की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। नंबर 50 NHDC अपदा गुतिया में 68 साल के 68 years old के परदुमन सीसरन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सूरज के नाम से अधिक जानती थी और वे पहले मुका के निवासी थे। उन्हें की अर्थी आज दिन के 2:00 बजे अपोदागुचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्टांस सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। डिस्पेंसरी रोड थ्रियोली में 61 साल के 61 years old के लक्ष्मीकांत महा की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विनेश के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनकी पत्नी बेबी महा के मकान डिस्पेंसरी रोड थ्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS Lane थ्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड खोम्बुआ में 79 years old के ईश्वरलाल पुकन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे चेतन कुमार पुकन के मकान खोम्बुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोम्बुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड कॉफुक्रो में 45 साल के 45 years old के विक्रम सिंह मोहिपत की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राकेश के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके भाई राजकुमार मोहिपत के मकान कॉफुक्रो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। जॉन मिल्टन रोड रोशनुआ में 78 साल की 78 years old की अमावती जीवन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम मुतादीन, लोग उन्हें अमावती के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 9:30 बजे सुबह के 9:30 बजे रोशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। लैंपास मुडन स्टो रॉयल रोड उकुले में 85 साल की 85 years old की जगह जोड़ती मारी मुतू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश राम मर्दन, लोग उन्हें आती पुष्पा के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उन्हीं के मकान ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीघा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। लाल बहादुर लेन मालेंगा सैंपिया में 75 साल की 75 years old की विनोद महेश गंगाराम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मनोज के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी रानी गंगाराम के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमो तैमोगोश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: शनिवार 13 जून को शाम 6 बजे लावांचिया जरनाथ शिवालय में मासिक शिवरात्रि का आयोजन किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस शनिवार 13 जून को लासोजिन आर्य समाज में 3 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: Hey, qui peut arriver? Te désalo au terrain, toi?

0: Jesse, foulard, saucette, moulton, dîner, café.
1: Mais qu'est-ce que quoi? Moi, pas envie au jeu pour Coupe du Monde, moi. Mon Philippe prend me dit TV Stream Code Mighty. Tous les 104 matchs, exot highlights, tout en anglais. Zis pour 390 roupies.
0: Hé, hey, mais moi, mon compte en suivi football en français.
1: Mais ça aussi, Mighty, là. Prends ton pack New World Sport, zis pour 300 roupies. Vivez l'ambiance du stade directement dans votre salon avec Mighty. Abonnez-vous au DSTV Stream ou New World Sport selon votre préférence et profitez d'un mois gratuit et recevez un cadeau Panini. Appelez le 8902. Termes et conditions applicables.
0: Mighty? Mighty, c'est ça!
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
3: सुबह के 6:54 और 4 सेकंड हुए हैं.
4: Sports News.
3: सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब. खेल समाचारों में आपका स्वागत है. ये स्पोर्ट्स बुलेटिन शुरू करते हैं विश्व कप 2026 के साथ. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच, दूसरा और तीसरा मैच कल रात पहला मैच खेला गया कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच, और एक तीसरा मैच आज सुबह इसी समय खेला जा रहा है और मैच अभी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है. बता दें कि अभी सह मेज़बान देश यूएसए पराग्वे को 3-1 से परास्त कर रहा है. ये खेल का 90वां मिनट चल रहा है. सो यूएसए ने प्रथम भाग में, खेल के प्रथम भाग में 3 गोल दागे बाबू दिला के बाद, एक ओन गोल के बाद फ्लोरियन बालोगन का एक डबल. सो यूएसए 3-0 से आगे और सेकंड हाफ में जाकर मोरिचो ने पराग्वे के लिए 73वें मिनट पर एक गोल कम किया. इस समय इंजरी टाइम खेला जा रहा है. एक स्विफ्ट क्विक और रैपिड एकदम तेज यूएसए की बहुत तारीफ की जा रही है. यूएसए की टीम काफ़ी मजबूत है. लॉस एंजेलिस स्टेडियम में इस समय सह मेज़बान देश यूएसए 3-1 से पराग्वे को हरा रहा है. सो ये एक अभी का ये मैच चल रहा है और कल रात 11 बजे जो मैच खेला गया उसमें एक और मेज़बान देश कनाडा ने अपना पहला मैच, पहला अंक हासिल किया विश्व कप के इतिहास में. कनाडा 1-0 से हार रहा था लेकिन सेकंड हाफ के 80वें मिनट पर मैच ड्रॉ गया. कनाडा 1-1. खेल के प्रथम भाग में ही बोस्निया के ल्यूकिच ने एक पहला गोल स्कोर किया और 78 मिनट पर जाकर सी लारिन ने, साउथम्पटन के इस खिलाड़ी ने कनाडा के लिए इक्वलाइज किया. बता दें कि डेविस जो हैं ये मैच खेल नहीं पाया कनाडा के लिए और मैच ड्रॉ गया. पिछले दो विश्व कपों में कनाडा ने एक भी जीत हासिल नहीं की थी, यानी विश्व कप के इतिहास में ये कनाडा के लिए पहला अंक है, पहला ड्रॉ. अब तक केवल हार ही हाथ लगी थी. सो सह मेज़बान देश कनाडा ने कल ड्रॉ मैच किया और इस समय यूएसए 3-1 से जीत रही है. सो अभी मैच इंजरी टाइम की ओर बढ़ रहा है. कल वैसे कल सुबह 5 बजे दक्षिण कोरिया ने चेक रिपब्लिक को एन मौके पे 2-1 से परास्त किया. चेक रिपब्लिक 1-0 से आगे थी. क्रेजी का एक पहला गोल लेकिन आखिर में जाकर वांग इन बेओम और ओ ह्योंग ग्यू के का एक एक गोल. साउथ कोरिया 2 चेक रिपब्लिक 1. और ऐसे में आज जो मैच खेले जाएंगे, बता दें कि आज रात 11 बजे कैटर का मुकाबला ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड से होगा. फिर आज ही बल्कि कल सुबह 2 बजे ग्रुप सी में ब्राज़ील के लासेलेसाओ का मुकाबला मोरक्को से होगा. ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को ग्रुप सी का ये मैच कल सुबह 2 बजे के लिए निर्धारित है. और अभी भी मैच यूएसए और पराग्वे के बीच 3-1 के स्कोर पर है. इतना सब कुछ वर्ल्ड कप स्कोर को लेकर. सो फुटबॉल में आजकल विश्व कप 2026 छाया हुआ है. पराग्वे की हार तो हो रही है लेकिन सेकंड हाफ में वे भी अच्छा फुटबॉल खेलने लगे हैं. बालोगन ने गोल स्कोर किया यूएसए के लिए एक डबल और अभी मैच समाप्ति की ओर बढ़ रहा है. सो बोस्निया हर्जेगोविना ने मैच ड्रॉ किया कनाडा के साथ 1-1. और इस प्रकार अब सारी नज़रें आज और कल के मैचों की ओर हैं और ख़ासतौर पे इंग्लैंड की टीम जो है आज वो शनिवार को अपना टेक्सास में अपनी ट्रेनिंग करने वाली है. कल बताया जा रहा है कि

0: ये कंसास सिटी में आज इंग्लैंड की टीम ट्रेनिंग करने उतरेगी और वहाँ पर इंग्लैंड की टीम में उसकी उनके जो ट्रेनिंग उपकरण है, इक्विपमेंट है, वे चोरी कर लिए गए। फुटबॉल एसोसिएशन ने इस बात की पुष्टि की और पुलिस इन सब पर तहकीकात कर रही है। सो अभी पुलिस अफसरों ने बताया कि वे FA फुटबॉल एसोसिएशन से अभी उनके संबंध में है और कल रात तक इस मामले पर जांच की जा रही थी। इंग्लैंड का पहला मैच 17 जून की रात 12 बजे होगा क्रोएशिया के विरुद्ध और आज कैंसास सिटी में उनकी पहली ट्रेनिंग होने वाली है वर्ल्ड कप से पहले। और एक नज़र एक बार फिर बढ़ाते हैं वर्ल्ड कप के इस मैच की ओर, जिसमें USA की टीम और पराग्वे के बीच अभी भी मैच खेला जा रहा है। सो पराग्वे ने एक गोल कम किया है, मैच समाप्त नहीं हुआ, इंजरी टाइम का ये 5वां मिनट खेला जा रहा है। बात करें अब क्रिकेट की, भारत और अफगानिस्तान के बीच आज पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा, धर्मशाला में ये मैच होगा और एक दूसरा वनडे मैच भी निर्धारित है। इससे पहले बता दें कि सप्ताह के दौरान टेस्ट मैच में भारतीय टीम की भारी जीत हुई थी अफगानिस्तान के विरुद्ध, एक पारी और 300 रनों से उनकी जीत हुई थी। सो आज इस श्रृंखला का पहला वनडे एक दिवसीय मैच खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच। बात करें यदि फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैम्पियनशिप की, तो ये बार्सिलोना कैटालोनिया ग्रैंड प्री कल रविवार को लगने वाली है और कल शुक्रवार के पहले प्रैक्टिस रेस में मैकलारेन के लैंडो नोरिस की जीत हुई, दूसरे स्थान पर जॉर्ज रसल आया है। बता दें कि अभी भी मर्सिडीज का एंटोनेली पहले स्थान पर है, किमी एंटोनेली पर, अब दूसरे स्थान पर ब्रिटेन का लेविस हैमिल्टन आ गया है। कई साल बाद वो दूसरे स्थान पर आया है, लेकिन अभी भी वो किमी एंटोनेली से 66 अंक पीछे हैं। सो 90 अंक लेविस हैमिल्टन के लिए और 156 अंक किमी एंटोनेली। जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर है 88 पॉइंट्स के साथ, वो लेविस हैमिल्टन से केवल 2 अंक दूर हैं। जाने से पहले एक बार फिर एक नज़र इस स्कोर के की ओर, USA वर्सेस पराग्वे इसी समय ये मैच खेला जा रहा है। सो अब तक USA 3-1 से आगे था, अब इंजरी टाइम में मैच अभी भी 3-1 के स्कोर पर है, 8वां मिनट खेला जा रहा है और बोबादिला के ओन गोल के बाद बालोगन का एक डबल रहा USA के लिए और USA की टीम की काफ़ी तारीफ की जा रही है, स्विफ्ट फास्ट फुटबॉल, 3-1 से उनकी जीत हो रही है। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियाँ। अधिक ताज़ा खबर RM2 पर ठीक 7:30 बजे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और MBC के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नो थावाय नो लावेनिया एग्रीकल्चर के सेक्टर में आइडियल फ्रेश हार्वेस्ट लिमिटेड जोन शेक्सपियर स्ट्रीट फोन जुसाक में पावल जाला दूगो ग्रेड 2 फील्ड क्रॉप लेबरर्स खोजता जिनकर दूबर स्किल एक्सपीरियंस बाटे। अप्रिका सुकारे खातिर इन नंबर पर टेलीफोने करिया 59 05 51 61 वो भी मंगल से सामदी लेख फजर के 9 बजे से सांझ के 5 बज के आधा लेख। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 20 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में सरावना भाव पामेला कंपनी लिमिटेड जन रॉयल रोड गुडलैंड्स में पावल जाला एगो मशीन ऑपरेटर एम्ब्रॉयडरी खोजता जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 59 27 44 16 और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 19 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सेक्टर में राम पॉटरी लिमिटेड जोन रोबिया केनेडी स्ट्रीट रेनियो मुगेल पेटी राफ्रे में पावल जाला आर्ट स्कल्पचर्स खोजता

0: जिनकर दुबर स्किल एक्सपीरियंस बाटे आपकी कासो करे खातिर टेलीफोनी करिया 77 78 88 84 आपकी कासो करे के अंतिम तारीख है 19 जून 2026। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में ब्रायन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जोन रू सेंट्र सोशियल गुडलैंड्स में पावल जाला 100 male grade 2 मासों को जता जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे आपकी कासो करे खातिर ऑफिस आवर्स माने की फजीर के 8 बजे से सांझ के 4 बजे ले टेलीफोनी करिया इन नंबर पर 2811 आपकी कासो करे के अंतिम तारीख है 20 जून 2026। कंस्ट्रक्शन के ही सेक्टर में अलमेल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जन एन 64 रेजिडेंस मंगल कॉम फ्लोरियाल में पावल जाला 10 मासों खोजेता जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और 5 कारपेंटर्स जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी कर गया 58 31 19 25 52 52 50 68 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 जून 2026। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में बैक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जन ओल्ड फ्लैक रोड आद्रियन डेपिने में पावल जाला 10 वेल्डर्स खोजता 30 मासों 10 कारपेंटर्स 10 स्टील फिक्सर्स 10 पेंटर्स 5 लॉरी ड्राइवर्स और 10 एल्यूमिनियम वर्कर्स सबके चाहेला 3 बरिस के एक्सपीरियंस हो के और खोजता 2 गो परचेसिंग क्लर्क जिनकर HSC बाटे और 5 एडमिन क्लर्क जिनकर HSC बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 243 56 43 52 55 74 83 न CV ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है contact@bax.mu एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 20 जून 2026। कंस्ट्रक्शन के ही सेक्टर में काजाबा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जन एवेन्यू ले मांगिये द माउंट में पावल जाला 10 grade 2 मासों खोजता जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 52 51 73 00 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 20 जून 2026। रेस्टोरेंट के सेक्टर में रेस्टोरेंट ले मांगिये कंपनी लिमिटेड जन रॉयल रोड कॉटेज में पावल जाला 3 male cook खोजता जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 266 18 97 73 69 60 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 20 जून 2026। सिक्योरिटी सर्विसेज के सेक्टर में कोडन सिक्योरिटी सर्विसेज जन ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड सैपिया में पावल जाला 55 सिक्योरिटी गार्ड्स खोजता जिन पढ़े लिखे जाने लन साथ में 10 अलार्म टेक्नीशियंस जिनकर सर्टिफिकेट बाटे इलेक्ट्रॉनिक्स में और 10 एसेट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जिनकर HSC संगे जिनकर मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 403 50 10 ये तीनों पोस्ट खातिर चाहेला कैंडिडेट लोग के एगो सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर खोजबिया करे के एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 23 जून 2026। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर में अरुल मिगु मारियामेन तिरुकोविल जन अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में पावल जाला एगो मेल तमिल प्रीस्ट खोजता जिनकर 10 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 59 25 85 97 न CV ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दिया bhovanen31pro@gmail.com एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 22 जून 2026। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर में कमेसा कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड 3rd floor फुक्स हाउस बोबों स्ट्रीट पोर्टविस में पावल जाला एगो डायरेक्टर कॉर्पोरेट सर्विसेज खोजता एगो अरबिक ट्रांसलेटर और एगो फ्रेंच ट्रांसलेटर वो खोजता एप्लीकेशन फॉर्म मिनिस्ट्री के ई वेबसाइट से तोहरा मिल जाए https://foreign.govmu.org/pages/vacancies.rs PX, nata komeza sekretariat ke website https://www.comesa.int/ nata komeza competition and consumer commission ke website https://comesa.competition.org/ John kandida interesse hawan upon application forms ego soft copy bida kardiha directly a komesa competition consumer commission e pata par recruitment@comesacompetition.org aur ego copy ministry of foreign affairs regional integration and international trade ke website maniki mofasc@govmu.org application kare ke antim tarikh 17 जून 2026 जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजा था हुआ ता ये भी सुनते चला कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिवीजन एगो असिस्टेंट सिस्टम्स एनालिस्ट और सीनियर असिस्टेंट सिस्टम एनालिस्ट खोजा था एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिए https://psc.govmu.org और वो एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 जून 2026 प्राइवेट हाउसहोल्ड के सेक्टर में एगो हाउसहोल्ड एम्प्लॉय के खोज बाटे मानी कि सिजिया मिल पॉम्प्लेमुसेस और लोवर वेल के रिज्यूमे में एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिए ईआईसी गुडलैंड्स के ई नंबर पर 282-59-17 साथ में खोजल जाता एगो हाउसकीपर रोजबेल के रिज्यूमे में तो टेलीफोनी करिया ईआईसी रोजबेल ई नंबर पर 627-48-33 और पेटी अफ्रीक के रिज्यूमे में एगो हाउसमेड खोजल जाता तो टेलीफोनी करिया ईआईसी गुडलैंड्स के ई नंबर पर 282-59-17 भी सुनते चला कि एमआईटीडी दने से नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर जोन 1 मिलिट्री रोड पोर्टविस में पावल जाला इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेस खातिर इनटेक जुलाई 2026 करल जाता जस्ती जानकारी खोजब तो टेलीफोनी करिया 206-18-00 न ई वेबसाइट विजिट करिया www.mitd.mu याद रखिया कि एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 जून 2026 ता ई रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से नू ट्रावाई नू लावेनिया
1: ये है रेडियो मॉरिशस रेडियो मॉरिशस
2: नितिन शाह जी को धन्यवाद देते हैं नुथावा इनोलाविनिया सेगमेंट के लिए। सुबह के 7:11 हो रही है और आप हमें सुन रहे AM2MBC रेडियो मॉरिशस की लहरों पे मीडियम वेव 870 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:11 हो रहे हैं, सभी का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं रेडियो की लहरों पे। और अब प्रस्तुत है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ। ओकुले 4 कारो बिस्नाथ रोड, मारियामेन टेम्पल रोड, कारोलेन, एंग्रे कतों और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 14 जून को सुबह के 8:30 से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर क्यूपिप कोजिंग स्ट्रीट, सर विलियम न्यूटन स्ट्रीट, नाज स्ट्रीट, रेमेनो स्ट्रीट और एमिल सोजिए स्ट्रीट के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 13 जून को सुबह की 8 बजे से 9 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर क्यूपिप कोसिंग स्ट्रीट और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 13 जून को सुबह के 8 बजे से शाम के 4:30 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और क्यूपीपी में कोसिंग स्ट्रीट, पॉची द सर विलियम न्यूटन स्ट्रीट, नाज स्ट्रीट, रेमोनो स्ट्रीट और एमिल सोजी के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 13 जून को शाम के 3:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक

0: तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और पॉइंट ऑफ साबल, जी हाँ, पॉइंट ऑफ साबल, मोसेल मोलोआ, रेजिडेंस ला टूरेल, रेजिडेंस कोकियाज, हॉलीकुक, स्टर्लिंग सिल्वर रोड, पिजन स्ट्रीट, अल्बाट्रोस स्ट्रीट, फ्लोरिबुंडा स्ट्रीट और देवाकादेर की गलियों में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 13 जून को दिन के 9 बजे से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में प्लैन दी पापाई मौसलमों VOS प्लैन दी पापाई और बुआमोंग के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 13 जून को सुबह के 11:30 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और ऑरिएटा कॉम्बिले ऑरिएटा के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 14 जून को दिन के 9 बजे से दिन के 11:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर ऑरिएटा कॉन्होश स्ट्रीट नंबर 1, दिगंबर लेन नंबर 1, दिगंबर लेन नंबर 2, दिगंबर लेन नंबर 3 और आसपास में जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 13 जून को दिन के 9 बजे से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और बोबासिन सिरिल लेकनिंग 52 और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 13 जून को सुबह के 11:30 बजे से दोपहर बाद के 2:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और लविनिया स्कूल लेन मौसलमा VOS लविनिया विलाज मौसलमा फ्रांगीपान और मोहित रोड के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 13 जून को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर रुई महात्मा गांधी मौसलमा बुकों रेस्टोरेंट ले पोल और रेजिडेंस गजादा ग्रांबे के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 14 जून को दिन के 9 बजे से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की आपूर्ति को जारी कर दी जाएगी। सीबीन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ यह है रेडियो मॉरिशस।

हर पल में कुछ न कुछ खुशियां तो होती है, हर पल बुरा तो नहीं होता, कुछ पल अच्छे भी होते हैं और उन पलों को संभाल कर रखना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो जी, नमस्ते, आदाब, क्या ये कैसे आप देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार और सलाम स्वीकार हो। यस, और आज हमारा और आपका साथ है नमस्ते मॉर्निंग शो सुबह का नजाना, अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक चंद प्यारे प्यारे गाने और ढेर सारी मीठी मीठी बातें। और यह आशा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं और अच्छा समय भी बीतेगा आप लोगों का हमारे साथ। हर शनिवार की भांति आज भी हम आ गए हैं। सो लेट मी रिमाइंड यू कि आज है शनिवार 13 जून और साल 2026। और बेशक जब सुबह जब हम उठते हैं, जागते हैं, तो बस ये आशा करते हैं कि आज जो भी हो अच्छा हो। कल अगर कुछ बुरा हुआ था तो उसे भूल जाएं, पर आज प्रार्थना करें प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से, कि आज जो है सभी के लिए एकदम अच्छी तरह से बीते। जो भी कार्य करें आज, आपको सफलता मिले, खुश रहे, प्यार खुशियां बांटते रहे और ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचें, है कि नहीं। और आशावादी

0: जो इंसान होता है वो बहुत कुछ प्राप्त करता है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजरा की पहली भेंट, आज का चिंतन। और यह चिंतन आप सुनेंगे डॉक्टर शांति महाबीर जी द्वारा।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: चिंता और चिंतन में जमीन आसमान का अंतर होता है। चिंता मन को भटकाती है, जबकि चिंतन भटके हुए मन को रास्ता दिखाता है, उसे ठहरना सिखाता है। इसलिए आत्मचिंतन करते रहिए और चिंता से दूर रहिए।

वो जानना चाहिए कि कैसे जिया जाए। हर किसी के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो होते रहते हैं, पर खुशियाँ भी आती है। सो जीवन के दो अंग हैं, कभी खुशियाँ हैं कभी गम है, पर हम खुशियों को अपनाते हैं और दुखों से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए हमें सुबह शाम प्रभु का नाम लेना चाहिए, ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। जब प्रभु की पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो दुख जो होते हैं जीवन के वो दूर हो जाते हैं। और अभी तो सुबह का वक्त है, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी के साथ साथ हो जाइए प्यारा सा गाना, ओ मेरे सपनों के सौदागर, और सपनों की दुनिया से निकल कर चले आइए हकीकत की दुनिया में। यस, और बहुत ही प्यारा सा गीत है, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म हम किसी से कम नहीं से। चलिए इस गीत का मजा लेते हैं।

0: इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसका एक आलीशान बंगला हो, घर में नौकर चाकर हो और ज़िंदगी अच्छी तरह से चले, पैसा ही पैसा हो उसके बैंक बैलेंस में है कि नहीं। पर इसके लिए अगर आप पैसा चाहते हैं तो मेहनत लगन से आपको काम करना होगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना होगा ताकि पढ़ लिख कर आप बड़े आदमी बने, हैं कि नहीं। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो बाबू राजा बनेंगे। हमेशा हमारी माता पिता ने हमें यही सिखाया, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे, है कि नहीं। सुबह के 7:32 सभी का स्वागत है रेडियो मॉर्शस की लहरों पर। हम जानते हैं कि शनिवार का दिन है और ठंड का मौसम, सुबह तो नींद से जागने का मन तो नहीं कर रहा, खासकर अगर आप कंबल के अंदर है, ओए होए क्या बात है, और कंबल के अंदर है लेटे हुए है और रेडियो से प्यारे प्यारे गीत सुन रहे हैं, वाजी वाह क्या बात है, क्या किस्मत पाई है आप लोगों ने। अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। चलिए इस गीत को सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और ये गाना पिक्चराइज़ शमी कपूर साहब पर हमारे एल्विस, इंडियन एल्विस प्रेस्ली पर। चलिए इस गीत को सुनते हैं।
1: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया

0: परवाना कहे, कोई परवाना कहे, जलने को बेपरार। चाहत का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर, चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू अय्या।

0: चौंको मत ऐ दोस्तो, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु

आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रेडियो सुनना है और गीतों का मजा लेना है और प्यारे प्यारे गीत हम चला रहे हैं। हम जानते हैं कि सप्ताह के दिनों में आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, सुबह नींद से जागो, फिर बच्चों के लिए ये सब तैयार करो, फिर काम पे जाना होता है। पर सैटरडे को बहुत से लोग जो है घर पे रहते हैं, पर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं वो आज कहते हैं आप लोगों को, पर जो लोग घर पे है वीकेंड का मजा ले रहे हैं वो वीकेंड कहते हैं। जस्ट चिल एंड रिलैक्स। और ये अगला गीत सुनिए, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। जी हाँ, द स्वीट एंड लवली वॉइस ऑफ SP बालासुब्रमण्यम। सलमान खान की पहली फिल्मों में से एक है ये, मैंने प्यार किया। सुपरहिट मूवी, सुपरहिट गाना, ब्लॉकबस्टर, मैंने प्यार किया आपके नाम।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, फिल्म सौदागर के इसी प्यारे से गीत के साथ ही सुबह का नजराना मस्त मॉर्निंग शो का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। ठीक पौने 8 बजे अब सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सर्वर प्रोग्राम, और ठीक 8 बजे का भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात भी से होगी इसी चैनल पर 8:05 पर। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्रेम से MBC रेडियो मॉरिशस।

0: हिंदी स्पीकिंग यूनियन के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान सरोवर में आप सभी को डॉक्टर अंजलि चिंतामणि की ओर से हार्दिक नमन। श्रोताओं, एक बार फिर आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित कहानी कथन प्रतियोगिता, जिसका फाइनल 28 मई को संपन्न हुआ था, और आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला की दूसरी कड़ी लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि आपने पिछले सप्ताह कार्यक्रम सुना, तो पिछले सप्ताह हमने प्रथम विजेता ताकू प्रसाद खरांशु को सुना और द्वितीय विजेता श्रेया चतुर्वेदी को उनकी अध्यापिका सहित सुना, और आज हमारा सौभाग्य है कि तीसरे स्थान पर जो प्रतिभागी आई हैं वे प्लेंदेगोश सरकारी पाठशाला से सैंपल मित्सी हैं, जो यहाँ अपनी अध्यापिका श्रीमती सुविता महादू कावल के साथ उपस्थित हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ एक और विशेष, एक खास छात्रा उपस्थित हुई हैं। आप हैं मारी क्यागा रूथ ब्रास, जो ओलिविया ऑसिये स्कूल में पढ़ती हैं, और उनकी अध्यापिका श्रीमती कुशलता गुप्ता रामनारायण भी उनके साथ यहाँ पधारी हैं। तो आप दोनों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, मारी क्यागा उन 100 बच्चों में से एक हैं जो अंत में जब फाइनल हुआ था तो फाइनलिस्ट के रूप में उन 20 छात्राओं या छात्रों के मध्य आई हुई थी, और आज हम दोनों छात्राओं को सुनेंगे। तो सैंपल मित्सी और मारी क्यागा रूथ ब्रास, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। अहिंदू होते हुए भी हिंदी भाषा से आप दोनों इतना प्यार करती हैं, हिंदी पढ़ रही हैं, और अपनी मेहनत से आज आप तीसरे स्थान पर और आप फाइनलिस्ट के रूप में यहाँ पहुँची हैं। तो देर न करते हुए, श्रोताओं, मैं जानती हूँ कि आप इन बच्चों की कहानियों को सुनना चाहेंगे, तो सबसे पहले मैं सैंपल मित्सी से अनुरोध करूँगी कि वे अपनी कहानी सुनाकर हमें आनंदित करें।
1: नमस्ते सभी को, मेरा नाम मित्सी सैपल है। मैं छठी कक्षा में हूँ। मैं पद्मन शिवचंद सरकारी पाठशाला से आई हूँ। आज मैं आपको मुरिया पहाड़ की कहानी सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिए। एक पहाड़ के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम श्याम तक था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दूध बेचने के लिए दूसरे गांव में जाता था। कभी कभी जब वह थक जाता था तब वह जंगल में पेड़ के नीचे आराम करता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो गया था। थोड़ी देर बाद उसकी नींद नाच

0: गाने की आवाज से सुनकर खुल गई। उसने देखा कि परियां नाच रही थी और सुंदर संगीत बज रहा था। वह डर गया और बोला, तुम लोग कौन हो? मुझे कुछ मत करना। तभी परिमा आई और बोली, डरो मत, जब चाहो तुम यहाँ आकर हमारा नाच देख सकते हो, लेकिन यह बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम पत्थर बन जाओगे। सांतक ने वचन दिया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा। अब वह रोज वहां जाकर परियों का नाच देखने लगा और ढेर से घर लौटने लगा। पड़ोसी बातें करने लगे। उसके माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। शादी के दिन जब सांतक बारात लेकर जा रहा था, तब वह उसी जंगल से गुजरा। खुशी में उसने अपना राज सबको बता दिया। सब लोग छिप कर परियों की प्रतीक्षा करने लगे। जब परियां आए, तब उन्हें पता चल गया कि वहां और लोग भी हैं। परिमा गुस्सा हो गई और बोली, तुमने अपना वचन नहीं निभाना, अब तुम पत्थर बन जाओगे। तुरंत सांतक पत्थर बन गया और पहाड़ बन गया। आज हम उसे मोरया पहाड़ कहते हैं। रामायण में भी कहा गया है, रघुकु रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमें हमेशा अपना वचन निभाना चाहिए और सोच समझ कर बोलना चाहिए। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत सुंदर मित्सी, बड़े प्यार से तुमने हाव भाव के साथ अपनी कहानी सुनाई। और एक तो छात्रा होने के नाते जब तुमने पूरी कहानी तैयार कर ली और कहानी सुनाई, तो तुम्हें क्या सीख मिलती है?
0: हमें सच बोलना चाहिए, हमें वचन का पालन हमेशा करना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए।
1: बहुत सही कहा तुमने। तो इस सीख को जीवन भर जितने लोग हमें सुन रहे हैं, उसका पालन उन्हें भी करना चाहिए, है ना? अच्छा, अब मैं आपकी अध्यापिका सुविता से पूछना चाहूँगी कि किस तरह से आपने इन्हें प्रोत्साहित किया और अभ्यास कैसे चला स्कूल में, ज़रा बताइए तो।
2: नमस्ते सभी को।
1: नमस्ते।
2: मैं हूँ सुविता महादिकावल, पदुमन सिपचन सरकारी पाठशाला प्लेंडोस से। तैयारियाँ पहले से ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले हमने एक साथ मिलकर इस कहानी को चुना। यह कहानी क्यों सांतक की कहानी? क्योंकि यह कहानी इनके पाठ्य पुस्तक में है, पीटरबोफ माउंटेन।
1: हाँ।
2: तो इस कहानी को लेकर हम यह संदेश भेजना चाहते थे कि जब वे अब जाएंगे किसी यहाँ पर जाएंगे, तो पीटरबोफ माउंटेन को नहीं बल्कि सांतक की कहानी लोक कथा याद करेंगे।
1: जी बिल्कुल। और यह तो एक लोक कहानी भी है, और हम चाहेंगे कि हमारे जो आज की पीढ़ी है, हमारी जो हमारे जो बच्चे हैं अभी के, वे भी इस कहानी को याद करें।
2: जी। और मिज़ी के बारे में मैं क्या कहूँ, मिज़ी हमारी जो होनहार छात्रा हैं, सब कुछ जल्दी से सीख जाती हैं। तो मिज़ी रोज़ इस कहानी को कक्षा के आगे आकर सुनाती थी। कभी कभी तो असेंबली यानी जुटाव के आगे, सभी छात्रों के आगे, सभी बच्चों के सामने आकर अपनी कहानी को सुनाती थी।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बढ़ूंगी माघी क्यागा की ओर। माघी, आप हमें अपनी कहानी सुनाइए।
3: सभी श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम क्यागा भास है। मैं ओलिविया असिये की छात्रा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है कपटी अतिथि। आइए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक खटमर था। वह अपने लंबे चौड़े परिवार के साथ एक बहुत बड़े सुंदर पलंग के कोने में रहता था। यह पलंग राजा का था। जब राजा सोया होता, तब खटमर और उसका परिवार राजा का खून चूसते और खूब मजे से रहते। एक दिन एक मच्छर कमरे में आ गया।

0: उसने राजा का बिछौना देखा। अहा, कितना कोमल और मुलायम है, वह अपने आप से बोला। वह उड़कर बिस्तर पर जा बैठा। इतने में खटमर वहां आ गया। तुम कौन हो? खटमर ने मच्छर से पूछा। कहां से आए हो? यह राजा का पलंग है, तुम यहां नहीं ठहर सकते, चले जाओ। श्रीमान जी, मच्छर ने उत्तर दिया, क्या अतिथि से ऐसे ही बात की जाती है? मैं तो यात्री हूँ, मैंने बहुत से लोगों का खून चखा है, मगर अभी तक मैंने किसी राजा का खून नहीं चखा। वह तो शहद जैसे मीठा होता होगा, मुझे अपना मेहमान समझकर राजा का खून चखने की आज्ञा दीजिए। नहीं, खटमल चिल्लाया, हो नहीं सकता। क्यों नहीं? मच्छर ने पूछा। क्योंकि, खटमर ने समझाया, जब तुम राजा को कातोगे तब उसे पीड़ा होगी, वह जाग जाएगा और हम सबको मार डालेगा, इसलिए कृपा करके यहाँ से चले जाओ। मच्छर खटमर के पैरों में गिर पड़ा। वह बोला, दया करो, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि राजा के खून का स्वाद कैसा होता है। खटमर बड़ा रहमदीर था। यह तो सच है कि राजा का खूब स्वादिष्ट होता है, वह बोला। तुम बस इस बार के लिए तहर सकते हो, लेकिन याद रखो, तुम खून चूसने के लिए गलत समय पर मत आना और गलत स्थान पर मत काटना। मच्छर बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा, वह बोला, ठीक समय कौन सा है और कौन सा ठीक स्थान है? खटमर ने उत्तर दिया, जब राजा साहब खाना खा चुके और मदिरा पी चुके हों, तब उन्हें गहरी नींद आ जाएगी, और ठीक स्थान राजा का पैर है, यदि वहां पर कातोगे तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छा, मच्छर बोला, मैं ध्यान रखूंगा। खटमर अपने कोने में लौट गया। मच्छर राजा की प्रतीक्षा करने लगा। जो ही राजा बिस्तर पर लेटा, वह उत्तेजित हो उठा। वाह, वह चिल्लाया, मेरे भोजन के लिए राजा का खून, वह शहद की तरह मीठा होगा, शहद की तरह। वह खटमर की बात भूल गया। राजा को अभी नींद आनी शुरू ही हुई थी कि मच्छर ने उसकी गर्दन पर काट लिया। राजा झपट कर उठ बैठा। वह एकदम लार हो गया। अरे, सब जल्दी से आओ, वह चिल्लाया, मुझे किसी चीज ने काटा है, अच्छी तरह से देखो और जो भी मिले उसे मार ढारो। राजा के नौकरों ने बिस्तर को अच्छी तरह से ढारा। मच्छर तो उड़ चुका था। उन्हें मेरा बेचारा खटमर और उसका परिवार। उन्होंने खटमर और उसके परिवार को मसर ढारा, कोई भी न बचा। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद।
1: बहुत बहुत सुंदर माही, सचमुच बहुत ही रोचक कहानी थी। अब मैं उनकी अध्यापिका से जानना चाहूँगी कि यह कहानी का चयन क्यों और किस तरह से अभ्यास हुआ इसका।
2: यह मेरी कहानी थी जब मैं 5वीं कक्षा में थी। हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा जब कहानी कथन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, तब मेरी अध्यापिका ने मेरे लिए यह कहानी चुनी थी। तो अच्छा। यह कहानी मेरे दिल से बहुत ही जुड़ी हुई है, इसलिए मैं चाहती थी कि कभी मैं जाऊंगी तो यही कहानी लेकर जाऊंगी।
1: चलिए, तो अच्छी बात है, इस तरह से जो आपके विचार हैं आज जो नई पीढ़ी है उन विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी तरह हमारे जो आज अतिथि आए हैं, हमारी दो छात्राएं यहाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, इसी तरह आप हिंदी पढ़िए और आगे भी चलकर हिंदी को साथ लेकर चलिए, ठीक है। और श्रोताओं, हम लगभग कार्यक्रम के अंत तक पहुंच चुके हैं और मुझे आशा है कि बड़े चाव से आप लोगों ने भी इन दो छात्राओं की कहानियां सुनी। और हमें यही एक तरह से समझ में आता है कि अगर अ

शुरू होकर हमारे बच्चे हिंदी से इतना प्यार कर रहे हैं तो यह प्रेरणा की बात है। हिंदी पढ़ना एक अतिरिक्त विषय को पढ़ने के बराबर है जिससे लाभ ही लाभ होते हैं। इसीलिए माता पिता और अध्यापकों से मैं यही अनुरोध करूंगी कि हिंदी पढ़ाने में आप उसे रोचक बनाएं और बच्चों को हिंदी पढ़ाएं और हिंदी भाषा का विकास कराएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ दिन।

नमस्ते। घरेलू हिंसा से जुड़ल कानून के और मजबूत बनावे खातिर सरकार डोमेस्टिक अब्यूज बिल लेके आवत बा। ई नवा कानून में शारीरिक हिंसा के साथ साथ आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न के भी शामिल करल जाए। पीड़ित लोगन और उनकर लड़का के जस्ती सुरक्षा दे हुए, दोषी लोगन के जवाबदेह बनावे और घरेलू हिंसा के घटना कम करे परी जोर देवल गल बा। साथ ही महिला हत्या और वैवाहिक बलात्कार के अलग अपराध के रूप में शामिल करे खातिर कानूनी संशोधन पर काम जारी बा। गाड़ी चलावत समय मोबाइल फोन और संचार उपकरण के इस्तेमाल के लेके बनल विवाद के स्थिति के दूर करे खातिर सरकार कानून में संशोधन करी कैबिनेट फैसला कर ले बा कि रोड ट्रैफिक एक्ट में बदलाव करल जाए, जमे हैंड्स फ्री डिवाइस और गाड़ी में चलल लगल संचार प्रणाली के इस्तेमाल के बारे में स्थिति साफ हो सकी। सरकार निजी प्री प्राइमरी स्कूल खातिर ग्रांटेड एड स्कीम में बदलाव के मंजूरी देले बा। ये बदलाव के मकसद बा सरकारी खर्च कम करे, व्यवस्था में जस्ती पारदर्शिता लावे, कर्मचारी लोगन के नौकरी सुरक्षित रखे और ये मुफ्त प्री प्राइमरी शिक्षा के जारी रखे। कैबिनेट नोट कर ले बा कि प्रधानमंत्री के सलाह परी त्रितु देव दाऊदागी के फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के नवा डायरेक्टर जनरल नियुक्त करल गल बा। गिरजा शंकर राजा रामदूत सिंह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के नवा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करल गल बा, जबकि बलराज नारू के सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के बोर्ड के नवा चेयरपर्सन बनावल गल बा। वाकवा क्यूपी पर सैंपिया के निवासी लोगन खातिर पानी वितरण के समय में बदलाव करल जाता। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी घोषणा कर ले बा कि ई तीन इलाका में पानी आपूर्ति के नवा समय 17 जून से लागू होई। ई फैसला पानी की कमी की स्थिति के देखते लेवल गल। एकर मकसद उपलब्ध जल संसाधन के जस्ती प्रभावी, संतुलित और न्याय संगत ढंग से प्रबंधित करे के बा। काल सोशल मीडिया पर ही एमपॉक्स के बारे में एगो अफवाह तेजी से फैलल। फेसबुक पर ही पीमा एफो नाम के मंच दावा कर ले रहल कि एमोशस के एगो एयर होस्टेस एमपॉक्स से संक्रमित बा। हालांकि एमोशस तुरंत ई दावा के खंडन कर ले बा। कंपनी कहले बा कि ई जानकारी पूरा तरह झूठ और बेबुनियाद बा। एमोशस ई भी बोले बा कि ऊ पीमा एफो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे के अधिकार रखेला। दूसर ओर कार्यवाहक स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर फासिल कोदाबुकस बोले हवन कि स्वास्थ्य मंत्रालय संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आयल लोगन के निगरानी जारी रख लेबा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेजबान टीम के शानदार शुरुआत जारी बा। काल टोरंटो में खेलल ग्रुप बी के मुकाबला में कनाडा और बोस्निया के बीच मैच 1-1 से बरकरार बराबरी पर खत्म भयल। आज ग्रुप सी के मुकाबला में अमेरिका पराग्वे के 4-1 से हरा के अपन अभियान शानदार ढंग से शुरू कर ले बा। घरेलू दर्शक के सामने अमेरिकी टीम आक्रामक खेल दिखावत जीत के साथ प्रतियोगिता में दमदार संदेश दे ले बा। दूसर देश के खबर में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष खत्म करे खातिर एगो महत्वपूर्ण समझौता अंतिम चरण में पहुंच गल बा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची के अनुसार प्रस्तावित समझौता में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के फिर से खोलल जाए और ईरान पर लगल अमेरिकी प्रतिबंध में धीरे धीरे ढील देवल जाए। अमेरिकी अधिकारी भी पुष्टि कर ले हवन जाए

0: अगर ईरान अपन प्रतिबद्धता पूरा करी त ओकरा आर्थिक लाभ मिल सकी इस समझौता से युद्ध विराम के आगे बढ़ावे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नवा बातचीत शुरू करे के रास्ता खुल सकी। तई रहल हमनी के भोजपुरी समाचार, हमनी के सुनल जा, धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: सुना शोक समाचार। एम्पास मुदेंस्तो रॉयल रोड ओकुले में, रॉयल रोड ओकुले में 85 बरिस के 85 अंक के जगह जूदी महिमुतु गुजरगल हवन उनकर माटी आज सपहर 3 बजे उन्हीं के घरे ओकुले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिगहा के शमशान भूमि ले जावल जाए। जॉन मिल्टन रोड घोषणों में 78 बरिस के 77 अंक के अमावती जीवन पैदाइश नाम मुतादीन गुजरगल हवन उनकर माटी आज फजर के 9:30 उन्हीं के घरे घोषणों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पितों के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड कोफको में, रॉयल रोड कोफको में 45 बरिस के 45 अंक के विक्रम सिंह मोहिपत गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर भाई राजकुमार मोहिपत के घरे कोफको से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड खोम्बुआ में, रॉयल रोड खोम्बुआ में 79 के 77 नेवों के ईश्वर लाल पुकन गुजरगल हवन उनकर माटी आज दोपहर बाद 1 बजे उनकर बेटा चेतन कुमार पुकन के घरे खोम्बुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर खोम्बुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। डिस्पेंसरी रोड त्रियोली में 61 बरिस के 61 अंक के लक्ष्मीकांत महा गुजरगल हवन उनकर माटी आज दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं उनकर पत्नी बेबी महा के घरे त्रियोली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर SSS लेन त्रियोली के शमशान भूमि ले जावल जाए। नंबर 50 NHTC अपदागोतियामी 68 बरिस के 68 अंक के परदोमन सिसरन गुजरगल हवन उ आगे मौका रहा चलन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटी केशवरी अंजनी सिसरन के घरे सेकोसंस साइपिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर इलाके के शमशान भूमि ले जावल जाए। आर मंदिर रोड पेची राफ्रेमी आर मंदिर रोड पेची राफ्रेमी 63 बरिस के 63 अंक के कोवी लंबान नारायणन गुजरगल हवन पैदाइश नाम पाक्यों उनकर माटी आज दिन के 1:30 बजे उन्हीं के घरे पेची राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार खातिर कपमाले हुए की शमशान भूमि ले जावल जाए। खेदन लेन फ्लोरियाल में 80 बरिस के सोहिनी खेदन गुजरगल हवन पैदाइश नाम जगरूप उनकर अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उन्हीं घरे फ्लोरिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिगा के शमशान भूमि ले जावल जाए। लातापी रोड ब्रिजेवियाजिया में 70 बरिस के 77 अंक के गिरजानन घुमारिया गुजरगल हवन आज उनकर माटी दोपहर बाद 2 बजे उनकर पत्नी विमला देवी घुमारिया के घरे ब्रिजेवियाजिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लातापी के शमशान भूमि ले जावल जाए। सोकापादू स्ट्रीट शमेंग्रोनिये में 72 बरिस के 72 अंक के बाला वॉडी राजू जगानायकलू गुजरगल हवन उनकर माटी आज सपहर 3 बजे उन्हीं के घरे शमेंग्रोनिये से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौ गोपाल शामुनी के शमशान भूमि ले जावल जाए। लाल बहादुर लेन मालेंगा साइपिया में 75 बरिस के 75 अंक के विनोद महेश गंगाराम गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर पत्नी रानी गंगाराम के घरे साइपिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैमौते मोगोश के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोकग्रस्त परिवार संगे हमने सहानुभूति प्रकट करे थैंजा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस की लहरों पे आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सुबह के 8:11 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। बोबासन, सिरिल, लेकनिंग, बिसावन, बिल्टू और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 13 जून को सुबह के 11:30 से दोपहर बाद के 2:30 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और फिर लावेनी स्कूल लेन, मोसेलमा वीआईएस, लावेनिया विलाज, मोसेलमा फ्रांगीपन और मोहित रोड के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 13 जून को सुबह के 11:30 से शाम के 3:30 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सेबी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस, 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: टिक टिक घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि सुबह के 8:12 हो रही है। आप जुड़े हुए AM2 रेडियो मॉरिशस के साथ, मीडियम वेव 719 किलो से हमारा प्रसारण चल रहा है लाइव MBC मौका से, और साथ में आप हमें टिकटॉक पेज पर भी देख रहे हैं। सभी दर्शकों को, सभी लिसनर्स को एक बार फिर प्रताप सिंह सीतालू का प्यार भरा नमस्कार और आदाब स्वीकार हो। जहां से भी आप सुन रहे हैं सभी का हम स्वागत करते हैं। और सुबह का नजाना का दूसरा भाग अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक, जहां प्लेलिस्ट में बहुत सारे गाने हैं, इन गीतों पर अपनों के नाम शामिल करना चाहते हैं तो टिकटॉक पर बेशक अपने नाम जोड़ सकते हैं या 4028085 पर फ़ोन कर सकते हैं। और बहुत सारे गाने हैं जैसे कि फिल्म एतराज़, मिस्टर नटवरलाल, एतबार, डोली सजा के रखना, एक लड़का एक लड़की, फिर किंग अंकल, जज मुजरिम और एल्बम डोली डोली। तो शुरुआत करते हैं एक एल्बम के साथ, सुचित्रा की आवाज़ है खामोशियाँ, और ये गीत हम चलाएंगे अनिरुद्ध राव जी के नाम, फिदू अब्दुल ये गीत आपके नाम, धनुक चंद जी, फिर कृष्णा नायकर यह गीत आपके नाम भी, नरवीश यह गीत आपके नाम, मौलन, प्राम, प्रीति, अमराबादी, विनय बोकरीब, आदरियन बेगे भी हमारे साथ जुड़े हुए, थैंक यू जी हमारे साथ देने के लिए। नताली स्वीट अहमद भी है, फिर मुकेश जी,

गुड मॉर्निंग, आप नेपाल से हैं और हमें देख रहे हैं वहाँ पर टिकटॉक के ज़रिए, हमें सुन भी रहे हैं। थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए। और फिर यही गाना जो है खामोशियाँ, ये गीत हम चलाएंगे फिदू अब्दुल के नाम, जो हमें सुन रही है बहुत बहुत प्यार के साथ। करिश्मा जी, यह गीत आपके नाम ही। और यहाँ पर देखते हैं और बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। मौदालबे से अनीता लाल जी, करुणा, अमृता, कविता, विनीता के नाम। और यही गीत हम चलाएंगे शिव मंदिर क्लेफो नंबर एक बाकवा के सभी सदस्यों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो परी, ये गीत आपके नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ। पीना पादू जी, आपका स्वागत है। और चलिए ये गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत है। और बीना पादू हमारे साथ जुड़ चुकी है, थैंक यू जी। चलिए सुनते हैं ये गीत, बहुत ही प्यारा सा गाना। और यह गाना जो है अपने आप में, इस ये जो गीत के बोल है, जो म्यूज़िक है, वाओ, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। चलिए सुनते हैं ये गाना।

अब बस एक सवाल है, कौन सा दिन पहले आता है, संडे या मंडे? बताना बहुत मुश्किल है। कौन पहले आया, मुर्गी या अंडे? ये भी बताना बहुत मुश्किल है। सो कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ। सुबह के 8:19 और बहुत अच्छा लग रहे हैं कि आप लोग हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर और हमें सुन भी रहे हैं। अगला गाना इट्स फ्रॉम द मूवी एक लड़का एक लड़की, बहुत ही हिलारियस सॉन्ग है। इस गीत को आप सुनेंगे तो आप हंसने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे, क्या बात है। सो दिस गाना विल बी फॉर मंजुला कावलेसर, उनके हस्बैंड संदीप के नाम। मिमी यह गीत आपके नाम भी। शिवा आकाश अर्जुन यह गीत आपकी मामा तनुजा अर्जुन के नाम। बीना पादू ये गीत आपके नाम भी। वेदिता बलक ये गीत आपके नाम। जगत तमंग ये गीत आपके नाम भी। साधना कर्पन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। शिक्योर से गीत शीतल और मनीष के लिए भी। और माधवी भी हमारा साथ दे रही है, हेलो माधवी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड ये प्यारा सा गीत आपके नाम। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो पर और टिकटॉक पर हमें देख रहे हैं, सो प्यारा सा गीत आपके नाम भी। माधव की ओर से ये गीत उनके पापा कवि, मामा टीना, दादी माला, पुपुरीना और उनके उनके चाचू जान साइलेंट के नाम, जो अपने चाचू से बहुत प्यार करते हैं। समाधव यह गीत आपके नाम भी। संजय बिहारी यह गीत आपके नाम भी करेंगे। राजमन्ना जी हमारा साथ दे रहे हैं, हेलो राजमन्ना जी, यह गीत आपके नाम, आपके पत्नी, आपके बच्चों के नाम। सावन और जिमी दुखिया, लोंग चिबुग राजा नानो स्टीव, यह गीत आपके नाम भी। सुदेश जसवा जी, यह गीत आपके भाई, आपकी माँ राजकुमारी और सब जसवा परिवार के नाम। और यही गाना हम चलाएंगे, यह गीत हम चाहेंगे रीता के नाम, रीता की ओर से उनके बेटे शैलेश, शैलेन, फिर बहू रानी, बहू स्वस्ति। और यह गीत अनुष्का परी और सभी उनके दोस्तों के लिए। और परी जी क्या करें कुछ, जी हाँ परी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हेलो परी जी, गुड मॉर्निंग। अगला गीत आपके नाम। इंदिरा मत्स्य सिंह जी नमस्ते, ये गीत आपके नाम भी हम करेंगे। प्रिंसेस आरती भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और यही गाना हम चलाएंगे। मीला हेमू, मीला रामसामी, पद्मिनी रामलोचन जी के नाम, बहुत बहुत प्यार के साथ। तो चलिए एक साथ सुनते हैं प्यारा सा गाना, अंडे से आई मुर्गी या मुर्गी से आई अंडे। अमित कुमार, साधना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है एक लड़का एक लड़की।

एक से एक प्यारे और दिलचस्प गाने आप लोगों के लिए इस वक्त 8:26 हो रहे। थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए MBC रेडियो मॉरिशस की लहरों पे 4028 पर आप फ़ोन कर सकते हैं और गीत मांग सकते हैं। अगला गाना जो है परदेसिया, जी हाँ, मिस्टर नटवरलाल फिल्म से लिया गया गीत है ये। और ये गीत हम चलाएंगे इंदिरा लौटन जी के नाम, सुंदर पाल सिंह जी है, फिर दीक्षा, कृष्णा, गोपी और उनके से परिवार जो लंदन में है वहाँ से मैं सुन रही है। ऑस्ट्रेलिया में है अजय और पूनम चिंताराम, यह गीत उनके गए थे बाल गोपाल के लिए। और फिर यही गाना हम चलाएंगे वीमा के नाम, वीमा की ओर से उनके पति और उनके दो बच्चों के नाम, बहुत बहुत प्यार के साथ। और यही प्यारा सा गाना जो है परदेश या हम चलाएंगे, जितने भी लोग परदेश से आए हुए हैं आजकल मॉरिशस में घूमने के लिए या छुट्टियां बिताने के लिए, तो यह गीत आपके नाम भी। और जो लोग इस समय ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली, और घर पे है, घर का काम काज कर रहे और बेशक हमें सुन रहे हैं प्यार के साथ, तो यह गीत आपके नाम भी, परदेसिया।

0: परदेसिया सच है पिया, सब कहते हैं मैंने दिल दे दिया। क्या बात है, प्यार मोहब्बत की बात है और ये रेडियो मर्चेंट्स की लहरों पे, और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें सुनते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आपका शुभ नाम?
1: मैं सरिता बोल रही हूँ।
0: आपका स्वागत है सरिता जी।
1: मैं एक लड़का एक लड़की के गाने में मेरे नाम जोड़ देना।
0: वो गीत चल चुका है, एक लड़का एक लड़की का। अगला गीत है मुकेश और शारदा की आवाजों में, तुम प्यार से देखो। यह गीत किसके नाम?
1: वो सरिता और तेजस के नाम से।
0: ओके जी, सो अगला गीत आपके नाम और तेजस के लिए, ठीक है। ओके, और एक दोस्त से लाइन पे उनसे मिलेंगे। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: नमस्कार। आपका शुभ नाम?
2: मैं पालमौ से रानी बोल रही हूँ।
0: हाँ रानी, आपका स्वागत है, बोलिए।
2: आज मेरे बेटे का जन्मदिन है।
0: बेटा का नाम क्या है?
2: धीरज।
0: धीरज को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।
2: उनकी पत्नी रुमा, उनकी बेटा धे, उनकी बेटा केशव, उनकी बेटी अस्मिता, मैं उनकी माँ हूँ। उनके सब परिवार को बधाई देते हैं।
0: जी हाँ, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उन्हें।
2: शुक्रिया।
0: ओके, और एक दोस्त

0: लाइन पे। सो बेशक हम आपको लाइन दे रहे हैं। ऑलराइट, हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्ते। प्रेमिला जी, कैसे हैं आप?
1: जी।
0: ठीक ठाक,
1: नमस्ते प्रणाम जी।
0: शुभ नमस्कार।
1: जी
0: और आप किसको याद कर रही हैं?
1: मेरे भाई की याद में।
0: उनके याद में। हाँ,
1: हाँ,
0: और भैया का नाम
1: याद
0: क्या
1: में
0: था?
1: उसकी बेटी रक्षा है, मौताबा रहती है, और मेरे तीन बहनों के भी याद, यही मेरे भाई का याद में।
0: और उनके गुजरे कितने दिन हुए?
1: बहुत दिन हो गए लेकिन भैया है ना, याद
0: हाँ,
1: है।
0: ये तो यादें तो आती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। गीता बाई है नोवेल फोन से। हेलो गीता बाई, नमस्कार,
1: हेलो,
0: कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे
0: एकदम
1: हैं?
0: ठीक ठाक। और बोलिए, जिंदगी कैसे चल रही है?
1: चल रही है?
0: धीरे धीरे, हौले हौले।
1: नहीं, मजे चल रही है।
0: हाँ चलिए, और अगला गीत किसके नाम?
1: मैं मेरे सब परिवार के लिए और खास करके एमबीसी स्टाफ के लिए और सब जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बीमार हैं, उन सबके लिए।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक साथ सुनते हैं। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, न न न न। बहुत ही प्यारा सा गाना, फ्रॉम द मूवी सपनों का सौदागर। चलिए एक साथ सुनते हैं।

जिंदगी का क्या भरोसा, अभी है पता नहीं आने वाला पल कौन है या कौन नहीं होगा। जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि ये जो पल है इस पल को जी लेना चाहिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो इना मीना मो, रंग बिरंगी दुनिया के रंगों में रंगो, खूब हंसो और प्यार करो रूठे ना रहो, अक्कर बक्कर बम्बे बो इना मीना मो। वाओ क्या गाना है, फिल्म किंग अंकल का गाना लहराता हुआ मचलता हुआ आ रहा है। और यह गीत आप सभी दोस्तों के नाम हम करेंगे, खासकर डॉक्टर रामचंद, राकेश रामचंद जी के यहाँ उनकी नीस आई हुई है। सो उनकी नीस का नाम है सानिया और यह गीत उनकी बहन तानिया, मामा है आरती और फिर यह गीत आशा और सब रामचंद परिवार के नाम। जी हाँ, जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि ये जो जिंदगी है इसका कुछ भी भरोसा नहीं। सुबह के 8:42 हो रही है। जी हाँ, हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। चलिए सुनते हैं अगला गाना, फिल्म का नाम है किंग अंकल और यह गीत, यही गीत हम चाह रहे हैं शास्त्री बुनमाली जी के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। और यही गीत रिहाना हसनानी जी के नाम भी हम चलाएंगे, उनकी बहन साइदा, फिर बेन, फिर जारीरा और सब हसनानी परिवार के नाम जो फिनिक्स से हैं।

0: कोई दोस्त या कोई खास इंसान आपसे नाराज हो गया हो तो ये गीत गाइएगा उसके आगे, अक्कर बक्कर बम्बे भू इना मीना मो और उस व्यक्ति का गुस्सा एकदम दूर हो जाएगा। मनाने मनाने का क्या बहाना है, अगर कोई रूट जाए ना तो उसे इसी गीत को गाकर सुनाइएगा। अगला गाना फिल्म तीन देवियों से लिया गया है, लिखा है तेरी आंखों में, बहुत ही प्यारा सा गाना। और देखते हैं इस गीत के सुनने वाले कौन से हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए। हेलो हेलो हेलो जी, नमस्ते,
1: आप कैसे हैं?
0: आपका नाम?
1: मैं रीता हूँ।
0: हाँ रीता, आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आप कैसी है?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: और
1: मेरे बेटा बहू का जन्मदिन है 17 को।
0: बेटा और बहू दोनों का?
1: हाँ दोनों का।
0: ओके सो स्वीट।
1: मेरे दामाद के भी 18 को जन्मदिन है।
0: बहुत खूब। और
1: अगला नाम है सुविराज बसगीतिया और बेटा का नाम है संजय, बहू का आशा भिखारी। भिखारी परिवार, बसगीतिया परिवार और बंधु परिवार के लिए एक अच्छा सा गीत डाल देना।
0: जरूर प्यारा सा गीत है, मुनि के नाम करेंगे। ठीक है ओके, बहुत धन्यवाद। कमला जी काटकोको से, हेलो कमला जी।
2: नमस्ते प्रताप जी।
0: नमस्ते जी, कैसी है आप?
2: अच्छा है, आप कैसे हो?
0: एकदम ठीक ठाक।
2: हमारे नातिन के जन्मदिन बकाल।
0: क्या नाम है?
2: हमारे नातिन के नाम है यूर्वी। यूर्वी ओकर मामा रेशमा, ओकर बाप सतीश और ओकर भाई है तक्षील। सामचंद परिवार पे चित्राफ हुए से हम ओकर नानी है कमला रामेन, सब रामेन और सामचंद परिवार के ओर से बहुत पढ़ी जे में आगे बढ़ी, नाम रोशन करी।
0: बहुत खूब बहुत खूब। और हम भी दुआ करते हैं कि वो जीवन में हमेशा आगे बढ़े और उनके सभी सपने साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। और एक दोस्त लाइन पर से मिलेंगे। हेलो
3: हेलो नमस्कार, प्रणाम जी। प्रताप
0: प्रणाम, किस नाम थी जी आपका? रेडियो सेट का वॉल्यूम बहुत जोर है, प्लीज कम कर दीजिए वरना बात।
3: हम बहुत दूर है,
0: दूर। अब ठीक है, बोलिए
3: आपको प्रणाम करते हैं। आप सवेरे सवेरे आकर इतनी अच्छी हंसी मजाक करते हैं।
0: हाँ।
3: आपको हम शुक्रिया करते हैं और पूजा करने गई थी आपके प्रति।
0: ओके जी,
3: आप भगवान प्रताप सिंह को हमेशा खींचते रहे।
0: सो स्वीट, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दुआओं के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए।
3: और आपके सामने बड़ी अच्छी बनती है, आप आते हैं।
0: और अगला गीत आप किसके लिए मांग रही है?
3: सभी के लिए,
0: सभी के लिए जो हमें सुन रहे हैं।
3: ओके
0: थैंक यू जी, दैट वाज सो स्वीट ऑफ यू। और एक दोस्त है लीला जी बॉशरी से, हेलो।
4: नमस्ते प्रताप जी।
0: नमस्ते जी, आप कैसी हैं?
4: मैं भी ठीक हूँ, और परिवार सब ठीक है?
0: काफी दिनों के बाद आप हमें फोन कर रही है।
4: हाँ
0: एक ही नंबर है ना। और अगला गीत किसके लिए?
4: तो अगला गीत एक जन्मदिन है, कल हमर भतीजा के जन्मदिन रहल।
0: कौन नाम बा?
4: रवि शर्मा काशी। तो उसो सोता होलो करा,
0: बहुत उन्हें बधाई है।
4: शुभकामनाएं दे रही हूँ सभी परिवार की तरफ से, उनकी पत्नी उनके बच्चों की ओर से, सभी लोचन परिवार और काशी परिवार की ओर से उसे बधाई दे रही हूँ। तो एक सुंदर सा गाना चला देना उसके।
0: अगला गीत हम उन्हीं के नाम करेंगे। थैंक यू आपने फोन किया। और अभी ओके जी बाय। और एक दोस्त है लाइन पे सुनीता क्लिनी से, हेलो सुनीता। सुनीता जी हम आपको सुन, हेलो कैसे हैं आप?
5: मैं अच्छी हूँ, मैं गीत माना चाहती हूँ मेरी नाती के लिए, कल उसका जन्मदिन है। रैना देव जी जो तनागा में रहती है, उसकी आजा आजी आबी स्नेना अक्षय अंजू विशाल इंदिरा
0: आपकी बहू के लिए। ओके जी जरूर, अगला गीत हम उन्हीं के नाम करेंगे। और एक दोस्त लाइन पे उनसे मिल लेते हैं। हेलो
6: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
6: मैं चंदानी हूँ मौसर माउंट से।
0: आपका स्वागत है चंदानी जी, बोलिए।
6: धन्यवाद। मैं अपनी बहन की शादी की सालगिरह पे उनको शुभकामनाएं दे रही हूँ, उनके सारे बच्चों की ओर से। मैं उसकी बहन चंदानी के जीजा राज,
0: हाँ।
6: वो मोदालबे रहती है।
0: ओके।
6: शांति नागेन और गासन नागेन,
0: हाँ।
6: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी हाँ, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
0: और हमारी ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 18 तारीख को
0: ओके जी।

बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया, ठीक है। ओके, तो चलिए एक साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। लिखा है तेरी आंखों में, अब आंखों में क्या लिखा है, चलिए एक साथ सुनते हैं।

इसी गीत के साथ ही प्रोग्राम मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजारा यही समाप्त होने जा रहा है। 9 बजे समाचार, उसके बाद पीक टाइम मैगजीन, आज की चर्चा आप सुनेंगे। हमारी आपकी मुलाकात होती रहेंगी रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन की लहरों पे, और एक मुलाकात तक हमें दीजिए इजाजत। और जय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था गुबिन के साथ। नमस्कार आस्था।
2: नमस्कार अभी। नमस्कार सभी सुनने वालों को। घरेलू हिंसा से जुड़े कानून और को मजबूत बनाने के लिए सरकार डोमेस्टिक अब्यूज़ बिल लेकर आ रही है। ये नया कानून मौजूदा प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जगह लेगा और घरेलू हिंसा के बदलते स्वरूपों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके तहत शारीरिक हिंसा के साथ साथ आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न को भी नष्ट किया जा सकेगा। पीड़ितों और उनके बच्चों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने, दोषियों को जवाबदेह बनाने तथा घरेलू हिंसा की घटनाओं को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरणों के उपयोग को लेकर बनी विवाद की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार कानून पर फिर से गौर करेगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि ट्रैफिक एक्ट, रोड ट्रैफिक एक्ट और उससे जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन लाए जाएंगे ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हैंड्स फ्री डिवाइस और गाड़ी में लगे इन बिल्ट कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग ड्राइविंग के दौरान किया जा सके। सरकार ने निजी प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए ग्रांटेड एड स्कीम में बदलाव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च कम करना, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, कर्मचारियों की नौकरियों को सुरक्षित रखना और निःशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा को जारी रखना। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान जारी रहेगा। छोटे स्कूलों में शिक्षक और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियाँ एक ही व्यक्ति को सौंपी जा सकेंगी। वाक्वा क्यूपिप और सैंपियक निवासियों के पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव लाया जा रहा है। CWA की ने घोषणा की है कि 3 क्षेत्रों में पानी वितरण के नए समय 17 जून से लागू होंगे। और आज की चर्चा कार्यक्रम का विषय है नारी सशक्तिकरण, स्कॉट एनालिसिस। हमारी सहयोगी अभी उदय की मेहमान रही हैं, होंगी मिस शाहोन रामचंद। तो आज की चर्चा रेडियो मॉरिशस पर 9 बजे। और ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है। ईरान के विदेश मंत्री के अनुसार प्रस्तावित समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोलना और ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों में क्रमिक ढील शामिल है। तो इन खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आगे दीजिए नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: आज की चर्चा।
1: नारी शक्ति का स्वरूप है, इसीलिए 9 महीने तक अपने पेट के भीतर बच्चे को पालने की अहम और अद्भुत शक्ति है। इसी शक्ति के स्वरूप को पूजना मनुष्य का कर्तव्य है। नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज एक ऐसे विषय हम लेकर आए हैं जहां पर चिंतन मनन करने की बहुत ही आवश्यकता है। न केवल हम फरवरी या फिर मार्च महीने में हम विश्व महिला दिवस मनाते हैं, अपितु ये एक ऐसा दिवस है जहां पर मुझे लगता है बार बार इसको मनाना बहुत ही आवश्यक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नारी के बारे में जो दृढ़ता, मेहनती और रेजिलियंस की प्रतिमूर्ति है। साथ ही साथ वे मॉरिशस की एक ऐसी बेटी है जो बाहर जाकर के, खासकर भारत के गोवा प्रांत में जाकर के मॉरिशस का नाम रोशन किया है। जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम विषय इसी पर आधारित है, नारी सशक्तिकरण, द वुमन एम्पावरमेंट, अ स्कॉट एनालिसिस। स्कॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, यानी कि उनकी शक्ति। सी का मतलब है चैलेंजेस।

0: यानी कि उनकी जितनी सारी जो चुनौतियां हैं, ओ का मतलब है opportunities यानी कि संभावनाएं, और टी का मतलब है threats यानी कि risk, dangers या फिर खतरे। और इसी को ध्यान में रख करके आज हम बात करने वाले हैं हमारे मुख्य मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम है मिस शागन रामचंद। सबसे पहले नमस्ते मिस शागन।
1: नमस्ते अभी।
0: बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम आपको यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। हम आपको जितने सारे जो दर्शकगण और श्रोतागण हैं आपको बताना चाहेंगे कि मिस शागन रामचंद एक मिस ऑफ वुमेन ऑफ वंडर्स हैं। साथ ही साथ वे यहाँ से निकल करके भारत गई और वहाँ जा करके उन्होंने मॉरिशस का प्रतिनिधित्व किया और मिस शागन मिस जुवेल ऑफ इंडिया नारी फर्स्ट जैसे खिताब प्राप्त करके मॉरिशस का नाम रोशन किया। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो शागन जी कि आप यहाँ पर आए हैं और मॉरिशस का नाम आपने रोशन किया। आप हमें बताइए कि मिस शागन रामचंद कौन है, इसके बारे में बताइए सबसे पहले।
1: तो मैं शागन रामचंद हूँ, मैं फोंडिसा के रहने वाली हूँ और मैं एक पीआर एजेंसी में काम करती हूँ। और मैं एक सिंगल मदर हूँ जो मेरी जर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और मैंने बहुत पेजेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और जो भी हूँ ये मेरी जर्नी का हिस्सा है।
0: वो तो दिख रही हैं आपके जो साश हैं और आपके सर पर एक बहुत ही सुंदर मुकुट है और इस प्रकार के मुकुट डालने के लिए एक बहुत बड़ा काम है ना इसके पीछे।
1: डेफिनेटली। तो मैंने बहुत बहुत चैलेंजर्स के तरह गुजरी है, लाइक मुझे पब्लिक स्पीकिंग से टैलेंट शो हमेशा काम से लौट के तब मैंने पब्लिक स्पीकिंग हमेशा किया है और मैं सब हमेशा रोज टैलेंट शो मैं अपनी डांस सीखती हूँ। मैं टायर्ड भी हूँ तो भी सीखती हूँ,
0: मतलब अंदर में जिस तरह से मैंने आपको मैं बताया अंदर में वो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन जो दृढ़ता और समर्पण भाव की जो भावना है अंदर, इसीलिए आप ये सब कर पा रही हैं।
1: डेफिनेटली।
0: तो आप हमें ये बताइए कि नारी फर्स्ट जुवेल ऑफ इंडिया के जो कंपटीशन है जो प्रतियोगिता है वहाँ पर भाग लेने का मौका कैसे मिला, ये संभावना किस प्रकार से सामने आई?
1: तो मैं बचपन से मुझे फैशन डांस से बहुत लगाव था। तो मेरी जर्नी शुरुआत हुई थी मिस यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से, फिर मैंने मिस इंडिया मॉरिशस वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट किया था और मैंने मिस पॉपुलर फेस मिस फोटोजेनिक का खिताब जीती थी।
0: जब आप एक स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस?
1: यस, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस तब मैंने मिस इंडिया मॉरिशस वर्ल्ड वाइड का खिताब जीती थी। फिर मैंने मिस वुमेन ऑफ वंडर्स का विनर बेस्ट पब्लिक स्पीकर बेस्ट टैलेंट शो का खिताब जीती थी और तभी वहाँ से मौका मिली थी कि मैं मिस इंडिया जुवेल ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकी। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई और यहाँ तक मैंने वो हासिल किया है।
0: तो इस यात्रा में मिस शागन कौन कौन सी दिक्कतों, जैसे कि हम बात करें स्कॉट एनालिसिस, कौन कौन सी शक्तियाँ दुर्बलताएँ संभावनाएँ खतरे इन सभी को पार करके यहाँ तक आप आए?
1: हाँ, बहुत चैलेंजेस थे क्योंकि वहाँ पर 70 पार्टिसिपेंट थी और वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इंडिया वो बहुत बहुत डिटर्मिनेशन बहुत करेज बहुत पेशेंस दिखा रहे थे
0: और वे लोग वहाँ पर फैशन को जाने वाले हैं
1: क्योंकि वहाँ एक मीडिया वर्ल्ड है। सब काम वहाँ से शुरुआत हुई थी तो वो बहुत प्रोफेशनल थी तो मुझे थोड़ा घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे उनको फेस करूँगी। पर भी मैंने ये सब नहीं सोचा, मैंने सिर्फ अपनी कोरेज डिटर्मिनेशन और बहुत प्रैक्टिस लगाई थी क्योंकि दिन रात मैं सुबह 4 बजे उठती थी, प्रैक्टिस करती थी, क्वेश्चन आंसर पब्लिक स्पीकिंग वो बहुत एक वेरी इम्पोर्टेंट सेशन है वहाँ। और मुझे टैलेंट शो में बहुत जो कह सक कर रहे, as already told you that

0: कि मैंने हमेशा रोज टैलेंट में डांस को सीखती रहती हूँ,
1: रिहर्सल करती
0: yes,
1: रहती थी।
0: रिहर्सल करती हूँ।
1: तो वहाँ पर इस तरह के प्रैक्टिस करना, सुबह के 6 बजे उठ करके पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े जो काम है ये करना, डांस को मतलब प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना लगातार, तो आपके लिए आसान था क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे कंटेस्टेंट है ना?
0: हाँ, आसान रही थी क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था।
1: अच्छा।
0: पर वो घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि ऑडियंस क्या करेंगे, और वहाँ एक रिनाउ कोरियोग्राफर थी संदीप सुप्रकर, सो उसे देख के वो बहुत प्रोफेशनल है, और वो मैं सोच रही थी क्योंकि कोई लाइक कोई डिफॉल्ट जैसे देख रहे हैं, तो मैंने ये सब बारे में सोच रही थी, पर कि मैंने भगवान का नाम लिया था और सब ठीक हो गई थी।
1: मतलब मॉरिशस का आशीर्वाद, मॉरिशियन जनता का आशीर्वाद आपके सर पर था इसीलिए। अब आप हमें ये बताइए कि जब आप वहाँ पर उस कंपटीशन में, उस प्रतियोगिता में जब आपने भाग लिया एक मॉरिशियन नारी के रूप में, किस तरह से आपने मॉरिशस को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया, आपका जो प्रतिनिधित्व कैसा रहा, रिप्रेजेंटेशन कैसा रहा?
0: तो मैं अपनी मॉरिशियन फ्लैग को हमेशा लेके जा रही थी क्योंकि मेरी शुरुआत हुई एयरपोर्ट से। मैंने अपने झंडा लिया था,
1: चौरंगा झंडा,
0: यस मैंने लिया था, और सब लोग देख रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि मॉरिशस क्या बहुत बड़ा चीज़ कर रही है, क्योंकि हमारी मॉरिशियन गर्ल अब्रोड जा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है मॉरिशस को। और मैंने पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी मॉरिशस भी डाली थी, और टैलेंट शो मैंने एक डांस किया था जो एक बॉलीवुड मेडली था, और सिगा भोजपुरी भी थी, और वो लोग बहुत लाइक दे फाउंड इट फैबुलस। और मैंने भी, और एक टैलेंट शो थी लाइक एलिमेंट गाउन में, सो मैंने अपने आउटफिट में शेल डाली थी, सीपी डाली
1: मतलब मॉरिशस के समुद्र तट में जा करके आपने वहां पर कलेक्शन किया ये शेल?
0: नहीं, मेरे फैशन डिजाइनर ने लगाई थी।
1: ओके
0: उसे, उसने लगाई थी। और like they found it very strange,
1: different
0: alag hai, aur natural shell thi.
1: Okay,
0: yes,
1: okay.
0: Natural shell. To ye hamari culture apne uniqueness dikha rahi hai ki hamare beautiful ocean ko main portray kar rahi thi. Yes.
1: जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर इस बात की पुष्टि हो रही है कि नारी सशक्तिकरण से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आती हैं, साथ ही साथ खतरे भी आते हैं, लेकिन इन चुनौतियों और खतरों के अलावा अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि संभावनाएं भी उभर करके सामने आती हैं, और जब हम चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स जिसे हम कहते हैं सोचना शुरू करते हैं, तब जाकर के क्रिएटिविटी सामने आती है, जिसे हम कहते हैं सृजनात्मकता या फिर रचनात्मकता। इसीलिए मिस शागन के कपड़े में मॉरिशस के समुद्र तट में पाए जाने वाले जो सीपियां हैं, जो शेल्स हैं, लगा करके वहां पर उन्होंने मॉरिशस का प्रतिनिधित्व किया, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। आपने एक पुख्ता इंतजाम किया इन सभी चीज़ों को लेकर के, इसके लिए हम आपको शत शत प्रणाम करते हैं। अब मिस शागन, आप हमें ये बताइए कि मॉरिशियन नृत्य जब वहाँ पर आपने किया, जैसे कि आपने बताया आपने एक मेडले किया, इसमें सेगा है, इसमें भोजपुरी भी आपने शामिल किया, तो सेगा और भोजपुरी जो मॉरिशसीय जो संस्कृति है वहाँ पर जब आपने उसको डेपिक किया, उनको समझ में नहीं आ रहा था डेफिनेटली, तो कैसे उन लोगों का रिएक्शन था, कैसे उन लोगों की प्रतिक्रिया थी?
0: उनका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव थी और इनर्जेटिक नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रही थी कि वो पसंद करेंगे या अंडरस्टैंड कर रहे थे, पर कि उन्होंने बहुत लाइक उन्होंने मुझे बोला कि मुझे स्टेप सिखाओ लाइक सेगा का डांस, तो मैंने थोड़ा थोड़ा स्टेप उन्हें सिखाया,
1: उन लोगों को
0: उन लोगों को सिखाए हैं, और उसे वो डांस बहुत पसंद आई थी, और वो हम मेरे वीडियो को उनके पास रखे, वो बोल रहे थे कि वो हमेशा लर्न करेंगे जब घर में जाके, तो वो स्टेप लाइक दे विल लर्न द स्टेप।
1: और

0: जब आप इस तरह की जो जो म्यूजिक है, जब आप मतलब चुनना शुरू किया, तो ऐसे ऐसे म्यूजिक आपने क्यों चुना जो मॉड्यूशन, जो सेगा और भोजपुरी के जो जो म्यूजिक है, मतलब आपने इसको लेकर के एक मतलब आपने सोचा, एक प्लेलिस्ट बनाई, किस तरह से था?
1: हाँ, मैंने 1 महीने लगाई थी.
0: 1 महीने?
1: यस, टू चूज अ सॉन्ग, बिकॉज क्योंकि मैं अपने रूट को, अपनी कल्चर को दिखाना चाहती थी. और मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से बात भी की थी, लाइक मिसेस देवीना मोंगा और याशना रघुनंदन की एडवाइस भी लिया था. और उन्हें मुझे बोला था कि मॉरिशस का कल्चर, इट इज़ डेफिनेटली ए मस्ट, लाइक हमें उन्हों को दिखाना चाहिए कि हमारे मॉरिशस कल्चर को, अपने रूट्स को, अपनी डाइवर्सिटी को तो कैसे पोर्ट्रे करेंगे. सो हम पोर्ट्रे कर सकते हैं अपने आउटफिट पे, अपने डांस में. सो हम तो मैंने अपने डांस का इस्तेमाल किया और मेरे कल्चर को दिखाई.
0: मिस शखन, जब आप वहां पर पहुंचे, बहुत सारे अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग राज्यों के, डिफरेंट स्टेट्स के लड़कियां वहां पर आई हुई थी गोवा में, तो आप किस तरह से उन लोगों के साथ, अपने मॉरिशस की जो संस्कृति है, उन कंटेस्टेंट्स के साथ आप शेयर करते थे इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ बात करने का तरीका, हमारे किस तरह से आप वो जैसे कहते हैं विचारों का आदान प्रदान कैसे करते थे आप?
1: तो मैंने लाइक अपनी लैंग्वेज लिया, यूज़ किया था, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी भाषा सिखाई है, लाइक बोंजो, ओ रेवो, तो दे ट्राई इट. और मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख के आई थी. और एक राउंड थी, साड़ी राउंड, हमें
0: सारी राउंड
1: यस
0: मीन्स साड़ी पहनना चाहिए।
1: यस साड़ी पहनना, साड़ी बाय द बीच. तो हमें साड़ी पहन के बीच का जाना चाहिए इन द मॉर्निंग
0: अच्छा,
1: एट 6 AM.
0: बाप रे,
1: हाँ
0: सुबह।
1: हाँ तो वहाँ मैंने, सभी स्टेट ने अपनी अपनी साड़ी पहनी थी, क्योंकि वो अपनी स्टेट का, लाइक दे वांट टू शोकेस दे स्टेट. तो मैंने मैंने कंजीवरम तमिल कम्युनिटी से बहुत लगाव है. तो मैं हमेशा जब वो औरतें को देखती हूँ, वो लाइक कंजीवरम साड़ी पहन के, तो मुझे बहुत लाइक आई सॉ देम वेरी ब्यूटीफुली
0: ब्यूटिफुल।
1: ड्रेस. तो मैंने उसका, मैंने कंजीवरम का इस्तेमाल किया है,
0: किया।
1: और द कलर वाज ग्रीन. तो मैंने उसमें पिकॉक थी, मुझे पिकॉक से बहुत लगाव थी. तो मैंने वहाँ की, तो मैंने ये पोर्ट्रे किया है कि अपनी तमिल कम्युनिटी और अपने कावेदी को भी
0: वाओ।
1: दिखाई थी, क्योंकि ये हमारे समाज के बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. सो इसी तरह से हम, मैंने अपनी कम्युनिटी, अपनी मॉरिशन कल्चर, अपनी यूनिकनेस दिखाई है.
0: मॉरिशस एक बहु सांस्कृतिक, एक बहुभाषी और एक बहुजातीय समाज है। इस समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, अलग अलग प्रकार की बोलियां यानी कि भाषाएं हैं, और उन भाषाओं को प्रतिनिधि के रूप में ढाल करके हमारे जो मेहमान है मिस शागन, भारत में जाकर के वहां पर उन्होंने कावड़ी और साथ ही साथ कंजीवरम साड़ी पहन करके मॉरिशियस संस्कृति को दिखाने की पूरी पूरी कोशिश की। इसीलिए आज उनको हम मिस ज्वेल ऑफ इंडिया नारी फर्स्ट के रूप में देख पा रहे हैं, और मॉरिशियस की बेटी बन करके उन्होंने मॉरिशियस के छोटे टापू को एक इंटरनेशनल स्टेज में, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वहाँ पर सुशोभित किया और उभर करके सामने आया। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर इसके बाद हम फिर से आएंगे और बात करेंगे हमारे मुख्य मेहमान मिस शखन रामचंद के साथ।

जय हो मॉरिशस। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी मॉरिशन नारी फर्स्ट यानी कि द मिस ज्वेल ऑफ इंडिया नारी फर्स्ट के खिताब प्राप्त करने वाली हमारी मुख्य मेहमान मिस शागन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और नारी सशक्तिकरण यानी कि वुमन एम्पावरमेंट को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक स्कॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ चैलेंज अपॉर्चुनिटी फ्रैक्ट से जुड़े जो बातें हैं आज हम इस पर ज़्यादा चर्चा कर रही है। मिस शागन रामचंद, आप भारत में जाकर के किस प्रकार से वहाँ पर वुमन एम्पावरमेंट को लेकर के आपने मतलब वहाँ पर अपना प्रदर्शन किया।

0: क्योंकि आप वाओ जिसे कहते हैं वुमेन ऑफ वंडर्स, तो यू ऑलरेडी गॉट द ट्रेनिंग, यहाँ पर आपको एक प्रशिक्षण मिल गया था ना।
1: तो हमारे प्लेटफॉर्म वुमेन ऑफ वंडर्स इट इज़ नॉट ओनली ए ब्यूटी पेजेंट बल्कि सब एजेस की महिलाएं हैं
0: सभी।
1: यस, तो प्रीवियस ईयर में एक 60 ईयर्स ओल्ड का लेडी थी जो उन्हें इंडिया

0: ब्यूटीफुल नहीं देखना चाहते हैं, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं सब लोगों को एक यूनिक टैलेंट है जो हमेशा पोर्ट्रे करना चाहते हैं, सिर्फ डांसिंग फैशन से नहीं, बल्कि वो सीविंग जानती हैं, लाइक कुकिंग जानती हैं, तो वो अपने टैलेंट शोकेस कर सकती हैं, लोगों सोसाइटी को दिखा सकती, लाइक मैं डांसिंग कर सकती हूँ तो मैं हर औरतों को सीख सकती हूँ, लाइक आई कैन टीच देम, तो मैं लाइक कुकिंग लाइक सीविंग नहीं जानती हूँ तो मैं
1: दूसरों से
0: सीख सकती हूँ, तो हमेशा एक एक्सचेंज रहते हैं बिटवीन लेडीज और वुमेन एम्पावरमेंट। बिलीव करती हूँ कि मैं एग्जांपल लेती हूँ मेरे दादा नाना दादी नानी से, क्योंकि वो शुगर केन में जा रहे थे, वहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट शुरू हुई थी जो आज एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो चुकी है। और मैंने देखी है कि कैसे मेरी दादी सुबह उठ के चार बजे तीन बजे उठ के चार बजे वहाँ से एक ट्रांसपोर्ट लाइक नहीं
1: लाइक
0: बस मिल रहे थे और वो शुगर केन जा रहे थे, तो मैं देख सकती थी कि कैसे उसे स्ट्रगल करना चाहते हैं। और लाइक प्रीवियसली हमें दो बच्चे नहीं थे, सात बच्चे थे,
1: सात दस बच्चे थे, उन सबको संभाल करके इतना आसान नहीं था, चैलेंजिंग था,
0: बहुत चैलेंजिंग थी, क्योंकि वो सुबह जाके फिर वापस आके सबको तैयार करके लाइक दे हैव टू गो। मेरे पिताजी ने बोला था कि कैसे मेरी दादी स्ट्रगल कर रही थी, मेरी नानी और सो तो। और फिर मैंने अपनी माँ को देखी थी, मेरी माँ एक टेक्सटाइल में काम कर रही थी, तो मैंने देखी थी कैसे मेरी माँ स्ट्रगल कर रही थी कि वो हमेशा लाइक सुबह उठ के हमें तैयार करके, ब्रेकफास्ट तैयार करके हमें स्कूल भेजती थी। तो ये सब स्ट्रगल शो रहे थे कि कैसे वुमेन एम्पावरमेंट जागी थी
1: उस समय।
0: और नाउ कि मैं अपनी माँ को लाइक जो भी हूँ मैं अपनी एग्जांपल है, क्योंकि मेरी माँ एक उन्हें लाइक भाग लिया था, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ विलेज बन चुकी है, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी पर भी उसने ट्राई किया है और बहुत लेडीज की मदद भी की है, तो लाइक बहुत चीज़ ऑर्गेनाइज कर रही थी, लाइक फुटबॉल, लाइक डोमिनो, पैडल, लाइक क्विज आल्सो, तो बहुत लोग ने बहुत पार्टिसिपेट भी किया है। तो ये शो कर रही है कैसे वुमेन एम्पावरमेंट, कैसे लाइक वुमेन दे शुडंट बी ओनली बी एजुकेटेड, दे कैन डू एनीथिंग विदाउट बीइंग एजुकेटेड आल्सो, क्योंकि मैं कहती हूँ कि शक्ति, उन्हें शक्ति चाहिए ताकि वो बढ़ सके जिंदगी में। और आज के समय देख रही हो कि बहुत लेडीज हैं कि वो पॉलिटिशियन बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, बस कंडक्टर बन रही है, पायलट बन रही है, तो ये एक एग्जांपल है कि हमारी सोसाइटी में कि कैसे बहुत लेडीज आगे बढ़ रही है और हमें एग्जांपल बनना चाहिए हमारे बेटियों को कि वो भी एक टॉर्च बियरर बन सके हमारे सोसाइटी के लिए।
1: एगो ऐसा बखत रहल जहाँ पर हमनी के जो दादी नानी, हमनी के जो बड़का माँ फजर के, खासकर फजर के तीन बजे उठ करके जब उ लोग कारों में जात हलन सा काम करे के बखत, तो उ लोग हौजा जा करके बहुत मतलब अपन कमर के तुर तुर के काम करत हलन सा, गन्ना के काट के या फिर चाय के पत्ता के तुर करके उ लोग अपन जो कमाई करके तब जा करके उ लोग घर वापस आवत हलन सा। हमनी के जो दादी, हमनी के जो नानी, हमनी के जो बड़का माँ बाते, उ लोग हमनी के प्रेरणा स्रोत हवन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जैसे कि बोली ला सा। और ऐसन बखत में हमनी के एगो एगो एगो शक्ति मिलल बाते अपन जो मार्ग बाते ओकरा आर जस्ती प्रशस्त करे के। और जितना हमनी के जो दादी नानी जे आज इस धरती में नहीं हवन जा, बल्कि हमनी एमबीसी की पूरी टीम के बगल से, आज की चर्चा की भी पूरी टीम के बगल से उन लोग के शत शत प्रणाम करीला सा, उन लोग के आत्मा को सदगति प्राप्त हो या। अब आप हमें ये बताइए मिस शागन, जब वहाँ पर गए, वहाँ पर ऐसे ऐसे भी उम्दा कलाकार से मिलने का मौका मिला जो आपने सोचा भी नहीं था?
0: मैंने मलाइका को मिली थी और वो बहुत
1: मलाइका अरोरा
0: यस मलाइका अरोरा से मिली थी और उन्हें मुझे ये सैश और क्राउन भी

0: Pennata, जो एक ऑनर थी और लाइक इट इज़ वेरी रेयर टू सी इन फ्रंट टू सी देम इन फ्रंट ऑफ अस. और मैंने भी एक कलाकार सीरियल में काम कर रही थी, मुझे नाम थोड़ा याद नहीं है. और तो डिलाइटेड थी और वो बोल रहे थे क्योंकि पिछले नेक्स्ट सीजन में वो भी मॉरिशस में भाग लेंगी हमारे कंपटीशन में. दे विल असिस आवर कंपटीशन और मे बी दे विल एक्ट एज ए जज आल्सो.
1: अच्छा, तो ऐसे लोगों के साथ मिलने के बाद आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ?
0: मैं बहुत प्राउड, मैं शॉक में थी क्योंकि मुझे लाइक आई डिडंट came to use my word. तो मैंने फिर सोचा था नहीं कुछ बात करूंगी.
1: Of course.
0: हाँ,
1: तो ऐसे लोगों के मिलना ये तो बहुत है अहोभाग्य की बात है ना.
0: हाँ, क्योंकि लाइक इट इज वेरी रेयर क्योंकि हमें मौका नहीं मिलती है टू मीट देम. तो मुझे प्रिविलेज मिली है और मैंने उसे पूरा एडवांटेज भी लिया था. बहुत सम क्वेश्चन आंसर भी पूछा था और वो भी हमारे मॉरिशस कल्चर में लाइक दे वर ऑक्सिंग हाउ इट इज, हाउ इज द ओशन एंड सो ऑन. तो मैंने बहुत या डिटेल्स भी दिया था अपने मॉरिशन, हाउ इज हम मॉरिशन कल्चर, हम की हमें मल्टी कल्चर है क्योंकि हमारे डिफरेंट कल्चर डिफरेंट ट्रेडिशन है. तो मैंने ये सब बोली थी और लाइक दे वर वेरी लाइक दे लव मॉरिशस क्योंकि उन्होंने लाइक हॉलीडे भी किया है
1: मॉरिशस पर.
0: यस, तो वो सोच रहे कि अगले साल भी वो आएंगे और मॉरिशस के भाग लेंगे.
1: तो अब आप हमें ये बताइए, जब आप वापस आए मॉरिशस एक मॉरिशन बेटी के रूप में, जब आप वापस आए और यहाँ पर किस तरह से आपका स्वागत किया गया और लोगों मॉरिशन जनता का जो रिएक्शन कैसा था?
0: ये बहुत गर्व की बात थी क्योंकि बहुत लोग मुझे कॉल कर रहे, कंग्रेचुलेट कर रहे थे फेसबुक में, टेलीफोन के. पर भी एक प्राउड मोमेंट थी जब वो मेरे माँ बाप को बोल रहे कि अपनी बेटी को कंग्रेचुलेट कर रहे थे. तो मेरे माँ बाप भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे. तो ये काम में जहाँ जाती हूँ लोग मुझे देख के फेलिसिटेट कर रहे थे, लाइक दादा नानी सब सब देख रहे थे कैसे कैसे हमने लाइक डिस्प्ले किया है अपने टैलेंट को, अपनी पब्लिक स्पीकिंग को, ये सब हमने शोकेस किया. तो बहुत लोग बहुत लाइक दे वर फेलिस कंग्रेचुलेटिंग मी. यस,
1: मतलब ऐसे ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत ही गर्व महसूस होता है, खासकर जब हम कड़ा परिश्रम करते हैं और अंततः हमारी मेहनत रंग लाती है और हमें अच्छा लगता है कि एक एक अंदर में एक तसल्ली भी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन भी मिला था आपको?
0: हाँ, मिली थी क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है कि मैंने अपने मॉरिशस जनता को लेके अब्रॉड गई थी. और मैंने सिर्फ जब मैं वहाँ भाग ले रही थी तो मैं हमेशा अपनी कंट्री के बारे में सोच रही थी कि क्यों मॉरिशस नहीं अपने विनर कर सकती, क्योंकि बहुत लोग आगे बढ़ रहे थे. तो मैंने बहुत लाइक आई वॉज टेकिंग ए बर्डन ऑफ आर माई कंट्री, आई हैव टू मेक माई कंट्री प्राउड. ये सब मेरे दिमाग में, मेरे हाथ में कि मैं आगे बढ़ सकूँ, कुछ कर सके. तो मैंने बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत करेज लगाए थे कि मैं कर सकी हूँ अपने लेडीज को, अपने वुमन को, अपनी नारी को. कि मैं शक्ति, मैं बोल रही थी कि वुमन इज ऑलवेज ए सिम्बल ऑफ मदर दुर्गा. लाइक इट इज़ नॉट लाइक मदर दुर्गा जो बहुत हाथ हैं कि वो डिफरेंट टॉस कर रही है कि लाइक वुमेन यही सिंबलाइज करती है कि वुमेन काम जा रही है, बच्चे को समा रही है, एजुकेट कर रही है, काम कर रही है. लाइक दे वर डूइंग मल्टी टास्किंग. सो मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम सिर्फ लाइक किचन में नहीं स्टिक कर सकते हैं, हमें बहुत फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए है. क्योंकि लर्निंग doesn't stop here. It keeps on continuing till our death. So हमें हमेशा कुछ सीखना चाहिए.
1: बिल्कुल.
0: Learning हमेशा कुछ, हमेशा it should be updated, it should be ongoing.
1: अब हम ये बताइए कि अभी आपने बताया है कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए, तो आप एक स्त्री होने के रूप में घर का काम है, आप काम भी करते हैं, आपकी फैशन की दुनिया है और आपने कहा

0: आप एक सिंगल मदर हैं, तो किस तरह से आप इन सभी को मैनेज करते हैं, समय को कैसे बांट करके आप अपने काम करते हैं?
1: मैं सच कहूँगी बहुत डिफिकल्ट थी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मैं 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के सभी काम कर रही थी, क्योंकि अभी मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक फ्री टाइम है, बल्कि प्रीवियसली बहुत डिफ़िकल्ट थी क्योंकि मुझे लाइक मैं कह रही थी लाइक पब्लिक स्पीकिंग हमें क्वेश्चन आंसर 36 क्वेश्चन थी और 5 को राइटिंग में लिखना चाहिए, तो ये सब क्वेश्चन हमें लाइक वी हैव टू लर्न इट और उसे लाइक शुडंट बी इररिलेवेंट एंड देन अपने टैलेंट को हमेशा रिहर्सल करना चाहिए, क्या आउटफिट पहनने चाहिए। मैंने बहुत रिहर्सल किया कि ये डांस चेंज करके ये सॉन्ग चेंज कर पे मैं डिफरेंट डांस करी, तो मैंने बहुत ट्राई किया है, तब भी मैंने देन आई कम टू द फाइनल डिसीजन टू आद सेगा और भोजपुरी को एक मेले बना सकूँ और मैं पोर्ट्रेट कर सकूँ कि अपनी डाइवर्सिटी अपने कल्चर को और लाइक माय डॉटर देन अपने बेटी को मुझे लाइक उसका होमवर्क सिखा सकूँ, तो इट वॉज डिफ़िकल्ट, पर भी मैंने ये लाइक आई डि नॉट
0: मतलब हार नहीं मानी
1: तो यही कहती है रेजिलियंस।
0: हाँ, कैसे गिर करके फिर से संभल जाना।
1: यस, कैसे करेंगे
0: और
1: इट इज ऑलवेज सेड योर हार्ड वर्क ऑलवेज पेड।
0: एग्जैक्टली,
1: तो ये सब हुआ।
0: मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे जो मुख्य मेहमान मिस ज्यूवेल ऑफ इंडिया नारी फर्स्ट एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न स्त्री हैं, चाहे वो एक माँ के रूप में हो या फिर एक मिस के रूप में हो या फिर मॉरिशस की बेटी के रूप में हो या फिर एक कामकाजी महिला के रूप में हो, अलग अलग रूपों में वे अपने जो कार्य हैं, वे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं बहुत ही सक्रियता के साथ उसको निभा रही हैं। और आप हम कह सकते हैं मिस शाहन कि आप वुमन एम्पावरमेंट यानी कि नारी सशक्तिकरण का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। जिस तरह से आपने कहा कि आपकी जो दादी, आपकी जो नानी सुबह उठ करके वे लोग गन्ने के खेत में जा करके काम करते थे, तो जो शक्ति उन लोगों में थी उस जमाने में, उस शक्ति का जो संचरण है, जो सर्कुलेशन ऑफ द स्ट्रेंथ आप में आ गई है और आप आधुनिक समाज में, इस मॉरिशसीय समाज में आप उसी शक्ति का भरपूर प्रयोग कर रही हैं और ये शक्ति आप अपने बेटी को भी दे रही हैं और वे भी आगे जाकर के इस समाज के विकास के लिए, इस समाज के नाम को रोशन करने में लगेंगे। अब आप हमें ये बताइए, हम बात कर रहे हैं स्कॉट एनालिसिस के बारे में, आप हमें बताइए कि जब भी आपको एक फ़ोन कॉल मिलता है या फिर एक काम मिल गया या फिर एक न्यू असाइनमेंट मिल गया और आपको लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊँगी या फिर इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, तो क्या आप उस असाइनमेंट को ले लेते हैं करने के लिए?
1: डेफिनेटली, क्योंकि मुझे चैलेंजेस नहीं देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्योंकि आप चैलेंजेस देखोगे तो नहीं बढ़ सकेंगे आगे, तो इसीलिए मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी को देख रही थी। अभी मुझे एक कॉल मिली थी कि मेरी लाइक कोच है मिसेस शायना रायडू ने मुझे बोली थी कि एक वर्कशॉप है, हमें जाना था मंडे के, पर मंडे आई वर्क, तो मुझे ये सब अगर मैं देखूंगी कि मैं काम करती हूँ तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी वहाँ वर्कशॉप पे, तो मैं ये लाइक आई हैव टू डू सम एडजस्टमेंट,
0: कांच छाट के, सेटिंग फिटिंग
1: या मैं सुबह लाइक आई विल वर्क एक्स्ट्रा आवर्स सम अदर डेट इन ऑर्डर टू कवर दैट पार्ट, तो ये सब करना चाहिए क्योंकि हमें लाइक उसे अटेंड करना चाहिए वर्कशॉप को।
0: मतलब इस तरह से आप मतलब खतरे या फिर चुनौती को न देख करके अपॉर्चुनिटी और शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी यानी कि संभावना, इन दोनों को देखते हैं।
1: डेफिनेटली,
0: जितने सारे जो नारियां, खासकर जो महिलाएं जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रही हैं, सुन रही हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिंदगी में बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे काम हमें मिलते हैं, लेकिन हम उन काम में से जो संभावनाएं हैं, जो शक्तियां हैं, उनको नकार करके उन खतरों और चुनौतियों को देख कर

0: करके हम कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूंगा या फिर मैं नहीं करूंगी। ये नहीं कह करके ही हम पीछे हट जाते हैं, जैसे कि भोजपुरी में बोली जाती ना, हमने पछुआ जैसा। तो जब हम लोग पीछे निकल जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमारे सामने जो दूसरे लोग उभर करके चले जाते हैं, उन खतरों को, उन चुनौतियों को गले लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, तब हम पछताते हैं कि मैं भी ये कर सकता था ना, तब इट्स टू लेट, बहुत ही देर हो जाते हैं। अब आप हमें ये बताइए, आपने कहा कि आप नृत्य करते हैं और नृत्य की दुनिया में भी आपने बहुत दक्षता हासिल की है, और उसमें आपने मॉरिशस की जो सेगा और भोजपुरी है उसमें शामिल किया, तो किस तरह से आपने ये फ्यूजन किया और किस तरह से आपने अपना प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास किया?
1: तो मैं बचपन से डांस के बहुत लगाव थी। मैं हमेशा स्कूल में, कॉलेज में डांस में भाग लेती थी, डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग में, सेगा, फ्यूजन, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सबको लाइक आई एम इंटरेस्ट इन एवरी डांस। तो जब ये सब किया था तो मुझे ये डांस का जुनून बहुत लगाव थे। तो देन आई स्टार्टेड डांसिंग फ्रॉम चाइल्डहुड एंड देन मैंने हमेशा रोज म्यूजिक डाल के डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग पे नाचती थी, और जो भी न्यू सॉन्ग आउट होती थी तो मैं हमेशा नाचती थी,
0: और कोरियोग्राफी
1: और मैं अपनी ओन कोरियोग्राफी डालती थी, और मेडली करती थी उसके लाइक द कोरियोग्राफी ऑफ द सॉन्ग एंड मेरी कोरियोग्राफी, सो एक मेडली करती थी लाइक मैं हमेशा लाइक टूट फूट के ये नया करती थी। और मैं एक कथक डांसर भी थी। यस, मैंने लर्न किया था विज मेरे गुरु संदीप भीम जी, जो अब नहीं हैं। तो मैं हमेशा उसका ये कथक कीप रहती हूँ अलाइव। तो मैं हमेशा ये कथक करती हूँ, डांस करती हूँ, न्यू सीखती हूँ। एक शो है इंडिया में, डांस इंडिया डांस, वो बहुत प्रोफेशनल है। तो मैं हमेशा उसका स्टेप देख के लर्न करती थी,
0: सीखते थे,
1: यस सीखते थे। तो ये सब लाइक इट वाज ए जर्नी, और मैंने जब ये सब देखी थी तो मैं एक ये एक आइडिया मिली थी कि मैं अपनी लाइक मॉरिशस को, एक अपने कल्चर को, सेगा जो कल्चर अपने रूट है, सेगा भोजपुरी, सो मैं ये दिखा सकती हूँ। और मैं कहती हूँ कि लाइक इवन इफ आई हैव अदर प्रोजेक्ट टू गो अब्रॉड टू पार्टिसिपेट इन दूसरे इवेंट में, दूसरे कंपटीशन, तो इसी मैं अपनी कल्चर, अपनी मॉरिशस कल्चर को दिखा सकूं।
0: आप हमें ये बताइए कि एक मिस ज्यूवेल ऑफ इंडिया नारी फर्स्ट के खिताब मिल जाने के बाद, क्योंकि आपने कहा कि वहाँ पर 70 कंटेस्टेंट थे, 70 पार्टिसिपेंट्स वहाँ थे, उनमें से आप सेकंड रनर अप पहुँच गई हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, एक अचीवमेंट है, न केवल आपके लिए बल्कि पूरे मॉरिशस के लिए एक उपलब्धि है। आप हमें ये बताइए मिस शाहन कि आने वाले दिनों के लिए या फिर आने वाले भविष्य में आपकी क्या परियोजना है, न्यू प्रोजेक्ट क्या है?
1: इनफैक्ट बहुत आइडिया हैं, लाइक अभी अभी एनवायरनमेंटल डे है, तो मैंने मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट से 300 प्लान्स की रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि मुझे ये सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मॉरिशस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, लाइक मैं स्कूल में, ताकि मैं बच्चों को सिखा सके कि एनवायरनमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है, और मैं मेरी जुम्बा क्लासेस में जो औरतें हैं, मैं
0: अच्छा, आप जुम्बा भी सिखाते हैं?
1: यस, मैं जुम्बा,
0: ये तो आपने मुझे बताया नहीं, चलिए
1: यस मैं जुम्बा भी सिखाती हूँ, तो मैं उन्हों देंगी या और 50 पब्लिक को देंगी। सो मैं डिवाइड कर रही हूँ ये प्लान कैसे कैसे बांटेंगे, ताकि हर पार्ट में मिल सके, और मैं दिखा रही हूँ कि हमारे एनवायरनमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है। और जो म्यूजिक डे आएंगे, तो मैं जुम्बा टीचर हूँ, तो मैं ये पब्लिक को लाइक इट इज़ ए फ्री फॉर ऑल द पब्लिक टू कम टू शो, कि मैं उनको बता सके कि म्यूजिक के साथ कि अपने सेहत के बहुत इम्पोर्टेंट रखना चाहिए, तो इट विल बी ए फन एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ। तो मैं अक्वा जुम्बा भी करूँगी, जो भी इंटरेस्ट है वो आ सके, और मुझे कैंसर भी

0: लोग लाइक आई हैव इनिशिएटिव फॉर कैंसर पीपल ऑल्सो, लाइक मैं एक मार्च करूँगी और स्क्रीनिंग की भी इंतज़ाम भी करूँगी क्या, ताकि लोग बहुत लेडीज आ सके और रेगुलर चेकअप कर सके. तो बहुत प्रोजेक्ट है कि मैं करना चाहती हूँ और इसके मेरे ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मिसेस देविना मोंगा या शिना रघुनंदन, सो वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, बहुत आइडिया भी देती है तो कैसे करेंगे. और वो हमेशा कहते हैं कि हर लोगों हर लेडीज़ को अपने पास लेके जाओ और उन्हों भी एग्जांपल दीजिए कि वो काम में दे सके. अभी अभी हमने एक इवेंट किया था मदर्स डे में, तो बहुत लेडीज़ आए थे, इवन दो दे डोंट हैव ए चाइल्ड तो भी आए, सभी को गिफ्ट मिली थी. तो एक प्रसन्नता मिलती है कि उन्होंने को लाइक ए स्मॉल स्माइल इट्स मेक अस ए बिग डे फॉर अस.
1: बिल्कुल
0: यस. तो हमने ये इनिशिएटिव भी लिया था और हम भी अभी हमने एक इवेंट किया है, एक हमारे प्रेसिडेंट ने किया है, मिसेस देविना मोंगा ने किया है, ओशन प्रोजेक्ट. वो दिखा तो हमने डिफरेंट आउटफिट लाइक यूज़ किया था क्योंकि हम अपने ओशन को पोर्ट्रेट कर रहे थे. तो कैसे हमारी ओशन इम्पोर्टेंट है, हमारे एक्वाटिक्स एनिमल्स वेरी इम्पोर्टेंट. सो ये सब इवेंट उसने लाइक हमने इम्पोर्टेंस लगाई थी. यस.
1: मतलब आप विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं और सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं. तो इन ये सब जब आप करते हैं तो आपको क्या सीखने को मिलता है और कौन कौन से स्किल्स आपने अक्वायर किया?
0: मैं स्किल्स मिली हैं कि सब कुछ आसान नहीं है, हमें बहुत पेशेंस रखना चाहिए और बहुत डिटर्मिनेशन भी रखना, रेजिलियंस भी, क्योंकि सब कुछ मिलती नहीं है. तो हमें कुछ पेशेंस रखना चाहिए और समटाइम्स आवर प्रोजेक्ट डजंट स्टैंड, तो हमें फिर भी अपने दूसरे आइडिया के साथ करते हैं. और फंडिंग भी थोड़ा, हम एक एनजीओ है तो हमें लाइक वी डोंट हैव दैट फंडिंग, सो हमेशा लोगों से स्पॉन्सर मिलना,
1: फंड रेजिंग
0: करते हैं. सो ये एक डिफिकल्ट पार्ट है, पर भी लोगों ने हमें बहुत मदद भी किया है.
1: अब जाते जाते आप कौन सा संदेश देना चाहेंगे जितने सारे जो दर्शकगण, जितने सारे लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, आप कौन सा मैसेज, कौन सा संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही कहूँगी कि अपने ड्रीम्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए क्योंकि इट इज़ नेवर टू लेट. तो आगे बढ़ना चाहिए और जो भी टैलेंट है दिखाइए, क्योंकि सब लोग के एक यूनिकनेस है और एक यूनिकनेस को हमेशा हमेशा सोसाइटी में बांटना चाहिए. तो यही संदेश है कि आगे बढ़ो और कुछ करो.
1: जी हाँ, बिल्कुल, आगे बढ़ो और कुछ करो. जब आप करेंगे नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप में वो बात है? जिस तरह से कबीरदास ने कहा था कि करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान. सिल यानी कि जो पत्थर है, जितना आप लगर लगर के काम करेंगे तब जाकर के उसमें एक निशान आएगा. उसी प्रकार से आप लोगों को अभ्यास करते जाना चाहिए, करत करत अभ्यास, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन ग्रूमिंग योरसेल्फ, तब जाकर के आप दूसरों के दिल में अपना छाप डाल पाएंगे. इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मिस्टर शाहन कि आज आप आए और वुमन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण से जुड़ी बहुत सारी बातें आपने की. शक्ति अपॉर्चुनिटी यानी कि संभावना, चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस, और थ्रेट्स यानी कि डेंजर या फिर खतरे, इसके बारे में आपने बात की. और मॉरिशस से निकल करके आप समंदर पार करके गोवा में जा करके सेकंड रनर अप आप पहुंच गए हैं ज्वेल ऑफ इंडिया नारी फर्स्ट. इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा. और मैं यही आशा करता हूँ और MBC की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देना चाहेंगे कि भावी परियोजनाएं भी जब आप जाएंगे करने के लिए तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और आज आपने बताया कि किस प्रकार से एक नारी सिंगल मदर होकर के भी बहुत कुछ कर सकती है, इसके लिए हम आपको शत शत धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकगण, इसी के साथ आज की चर्चा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी उदय की बगल से सब कोई के नमस्ते।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने के लिए सरकार डोमेस्टिक अब्यूज बिल लेकर आ रही है। ये एक नया कानून मौजूदा प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जगह लेगा और घरेलू हिंसा के बदलते स्वरूपों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके तहत शारीरिक हिंसा के साथ साथ आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा। पीड़ितों और उनके बच्चों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने, दोषियों को जवाबदेह बनाने तथा घरेलू हिंसा की घटनाओं को कम करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार पुनर्वास कार्यक्रमों और अदालत के आदेशों के उल्लंघन पर कड़े प्रावधान भी लागू करेगी। वहीं महिला हत्या और वैवाहिक बलात्कार को अलग अपराध के रूप में शामिल करने के लिए भी कानूनी संशोधनों पर काम जारी है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरणों के उपयोग को लेकर बनी विवाद की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार कानून पर फिर से गौर करेगी। कैबिनेट ने कल फैसला लिया कि रोड ट्रैफिक एक्ट और उससे जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन लाए जाएं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हैंड्स फ्री डिवाइस और गाड़ी में लगे इनबिल्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स का उपयोग ड्राइविंग के दौरान किया जा सकता है। सरकार ने निजी प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए ग्रांट इन एड स्कीम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च कम करना, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, कर्मचारियों की नौकरियों को सुरक्षित रखना और निशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा को जारी रखना है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान जारी रहेगा। छोटे स्कूलों में शिक्षक और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां एक ही व्यक्ति को सौंपी जा सकती है। कुछ वित्तीय सहायता और परिचालन खर्चों में कटौती की जाएगी जबकि जवाबदेही और निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा। वाकवा क्यूपी पर सैंपिया के निवासियों के लिए पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव लाया जा रहा है। CWA ने घोषणा की है कि इन तीन इलाकों में पानी वितरण के नए समय 17 जून को लागू होंगे। कैबिनेट ने नियुक्त किया कि मॉरिशस में वर्तमान में 8,975 बांग्लादेशी कामगार काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत से 15,840, नेपाल से 14,821 और मादागास्कर से 9,999 कामगार देश में काम कर रहे हैं। अवैध भर्ती की समस्या से निपटने के लिए सरकार भर्ती पर फिर से गौर कर रही है। कैबिनेट ने यह भी नोट किया कि लापता विदेशी श्रमिकों का पता लगाने के लिए पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ऑफिस अपनी कार्रवाई तेज करेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेजबान टीमों का दमदार प्रदर्शन जारी है। कल टोरंटो में खेले गए ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया के बीच मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। वहीं आज ग्रुप सी के मुकाबले में अमेरिका ने पाराग्वे को 4-1 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। घरेलू दर्शकों के सामने अमेरिकी टीम ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।

निदा की आयत नंबर 94। सूरतुल माईदा का रुकू नंबर 13, सातवें पारे का तीसरा रुकू। या अय्युहल्लज़ीन आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइम मिनस्सैद तनालुहु अय्दीकुम व रिमाहुकुम। ईमान वालों, जरूर अल्लाह तुम्हें आजमाएगा ऐसे बाज शिकार से जिस तक तुम्हारे हाथ और नेजे पहुंचे। जैसा कि आप इस वाक्य को जानते हैं कि सन 6 हिजरी ज़िलक़ादा के महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ से 1400 सहाबा इकराम को लेकर उमरे के लिए आप तशरीफ लाए, मक्के शरीफ की तरफ रवाना हुए। लेकिन जब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो काफिरों ने रोक दिया और उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि आप उमरा अदा करने नहीं आए बल्कि जंग करने आए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया और इसी मकसद के लिए हजरत उस्मान गनी को भेजा गया और वो मक्के शरीफ गए और उन्होंने इन लोगों को समझाया कि ज़िलक़ादा का महीना है, ये हुरमत वाला महीना है, इसमें मुसलमान जंग नहीं करते। फिर मुसलमान हालत एहराम में है, हालत एहराम में जंग नहीं की जाती। और तीसरी बात यह कि मक्का शरीफ और इसके इर्द गिर्द का जो इलाका है ये हुदूद हरम है, तो हुदूद हरम में भी जंग करना हम गलत समझते हैं। लेकिन वो इसके लिए राजी न हुए। काफी दिन तक मुसलमान हुदैबिया के मकाम पर रहे और इसके बाद फिर इन्हें वापस जाना पड़ा और अगले साल उन्होंने इस उम्रे की कजा की। जब इंसान सफर में होता है तो आम तौर पर होता यही है कि सफर में आदमी खाने पीने का सामान इतना रखता है जितनी जरूरत होती है, और ख्याल ये होता है कि इतने दिन में हम जब उस शहर में पहुंच जाएंगे तो वहां तो खाने पीने के सामान मुहैया हो जाएंगे। तो मुसलमान एक मखसूस सामान सफर लेकर चले, लेकिन बीच में रोक दिया गया और एक ऐसे इलाके में रोका गया कि जहां पर वीराना था, खाने पीने का इंतजाम नहीं था। उस वक्त उन्हें भूख भी शिद्दत की थी और खाने के लिए कुछ था भी नहीं। इस हालत में इन्हें इम्तिहान में डाला गया। शिकार, वो जानवर जिनका शिकार किया जाता है और वो परिंदे जिनका शिकार करके खाना हलाल है, वो बकसरत आ गए और इनकी सवारियों पर छा गए। हाथ से पकड़ना, हथियार से शिकार कर लेना बिल्कुल आसान था, लेकिन चूंकि हालत एहराम में थे, हालत एहराम में शिकार हराम था, इन्हें जरूरत भी थी। तो अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान इन पर डाला और सहाबा इस इम्तिहान में पूरे उतरे। अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई और इस आजमाइश में मुसलमान अल्लाह के फजल से कामयाब हुए और हुक्म इलाही की तामील में वो साबित कदम रहे। ये एक बात याद रखिएगा कि एक तो हालत एहराम में शिकार करना हराम, दूसरी ये कि हुदैबिया का जो मकाम है उसका एक हिस्सा हुदूद हरम में है और एक हिस्सा हुदूद हरम से बाहर है। तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान जिस मकाम पर मौजूद थे तो वो मकाम हुदूद हरम से बाहर था, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि अब सब अपने एहराम खोल दें, हम आइंदा साल उमरा अदा करेंगे, तो उस मौके पर ये हुक्म था कि एहराम खोलने से पहले कुर्बानियां हुदूद हरम में पहुंचे और कुर्बानियों को ज़िबा किया जाए हुदूद हरम में, फिर एहराम खोला जाए। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तो हुदूद हरम से बाहर थे, तो कुर्बानियां हुदूद हरम में भेजी गईं। हुदैबिया का एक मकाम हुदूद हरम के अंदर है, वहां कुर्बानियां भेजी गईं और वहां कुर्बानियां की गईं। इसके बाद सहाबा कराम ने अपने एहराम खोले। और ये भी मसला याद रखें कि जो

कुर्बानी के जानवर होते हैं जैसे ऊंट है, बकरी है, गाय है, इनको हुदूद हरम में ज़िबा करना भी जायज़ है और हालत हराम में भी ज़िबा करना जायज़ है। हाँ, शिकार करना ये हुदूद हरम में भी मना है और हालत हराम में भी मना है। यह आयत करीमा नाज़िल हुई, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशय्यिन मिनस्सैदि, जरूर अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कुछ शिकार से, तनालुहु अईदीकुम व रिमाहुकुम, जिस तक तुम्हारे हाथ और नेजे पहुंचेंगे, व रिमाहुकुम तुम्हारे नेजे, हाथ से पकड़ना भी आसान होगा, नेजों से शिकार करना भी आसान होगा, तो तुम्हारा इम्तिहान होगा। और ये आयत करीमा नाजिल हो गई इस वाक्य से पहले, और जहनी तौर पर सहाबा इस इम्तिहान के लिए तैयार हो गए, और जब ये इम्तिहान हुआ तो वो इसमें कामयाब हुए। लियअलमल्लाहु मन यखाफू बिलगैब, कि अल्लाह पहचान करा दे उनकी जो उससे बिल गैब डरते हैं, यानी बगैर देखे हुए वो डरते हैं, अजाब अभी उन्होंने देखा नहीं है लेकिन फिर भी उस अजाब से डरते हैं। फमन इअतदा बादा ज़ालिका, फिर इसके बाद जो हद से बढ़े और आजमाइश में मुबतला होकर नाफरमानी करेगा, फलहू अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक सजा है। तो सहाबाए कराम साबित कदम रहे और अल्लाह ताला ने उन्हें फजीलतें अता फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तक्तुलुस्सैद वअन्तुम हुरुम, जब तुम हालत एहराम में हो तो शिकार न करो। जो हालत एहराम में हो उस पर खुशकी का शिकार करना ये हराम है। जानवर की तरफ शिकार करने के लिए इशारा करना या किसी तरह बताना भी शिकार में दाखिल है और ये भी ममनू है। हालत एहराम में हर वहशी जानवर का शिकार ममनू है, चाहे वो वहशी जानवर हलाल हो या ना हो, लेकिन मांस जानवर इससे मुस्तस्ना है। हालत एहराम में काटने वाला कुत्ता, कौवा, बिच्छू, चील, इसी तरह चूहा, भेड़िया और सांप, इन जानवरों को मारने की इजाजत है। हदीस पाक में इन जानवरों को फवासिक कहा गया। काटने वाला कुत्ता, कौवा, बिच्छू, चील, चूहा, भेड़िया और सांप, इसी तरह हालत आराम में मच्छर, पिस्सू, चींटी, मक्खी और जमीन के कीड़े मकोड़े और जो दरिंदे हमला करने वाले हैं, इनको मारना जायज है। हाँ, हालत एहराम में जूं को मारने की इजाजत नहीं है। वमन कतलहू मिनकुम मुतअम्मिदन, और तुम में से जो इसे जानबूझकर कत्ल करे। हालत एहराम में जिन जानवरों का मारना मना है वो हर हाल में मना है, जानबूझकर मारना भी मना है और खतान मारना भी मना है। इस आयत करीमा में कस्तन मारने का हुक्म बयान हुआ और अहादीस तैयबा में खतान मारने का हुक्म बयान किया गया। वमन कतलहू मिनकुम मुतअम्मिदन, तो तुम में से जो कोई शिकार जानबूझकर करे, फजज़ाउ मिस्लु मा कतल मिनन नअम, तो इसका बदला यह है कि वैसा ही जानवर मवेशी से दे। यहकुमु बिही ज़वा अदल मिनकुम, तुम में से दो आदिल शख्स इसका फैसला करें। हदियम बालिगल काबती, ये कुर्बानी हो काबे को पहुंचने वाली। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने हिरन का शिकार कर लिया, तो अब हिरन की कीमत का अंदाजा लगाया जाए। उसकी कीमत का अंदाजा दो आदिल शख्स लगाएंगे कि हिरन के शिकार पर जो कीमत बनी और उस कीमत से ऊंट खरीदा जा सकता है, तो एक ऊंट ले लिया जाए और वो ऊंट हुदूद हरम में नहर किया जाए। वैसा ही जानवर देने से मुराद

बात यह है कि कीमत में मारे हुए जानवर के बराबर हो। ये हजरत इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहिमा का कौल है। कीमत का अंदाजा दो अफराद वो करेंगे जो आदिल शख्स हों, वहां की कीमत के हाल को वो जानते हों, जहां पर शिकार मारा गया या उसके करीब उसकी कीमत का वो अंदाजा जानते हों कि उसके करीब आबादी में इसकी ये कीमत है। कफारे के जानवर का हरम शरीफ के बाहर ज़िबा करना दुरुस्त नहीं। हरम से मुराद है हुदूद हरम। हाँ, मस्जिद हराम शरीफ में खाने काबा के अंदर तो ज़िबा नहीं होगा, मगर ये कि मस्जिद हराम शरीफ से बाहर मक्के शरीफ में और मक्के शरीफ के इर्द गिर्द जहां तक हुदूद हरम है उसके अंदर ये कफारे के जानवर का ज़िबा होना ये जरूरी है। अब देखिये यहाँ पर फरमाया गया बालिगल काबती, काबे को पहुंचने वाली हो कुर्बानी, ये नहीं फरमाया काबे के अंदर नहीं फरमाया। तो इससे ये पता चला कि खाने काबा के अंदर या मस्जिद हराम शरीफ के अंदर जानवर ज़िबा करना मना है, या मुराद है हुदूद हरम में। आगे फरमाया औ कफारतुन तआमु मसाकीन, ये कफारा दे चंद मिस्कीनों का खाना। इससे मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे हिरन शिकार की और उसका अंदाजा लगाया गया तो पता चला भाई उसकी कीमत 30,000 रुपए है, तो अब 30,000 रुपए का वो जानवर ले ले जिसकी कुर्बानी हो सकती है और हरम शरीफ की हुदूद में उसकी कुर्बानी कर दे, उसे ज़िबा कर दे, तो कफारा अदा हो जाएगा। दूसरी सूरत यह भी हो सकती है कि जो रकम का अंदाजा लगाया गया उस रकम से गल्ला खरीद ले, अनाज खरीद ले और मसाकीन में इस तरह तकसीम करे कि हर मिस्कीन को सदकाए फितर के बराबर बराबर दे दे। और ये भी हो सकता है कि जितने मिस्कीनों के हिस्से बनते हों उतने वो रोजे रख ले, जैसा कि आगे फरमाया औ अदलु ज़ालिका सियामन, या इसके बराबर रोजे रखे। अब हम इस मसले को थोड़ा आसान करके समझने की कोशिश करते हैं। मसलन किसी शख्स ने खरगोश का शिकार किया, दो आदिल शख्स ने फैसला किया कि इसकी कीमत 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए का गल्ला खरीद कर गरीबों में इस तरह तकसीम करे कि हर एक के हाथ में सदकाए फितर की रकम आ जाए। मसलन 100 रुपए है सदकाए फितर की कीमत, तो 100 रुपए के से हिसाब अगर लगाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 रुपए में ये 10 हो गए और 5,000 में 50 हो गए। तो अब ये 100 रुपए जब तकसीम करेंगे तो 50 गरीबों के हाथ में आएंगे। तो अब हमारे पास तीन सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि 5,000 रुपए का अंदाजा लगाया गया, अगर 5,000 रुपए में कोई कुर्बानी वाला जानवर आता है तो हुदूद हरम में उसे ज़िबा कर दे। दूसरी सूरत यह है कि 5,000 रुपए को गरीबों में इस तरह तकसीम करे कि हर एक के हाथ में सदकाए फितर की रकम मिल जाए। और तीसरी सूरत यह है कि सदकाए फितर के हिसाब से देखें तो 5,000 में 50 हिस्से बनते हैं, 50 मिस्कीनों में हम इसको तकसीम कर सकते हैं, तो वो 5,000 रुपए देने के बजाय 50 रोजे रख ले। ये तीनों सूरतें हैं। लियदूक वबाल अमरिही, कि अपने काम का वबाल चखे, कि जब उसने शिकार किया तो अब उस पर ये चीज लाजिम की गई ताकि वो अपने इस काम का वबाल चखे। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, अल्लाह ने माफ किया जो हो गुजरा, यानी इस हुक्म से पहले जो शिकार किए वो माफ हैं। वमन आद फयंतकिमुल्लाहु मिन, और जो अब करेगा अल्लाह उससे बदला लेगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम, और अल्लाह गालिब है बदला लेने वाला। हमारे यहाँ पर इतना तो लिहाज रखा जाता है कि हुदूद हरम में शिकार नहीं किया जाता, लेकिन बाज लोग हुदूद हरम में जानवरों को तंग करते हैं, जैसे कबूतर का

हमला है, तो वो कबूतरों को उड़ाते हैं और इससे वो मजे लेते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, मूवियां बनाते हैं, सेल्फियां बनाते हैं। शरी मसला ये है कि हरम शरीफ के जो जानवर हैं, मसलन हरम शरीफ का कबूतर है, वो किसी जगह बैठा है, तो आप उसे उड़ाकर उस जगह पे नहीं बैठ सकते, उसका एहतराम करना है। फुकहा ने लिखा कि अगर हरम शरीफ के हुदूद में कोई जंगल है, उस जंगल में हिरन है और हिरन जो है किसी दरख्त के साए में बैठा है, तो शिकार करना तो मना है, उस हिरन को वहां से उठा भी नहीं सकते। तो इसलिए जब अल्लाह ताला ये सआदत नसीब फरमाए मक्के शरीफ मदीने शरीफ पहुंचे, तो वैसे भी मक्के शरीफ मदीने शरीफ का अदब है और मक्के शरीफ तो ये तो हुदूद हरम है, इसके तो मसाइल बड़े सख्त हैं। एहतियात का तकाजा ये है कि मक्के शरीफ हो या मदीने शरीफ, वहां के कबूतर और इस तरह के जो जानवर हैं इन्हें तंग न किया जाए। हाँ ये जरूर है कि चलते चलते बस औकात हमें निकलना जरूरी होता है और जगह जगह कबूतर बैठे हुए होते हैं, तो हम गुजर रहे होते हैं, उस वजह से वो उड़ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी वजह से हरम शरीफ के जानवरों को तकलीफ न पहुंचे। उहिल्ला लकुम सईदुल बहरी व तआमुहु मताअल लकुम वलिस्सय्यारा, हलाल है तुम्हारे लिए दरिया का शिकार और उसका खाना तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे के लिए है। وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, और तुम पर हराम है खुश्की का शिकार जब तक तुम एहराम में हो। इस आयत में ये मसला बयान फरमाया गया कि जो शख्स हालत एहराम में हो, दरिया का शिकार उसके लिए हलाल है, यानी दरिया की मछली का शिकार हालत एहराम में भी कर सकता है, हुदूद हरम में अगर दरिया है तो वहां से भी मछली का शिकार किया जा सकता है। हाँ खुश्की का शिकार ये हराम है। दरिया का जानवर और खुश्की का जानवर, इसकी पहचान क्या है? तो फरमाया गया कि दरिया का जानवर वो है जिसकी पैदाइश दरिया में हो और खुश्की का जानवर वो है जिसकी पैदाइश खुश्की में हो। आगे शायद फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम्हें उठना है। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास, अल्लाह ने अदब वाले घर काबे को लोगों के क़याम का बाइस किया कि वहां पर दीनी और दुनियावी उमूर का क़याम होता है। डरने वाले वहां पनाह लेते हैं क्योंकि वहां अमन है, कमजोरों को वहां अमन मिलता है, तिजारत करने वाले नफा पाते हैं, हज और उमरा करने वाले वहां हाजिर होकर हज और उमरा अदा करते हैं। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। वशहरुल हराम, और हुरमत वाला महीना यानी माह ज़िलहिज्जा जिसमें हज किया जाता है। वल हदिया वल कलाइद, और हरम की कुर्बानी, और वो जानवर जिनके गले में अलामतें लटकी हुई होती हैं, इन सब को तुम्हारे फायदे के क़याम का सबब बनाया, यानी खाने काबा और ज़िलहिज्जा का महीना, फिर कुर्बानी के जानवर, ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे फायदे के क़याम का इसे सबब करार दिया। ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض, ये इसलिए कि तुम यकीन करो कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। وان الله بكل شيء عليم, और ये कि अल्लाह सब कुछ जानता है। اعلموا ان الله شديد العقاب, खूब जान लो कि अल्लाह का अजाब सख्त है। وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। एक ही आयत में दोनों चीजें बयान की गई, अल्लाह के अजाब का खौफ भी होना चाहिए

0: रहमत की उम्मीद भी हो। मा अला रसूल इल्ला बलाग, रसूल पर नहीं मगर हुक्म पहुंचा देना। जब रसूल ने हुक्म पहुंचा दिया तो तुम पर हुज्जत कायम हो गई, तुम पर फरमाबरदारी लाजिम है, अब उजर पेश करने की कोई जगह बाकी नहीं। मा अला रसूल इल्ला बलाग, रसूल पर तो सिर्फ हुक्म पहुंचाना है। वल्लाहु यालम मा तुबदून व मा तक्तुमून, और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। इसको तुम्हारे जाहिर बातिन सबका इल्म है, तुम्हारे दिल में निफाक है, इखलास है, सब वो जानता है। قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, आप फरमा दीजिए कि गंदा और सुथरा बराबर नहीं, अगरचे तुझे गंदे की कसरत अच्छी लगे। यानी हलाल और हराम, नेक और बद, मुसलमान काफिर, खरा खोटा, ये एक दर्जे के नहीं है, ये बराबर नहीं है। और यहां फरमाया गया वलौ अअजबा का कसरतुल खबीस, अगर नापाक लोगों की कसरत तुझे ताज्जुब में डाले तो भी इस बात को समझ ले कि सारी दुनिया में अगर नापाकों की कसरत हो और एक शख्स पाक हो तो वो एक पाक शख्स सब पर गालिब है, ये सारे नापाक मिलकर भी उसके बराबर नहीं हो सकते। आज बड़ी अजीब सोच है, लोग माशरे को देखते हैं और ये देखते हैं कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, बदअकीदगी बढ़ने लगी, खबासत बढ़ने लगी, तो लोग उसी की तरफ चलने लगे। हालांकि उन्हें यह रास्ता अपनाना चाहिए कि पाक लोगों का रास्ता क्या है, मैं उस रास्ते पर चलूं। फत्तकुल्लाह, तो तुम अल्लाह से डरो। या उलिल अलबाब, ए अकलमंदो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरतुल माईदा का 13वां रुकू मुकम्मल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रुकू के नूर से हमारे कुलूब को रोशन और मुनव्वर फरमाए। इस रुकू में खाने काबा का जिक्र है, इस रुकू में हज की कुर्बानियों का जिक्र है। अल्लाह तबारक व ताला हमें हर साल हज मकबूल मबरूर नसीब फरमाए, बार बार उम्रा मकबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर साल रमजानुल मुबारक में उम्रा मकबूल अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे जाहिर बातिन को रोशन फरमाए।
1: सामीन, अभी आप हज़रत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर आसिफ कादरी दामत बरकतुहुम अलैह की ज़बानी सूरह अल मैदा के 13वें रुकू की तफसीर समाप्त कर रहे थे। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सामीन, जैसे कि आगाज़ महफिल में हमने आपको बताया कि आज का ये प्रोग्राम ख़ास उन हुज्जाज कराम के नाम है जो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में हज ज़ियारत की सआदत हासिल करके मॉरिशस वापस आए हैं। हज के अरकान पूरा करने के बाद हुज्जाज कराम जब आखिरी मर्तबा काबा शरीफ जो मरकज ईमान है को अलविदा कहने के लिए तवाफ को जाते हैं तो उस वक्त दिल पारा पारा होता है, आंखों से आंसू जारी होते हैं, क्योंकि पता नहीं कि फिर कब काबा शरीफ के दीदार का शर्फ हासिल हो, और नज़र काबा शरीफ से नहीं हटती, बस यही दुआ ज़ेर लब होती है।

काबा शरीफ का तवाफ वो वाहिद इबादत है जो सिर्फ़ और सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा में ही अदा की जा सकती है। खुश नसीब हैं वो जिनको अपने क़याम के दौरान भरपूर तवाफ करने का शर्फ हासिल हुआ और जिन्होंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा भी उठाया।

हुज्जाज कराम अरकान हज की अदाई के बाद मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते हैं और वहाँ पर रहमतों का ख़जाना झोली भर भर कर लूटते हैं। मदीना मुनव्वरा वो मुकद्दस शहर है जो अहले ईमान के दिलों की धड़कन और उनकी तमन्नाओं का मरकज़ है। यहाँ मस्जिद नबवी के आगोश में मुबारक अवकात लम्हात गुजार कर अब रुखसत हो रहे हैं। ये घड़ी, ये पल, ये जुदाई बहुत ही मुश्किल होती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिस्म का एक हिस्सा हमसे जुदा हो रहा है, हमसे अलग हो रहा है।

हुज्जाज कराम के नाम है जिन्हें हज बैतुल्लाह का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत अनस रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम जब सफ़र से वापस मदीना तशरीफ़ लाते, मदीने की दीवारों पर नज़र पड़ते ही सवारी को तेज़ फरमा देते थे। इससे बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की मदीने से मोहब्बत और उल्फत ज़ाहिर है। अहले ईमान 40 नमाज यहाँ कायम करके जब गुम्बद खजरा के सामने आखिरी सलाम के लिए हाजिर होते हैं तो आँखों से जारी आंसू दिल का हाल बयान करते हैं, और यकीनन ये वो दरबार है जहाँ खामोशी भी सदा रखती है।

मस्जिद नबवी की वो मीनार, वो सब्ज़ गुंबद, मस्जिद के अंदर रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करना, मेहराब नबवी शरीफ के सामने दस्ते दुआ दराज करना, हर एक अमल आँखों के सामने गर्दिश कर रहा है। मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन में नफल की अदायगी, जन्नतुल बकी कब्रस्तान की ज़ियारत, जबल थोर, जबल नूर, जबल उहद के नज़ारे, अलगरज वो तमाम मनाजिर आँखों के सामने हैं और दिल अफसरदा है। और बस यही शिकायत है कि हम मदीने से अल्लाह

सामिन हुज्जत कराम के नाम आज की ये महफिल रही। उम्मीद है कि आपने इसे ज़रूर पसंद फरमाया, और यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम हुज्जत कराम के हज को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, और हम सब को बार बार मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा का दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आइए सुनते हैं कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फिकॉन्फ्ला के रहने वालों को खासकर मोसेलमान सेंट जाक एवेन्यू सेंट पोल एवेन्यू पियर एवेन्यू सेंट जाक लेस अपार्टमेंट महिमा सनसेट हाइट्स स्टोन एंड स्कोन ए मोसेलमान आना एवेन्यू दे मॉसुएं अपार्टमेंट रामफोल के रहने वालों को सूचित करता है कि कल रविवार 14 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ सीबी पिचित्रिविया के रहने वालों को विशेषकर ननलोल लेन प्रिंसेस मार्गारेट ब्लैक रिवर रोड के रहने वालों को सूचित करता है कि कल रविवार 14 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ

0: रामा दिन बोग दंदामा इधर पेरेंट्स की परीक्षा इधर ब्रदर की शिक्षा
1: दिन की एंटीबायोटिक लेदा
0: दिन की नीरस उम्रादा
1: दिन तो मौत लाडनो
0: दिन तो आठ लाडनो
1: दो साइटान
0: इधो तूफान
2: इधो ना बंगार पापा।

सवा बज चुके हैं। हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्त? उम्मीद है कि आपका दिन जो है शानदार है, पॉजिटिव और फुल ऑफ गुड वाइब्स जा रहा होगा। मैं हूं देविना, आप सबों का साथ देने के लिए अगले कुछ घंटों तक, और साथ निभाऊंगी आपके फेवरेट प्रोग्राम में आपकी पसंद, सभी से लेकर 4 बजे तक हमारा और आपका सुनहरा साथ होगा। ऑफ कोर्स यहाँ बजेगा आपकी पसंद का संगीत, पहुँचेंगे आपके स्पेशल मैसेजेस और होंगे ढेर सारे संगीत का ब्यूटीफुल सा सफ़र जो आपके दिन को और भी ब्यूटीफुल बना देंगे। वैसे कहते हैं जिंदगी में खुश रहने का सबसे आसान तरीका, आपको पता है क्या है? छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आइए रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए और संगीत के इस सुनहरे पल को और खूबसूरत बनाएंगे एक साथ यहाँ पर रेडियो मॉरिशस पर। पहला गाना आप सबों के लिए, इससे पहले हम आपको बता देते हैं 4028085 पर हम आपके कॉल्स लेंगे, साथ ही आपके मैसेजेस के लिए 5251700552517005। तो ये पहला गाना आप सबों के लिए, और ढेर सारा प्यार भेजते हैं आप सबों के लिए। सो बस आपकी पसंद प्रोग्राम आपके नाम।

जी आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम, जहां हर गाने के पीछे छिपी होती है किसी की भावना, किसी का प्यार और किसी की याद। तो हमारा जो पहली मांग है आई है कहाँ से, जी हाँ, हमेशा की तरह पहले मैसेज भेज देती है विश्वानी जी, विश्वानी डुमन वाकुआ से है। और गीत की मांग की है, ये है संसार है एक नदिया, मुकेश साहब की आवाज़ में ये गाना जाएगा, बहन इंदिरा शारदा, साथ में सहेली नीला, प्रतिभा शोभा और गीता कचाधर के लिए। तो ये गाना आपके लिए।

जहाँ हम बहते धारे हैं, हमें तो जाना है, हर हाल में चले जाना है। वैसे कहते हैं जो सफलता है ना, इसका मतलब केवल आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। कीप स्माइलिंग, आप पॉजिटिव रहिए और जो ज़िंदगी है उसका सफ़र आप एंजॉय कीजिए। और आपकी पसंद प्रोग्राम है ना आपके साथ, तो देविना है आपके संग 4 बजे तक। और अगला गाना जो है रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म है गाइड, और इस गाने की मांग की है शोभा जी, प्यारी सी शोभा जी ऑफ पॉम्पी मिसेस। वो कह रही है कितनी गर्मी है, हालांकि सर्दी का मौसम है, एक्चुअली बहुत चारों ओर गर्मी ही गर्मी है कुछ कुछ। सुबह शोभा जी आप एंजॉय कीजिए अपना सोबे, और ये गाना खास दोस्त के लिए।

जा ये गाना एक्चुअली सुदेवी जी के लिए है फ्रॉम वाकुआ. गुड आफ्टरनून आपको भी दीदी जी. ये जो गाना है चोले की दीदी ललिता के लिए, कुशल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा देवी, ना मलंगा के, अनुषा के, रन्याश नानी, रज, सभी राम रतन रामरोलाम कुवारू रिडोय फैमिली. और ये गाना हमारे टीम के लिए भी, थैंक यू सो मच. जब जब फूल खिले.

फिल्म उलझन का गाना था आशा जी की आवाज़ में, और ये गाना खास तौर पर धनी जी की ओर से अपने जो निफ्यू जो नाती हैं यश और हिमिश के लिए था। अब दिल से प्यार भर नमस्कार गीता जी को, और वे पोंफे से हमेशा हमारा साथ देती रहती हैं पूरे परिवार के साथ, थैंक यू गीता जी। और वे सुनना चाहती हैं फिल्म वक्त का गाना आगे भी जाने न टू, फिर से आशा जी की आवाज़ में, पति रोहित के लिए, तीन बेटे दो बहुओं के लिए, प्यारे जो नाती हैं तीन नाती आदित्य आरव और तनिष। और वैसे हम बता दें कि आदित्य जो हैं 11 साल के होने वाले हैं 15 जून को, तो बस इन एडवांस आदित्य को कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, एंड आई एम श्योर कि वो बड़ा होकर अच्छा बच्चा बनेगा। सो सभी परिवार की ओर से उनको आशीर्वाद है आदित्य को, और ढेर सारा प्यार भेजते हैं, अच्छे बच्चे बनना, पढ़ाई में तेज़ होना, और अपने मामा पापा दादा दादी का जो नाम है रोशन करना, बस यही दुआएं हैं हमारी। और प्यारी सी परी जानवी के लिए ये गाना, तो गीता जी ये रहा आपके लिए।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पर ही सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मंत्री परिषद ने डोमेस्टिक अब्यूज बिल को राष्ट्रसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानून को निरस्त करना और उसकी जगह पर एक आधुनिक और अधिक व्यापक तथा घरेलू हिंसा के पीड़ितों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर कानूनी ढांचा लागू करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय रोकथाम को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पर पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रहा है। बुपलों में स्वास्थ्य अभियान के शुभारंभ के दौरान स्वास्थ्य पेशेवरों, अन्य अधिकारियों और आम जनता को एक ही उद्देश्य के तहत एकत्र किया गया। स्क्रीनिंग और रोकथाम के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मॉरिशस में रूस की राजदूत इरिदा ज़ेलानोवा ने अपने देश की मॉरिशस के साथ मजबूत सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। कलिबेन में आयोजित एक स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने ये बात कही। रूस के राष्ट्र दिवस के अवसर पर इस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शामिल रहे। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशन राउंड में कल कनाडा और बोस्निया के बीच ड्रॉ रहा 1-1। वहीं दूसरी ओर लॉस एंजलिस के स्टेडियम में यूएसए की टीम ने पैराग्वे को 4-1 से हराया। आज रात ग्रुप बी में कतर का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। रात 11 बजे ये मैच खेला जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। टैगोर थ्योली में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की मिसिस बीबी आयशा रोहिमन पैदाशी नाम उलिया और जो आयशा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा आज शाम 5:30 बजे उनके बेटे यासा रोहिमन के मकान टैगोर थ्योली से उठाकर दफनाने के लिए प्लेंडीपापाई का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

की ओर से एक सूचना है। सीबी के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि जरूरी मरम्मत कार्य के चलते कल जो है रविवार 14 जून 2026 को सवेरे के 8:30 बजे से लेकर दिन के 10 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन इलाकों में पिचित रिविया के नंदलो लेन, प्रिंसेस मॉगारेट और साथ में ब्लैक रिवर रोड के कुछ इलाकों में तो जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएगा तो बिजली की सप्लाई फिर से जारी की जाएगी। तो सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये था एक कम्युनिके सीबी की ओर से।

जी हाँ, यहाँ पर है 3:09। रेडियो मॉरिशस पर आप सबों का हम फिर से स्वागत करते हैं। देविना है आपके संग और हमारे दोस्त इतने खुश होते हैं जब हम आते हैं। थैंक यू सो मच दिल से, और हमें भी अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपके मैसेजेस पढ़कर। सो बस थैंक सो मच लवली मैसेजेस के लिए, लगातार मिल रहे हैं, फ़ोन भी लगातार आ रहे हैं, और आपका यह जो प्यार है ये हमारा सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन है। और अगर आप घर पर हो, ऑफिस में हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। और कहते हैं ना, शायद ये दिन अच्छा ना हो मगर जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस आप पॉजिटिव बने रहिए। और एक कहावत भी है कि कभी कभी हम इतने नादान हो जाते हैं ना कि लोग बुरा कर देते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं होता। बस ये अगले गाने में मुकेश साहब की आवाज़ में ये गाना जो है बहुतों को पसंद है और ख़ास तौर पर जाएगा फिल्म अनारी का गाना रेहाना जी के लिए। और वे कहती हैं कि आदाब सभी को, और माला फाउडर जी के लिए, सुरेखा जी के लिए, साथ में सैपिए की आयुब भाई और सैयदा भाभी के लिए। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनारी।

जहाँ रफ़ी साहब की आवाज़ में गायत्री जी के लिए ये गाना, उनकी बहन अमृता के लिए, नेहा क्षिति दिव्या के लिए, सुधीर कमलेश सुधा, साथ में है मीरा भाभी, गिरिशा मेधा और सभी परिवार के लिए गायत्री जी एंजॉय इट। और आप गर्मा गर्म पकौड़े पका रही हैं, साथ में चाय, सुबह हो जाए ये गाना एंड एंजॉय।

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: जी हाँ, हैप्पी वाला बर्थडे हम विश कर रहे हैं यहाँ पर रविंद्र कोसी जी को. बुआशरी के हैं, 60 इयर्स के हुए हैं, 60 साल. तो हैप्पी बर्थडे टू यू रविंद्र जी, और आपके पूरे परिवार की ओर से बेस्ट विशेज हैं. खास तौर पर बुआशरी की लीला जी ने आपके लिए सालगिरह वाला गाना मांगा है, और आपकी पत्नी की ओर से, बच्चों की ओर से, और लोचन परिवार, काशी परिवार, ये गाना आपके लिए. साथ में है प्यारी सी मोन गमलोगन जी का बर्थडे है, और उनकी जो सहेलियां हैं लीलो घोंपा से, गीता जी और मानती जी, वे घोंपा में नहीं है एक्चुअली, फिकॉन फ्लक में पिकनिक मना रही है, और साथ में मना रही है मोन जी का बर्थडे. सो उनकी पति हैं रवीन, बेटे बहू नाती की ओर से हैप्पी बर्थडे टू यू मोन जी, और जितने लोग अपना सालगिरह मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल, लव यू ऑल फ्रॉम आवर टीम.

दिन बजकर 31 मिनट हुए हैं, आप सुन रहे हैं आप ही के पसंद मन पसंद गानों का प्रोग्राम आपकी पसंद। और अब हो चुका है टाइम टू प्ले दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग हरीश बाबू जी के लिए। वो बस है किसी खास दोस्त के लिए, खास तौर पर अनु के लिए। फिल्म है दहलीज और साथ में ये गाना जाएगा आप सभी के लिए जो मस्ती भरे मूड में हैं।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। जहाँ ये गाना फ्रॉम द मूवी दोस्ती नूवेल फ्रांस के कूलन जी के लिए, सभी दोस्तों के लिए, सभी परिवार के लिए।

उषा जी ब्रह्मस्थान, आपने कहा नमस्ते जी, नमस्ते, हम भी आ गए। ओहो, वेलकम आपका। बस समय की कमी के कारण हमारा जो प्लेलिस्ट है फुल हो चुका है, सो ये गाना आपके नाम करते हैं। उषा जी, हबी है राज, बेटा आकाश और कुशल, बस एंजॉय इट।

घोंघू कृष्ण नीता जी, हाँ यहाँ पर आपके गाने चलाएंगे अभी के लिए। बस ये जो गाना है पोंफाने के जय बून जी की ओर से, एक दिन बिक जाएगा शोहर कसम के लिए, चार बेटी चार बहुओं, और फैजुल्ला, मिहार, हिदायत, जहरबी, असगर, नगमा, उर्फा सभी परिवार के लिए।

इस गाने में नाम जोड़ते हैं कट्टर बोन के अनुपमा जी. अनुपमा जी नमस्ते. और अफसोस कि हम ये गाना नहीं चला पाएंगे, आपने जो मांगा. बस इस गाने में नाम जोड़ते हैं और चाचा है जयचंद के लिए, साथ में चाची जयश्री, आप सभी के लिए ये गाना. और सुफ अनीता जी ऑफ कॉन्फ्लैक कब से फ़ोन कर रही हैं, आप जानती ही हैं कि यहाँ पर फ़ोन बिजी होता है और हम सबकी मांग पूरी करने की कोशिश करते हैं मगर हो नहीं पाता. बस अनीता जी ये आपके लिए, हमने आपको नहीं भूले. बहन शोभा, अनुराधा, लक्ष्मी और हमारी टीम के लिए थैंक यू.

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxist.

चलिए सुनीता जी, अब कॉन्गो पर ये गाना हम बाद में पेश करने वाले हैं, शिशा 420 वाला गाना बहन अमृता के लिए, विमाला और कोंगोमा से है, और साथ में दिलीप हैं कोंगोमा जी से, हाँ जी कोंगोमा से, और गुजरा हुआ ज़माना कविता कृष्णवी मनीषा आरव और सब लिसनर्स के लिए, हाँ संगीता है योगेश निशान, बस ये गाना लता जी की आवाज़ में है।

जहाँ वीकेंड का मजा हो और साथ में आपकी मनपसंद गीत, तो माहौल अपने आप खुशनुमा बन जाता है। वीकेंड का मजा लीजिए और हम मिलते हैं कल सुहाना सफर प्रोग्राम के दौरान 12 बजे, और देखते देखते हमारा जो आज का प्रोग्राम है ख़त्म होने वाला है। तो संगीत की यह खूबसूरत यात्रा जारी रखेंगे, बाद में 4 बजे साहित्य दर्पण प्रोग्राम लेकर आएंगी अलका जी, और इसके बाद और भी खूबसूरत प्रोग्राम्स होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, आपके प्यार विश्वास और साथ के लिए दिल से धन्यवाद। सो जैसे कह रहे थे, फिर मुलाकात होगी कल और नए उत्साह के साथ, नए दिन के साथ, और आपकी कुछ पसंद के गाने भी लेकर आएंगे और हमारे कुछ पसंद के गाने। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव और टेक केयर। Keep listening to MBC Radio Mauritius.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
2: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए, साहित्य दर्पण प्रस्तुति। शनिवार 13 जून, घड़ी मिला लीजिए सपेर के 4 बज चुके हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं, सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह, हर शनिवार की तरह साहित्य दर्पण इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आज किसी कारणवश अलका जी नहीं जुड़ पाई है, जल्द ही वो आपसे मिलने अवश्य आएगी। आज हम आपका साथ देंगे अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक। उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। ऐसे शनिवार का दिन खास होता है, हमेशा ही विशेष होता है, क्योंकि हम परिवार के साथ इस दिन को मनाते हैं, बिताते हैं। बहुत सारे कार्य होते हैं जिसे हम साथ मिलकर करते हैं और कुछ समय ऐसे हमें अपनों के साथ बिताने का भी अवसर मिलता है। चलिए आज तो हमने शुरुआत ही की है कि यहाँ पर फ़ोन बजना शुरू हो चुका है। हम काफ़ी देर से सोच ही रहे थे कि आज साहित्य दर्पण इस कार्यक्रम में किस विषय पर हम बात करेंगे, कौन सा ऐसा विषय हम है जो आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमने सोचा कि साहित्य की बात हो रही है तो अवश्य जितने भी हमारे श्रोता इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं साहित्य प्रेमी हैं, कहानी, किस्से, कविताएँ और लेखकों से आप लोगों का खास लगाव

0: होता है। और साहित्य की बात करें तो साहित्य इंसान की ज़िंदगी को समझने और महसूस करने का एक बहुत ही शक्तिशाली जो है एक माध्यम होता है। और साहित्य की ही बात करें तो ये हमें शब्दों के बारे में तो जानकारी देता ही है, शब्दों के पीछे भाव को भी समझने के लिए जो है हमारे लिए उपयोगी होता है। और जितने भी साहित्यकार हैं कहीं ना कहीं जिस समय भी वो रहे हैं, जिस समय भी उन्होंने लिखा है, तो उस समय का जो समाज का जो दृष्टिकोण रहा है उसे भी उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा साहित्यकार कौन है, कौन से ऐसे साहित्यकार की कौन सी रचना आपको अच्छी लगती है, किसकी लिखी हुई कौन सी रचना ने आपको जीवन में प्रेरित किया है या जीवन में आपके कुछ बदलाव आया है, तो क्या ऐसा आपने पढ़ा, क्या उस साहित्यकार ने लिखा जिसके ज़रिए आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आए हैं। तो चलिए यहाँ पर फ़ोन कॉल आने शुरू हो चुके हैं। 4028085 है नंबर हमारा, आपसे जानना चाहेंगे आपके फेवरेट साहित्यकार कौन है। चलिए हमारे पहले श्रोता से हम मिलते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार।
1: नमस्ते बेटी।
0: नमस्ते नानी, कैसे हवा?
1: अच्छा है बेटी, कैसे हवा जा?
0: अच्छा है नानी, बताओ।
1: बेटी
0: सब ठीक बा ना?
1: जब जब तक है जीवन में तब तक भेंट होता है,
0: अच्छी बात है।
1: और अति है कुछ तो कंठस नहीं कही है, कुछ नहीं जाना था, सब भूल गई है।
0: कोई बात नहीं, जो आपके मन में है आप वही बोलिए।
1: बोल देला
0: है? हाँ हाँ बोलिए जरूर।
1: संसार के माली ने संसार बनाया है, संसार के माली ने संसार रचाया है, लख भूल के कन कन में समाया है, कन कन में समाया है, कहीं गहरा पानी है कहीं घर खा कहीं खा।

0: संसार के माली ने संसार रचाया है, संसार रचा करके कन कन में समाया है। कहीं मीठी पानी है, कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है, कहीं दूर किनारा है। संसार के माली ने संसार रचाया है, संसार रचा करके कन कन में समाया है। बेटी हम लंबा बार नहीं जाना था।
1: कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद नानी, आपके इन सुंदर पंक्तियों के लिए आप हमेशा भाग लेती हैं, धन्यवाद, ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहे, नमस्कार आपको। तो चलिए, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं साहित्यकारों के बारे में, खासकर आप बताएं कि आपके फेवरेट राइटर कौन हैं, कौन से राइटर की कौन सी लिखी हुई कहानी आपको पसंद है, कौन से लिखी हुई कविताएं आपको पसंद है, और 4028085 है नंबर हमारा। और बात करें हम साहित्य की, तो साहित्य जो है हमारे, साहित्य पढ़ने से कहते हैं हम दुनिया को अलग नज़रिए से देख पाते हैं, दुनिया की सच्चाई को एक अलग तरीके से देख पाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का देखने का दृष्टिकोण अलग होता है, उसकी परवरिश जिस तरह से हुई होती है, जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं जीवन को देखने का नज़रिया इस पर भी बहुत जो है गहरा प्रभाव डालता है। तो जब भी हम किसी साहित्यकार की लिखी हुई रचना को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसके जीवन की सच्चाई को भी दर्शाता है। और कहीं ना कहीं लेखकों की बात करें तो इनका जो है बहुत ही बड़ा योगदान होता है, समाज में हो रही चीज़ों को ये सामने लाते हैं अपने लेखन के ज़रिए, समाज का एक आईना कहलाते हैं ये। तो आप बताइए कि किसने आपको प्रेरित किया है यहाँ पर। और साहित्य की बात करें तो साहित्य जो है हमारे सोच को विस्तार देता है ना,

0: कभी कभार ऐसा होता है कि हम जीवन के एक पहलू को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन जब हम अलग अलग लेखकों के लिखे हुए जो है कहानियों को पढ़ते हैं, उपन्यास को पढ़ते हैं, तो हमारा जो है सोच जो है विस्तार होता है, मतलब कि जो है सोचने का तरीका बदलता है, नए पहलू जो है हमारे जीवन में जुड़ते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ये हमें जो है हमेशा नएपन की ओर ले जाता है। ऑब्वियसली पुरानी चीज़ें हमारे जीवन में नींव का कार्य तो करते ही हैं, एक फाउंडेशन होता है ना हमारे जीवन का, जो कुछ हमने बचपन से सीखा होता है, समझा होता है, देखा होता है। ऐसे में जब हम जैसे बड़े होते जाते हैं, नई नई किताबों को पढ़ते हैं, उपन्यास को पढ़ते हैं, कहानीकारों के कहानियों को पढ़ते हैं, तो ये हमारे जीवन को जो है एक अलग ही दिशा देते हैं। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी ये बहुत ही सहायक होते हैं। खुशी हो, दुख हो, प्रेम हो, दर्द हो, सब कुछ साहित्य के जरिए सुंदरता से व्यक्त किया जाता है। कभी कभार हम किसी फिल्म को देखते हैं ना कि अगर किसी एक्टर को, एक्ट्रेस के लिए एक प्रेम पत्र लिखना है, तो कहीं ना कहीं वो किसी कहानी से, किसी कविता से प्रेरित होकर ही तो शब्दों को प्रेम में ढालते हैं, या प्रेम में, या तो फिर शब्दों में प्रेम ढालते हैं, ये कह सकते हैं ना, अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं गीतों के ज़रिए, गानों के ज़रिए, संगीत के ज़रिए। तो कहीं ना कहीं साहित्य जो है हमें हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में भी बहुत ही कारगर है। और संस्कृति और इतिहास का दर्पण तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। पुराने युग की कहानियाँ हो या कविताएँ हो, जो हमें पुरानी यादों से जोड़ती है, जो हमारी हमें पुरानी बातों से जोड़ती है, जो हमें अपने इतिहास से जोड़ती है, तो ये सारी बातें भी हम साहित्य के ज़रिए, साहित्य के द्वारा सीख सकते हैं। चलिए अभी के लिए एक सुंदर गीत के साथ प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं, और इस गीत के बाद कुछ फ़ोन कॉल्स हम शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए।
1: जी हाँ, साहित्य दर्पण इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए यहाँ पर आप लोगों के फ़ोन कॉल्स हम लेते हैं। आप बताएं आज हमें कि आपका पसंदीदा लेखक कौन है, आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन है और किस तरह से उन्होंने आपके जीवन को प्रेरित किया है। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार सुमित जी, एक बार मैं फिर राधा।
1: कैसी है राधा जी?
2: जी मैं अच्छी हूँ।
1: ऐसे लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारा फोन नहीं लगता है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है राजा जी, है ना?
2: हाँ,
1: अभी आपका दूसरी बार फोन लग गया।
2: हाँ, बहुत धन्यवाद।
1: अच्छा बताइए।
2: वैसे तो साहित्यकार अनेक हैं, सभी की रचनाएं बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रेरणादायक है पढ़ाई के जमाने में, लेकिन मैं कहूँ प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं वो मुझे बहुत अधिक प्रिय है।
1: ओके।
2: वैसे तो उनका नाम तो श्रीवास्तव धनपत राय था उनका असली नाम
1: जी,
2: लेकिन जब वो साहित्य की दुनिया में आए तो सब उन्हें मुंशी प्रेमचंद से जानते हैं
1: जी।
2: और उनकी सारी कहानियां जो है बहुत ही बना रहे, कफन ले लीजिए, बड़े घर की बेटी ले लीजिए, निर्मला ले लीजिए, माँ ले लीजिए, दो बैलों की कहानी ले लीजिए, बहुत लिस्ट तो बहुत लंबी है उनकी
1: जी।
2: लेकिन उनकी सारी कहानियां

0: में कुछ ना कुछ ऐसी विशेष होती थी जो किसे बोलते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है, और
1: जी
0: सचमुच में वो हमें समाज का दर्पण दिखाते हैं अपनी
1: जी
0: कहानियों के द्वारा।
1: जी
0: और बहुत अच्छी, बहुत उनका रचनाएं इतनी वास्तविक होती हैं, जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप उसमें खो जाते हैं, आप वहां वो जी रहे हैं,
1: जी
0: जो भी कहानी में जो है, जैसे कि आप वास्तविकता में उसको देख रहे हैं, वो आपके सामने घट रही है वो घटना।
1: जी
0: इसलिए मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियां को बहुत पसंद करती थी, और आज भी समय मिलता है तो कभी कभी उनको भी मैं पढ़ती
1: और
0: हूँ।
1: कहीं ना कहीं वो सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि उर्दू में भी
0: हाँ,
1: लिखा
0: उर्दू
1: करते
0: में भी
1: थे,
0: लिखते थे। हाँ,
1: उर्दू में
0: नवाब
1: भी
0: राय के
1: लिखा
0: नाम
1: करते
0: से।
1: थे
0: हाँ
1: जी।
0: जी
1: और जैसे कि आपने और सही कहा कि जो भी लेखक है, साहित्यकार है, समाज का आईना है, समाज में जो कुछ
0: जी
1: हो रहा है उसे दर्शाते
0: वही दिखाते
1: हैं।
0: हैं। हाँ, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो लेख हो, कुछ भी हो। जैसे हरिवंश राय बच्चन ही, जो मधुशाला की, उनकी जो मधुशाला रचना है,
1: जी जी
0: उन्होंने कितना सशक्त कविता लिखी है कि
1: जी
0: सच में जो भी होता है एक मधुशाला में, एक एक कैसे कहते हैं, जो आदमी नशा में रहता है कैसा, उन्होंने उसको वास्तविकता दी है समाज समाज को दिखाने के लिए।
1: जी
0: तो ये सारे साहित्यकार बहुत अच्छे हैं, सबकी रचनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक प्रिय साहित्यकार होता है।
1: जी तो चलिए,
0: हाँ,
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद राधा जी, आप
0: जी,
1: इतने प्रेम
0: आपको
1: से
0: भी
1: जुड़ी हमारे साथ।
0: जी, बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: शुभ
1: आपको,
0: संध्या।
1: शुभ
0: नमस्कार,
1: संध्या
0: शुभ
1: आपको
0: रात्रि।
1: भी।
0: हाँ
1: तो चलिए, यहाँ पर एक और श्रोता की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार दिनी
1: नमस्ते जी, इंदिरा जी, कैसी हैं आप?
2: जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक है इंदिरा जी, बताइए आप किस साहित्यकार के बारे में कहना चाहेंगी?
2: मेरी साहित्य बारे में तो जैसे आप लोगों का है वैसा ही मेरे भी हुआ, ठीक है ना?
1: जी
2: जैसे आप गाते हैं कुछ तो हम लोग उसमें भाग ले लेते हैं, हम क्योंकि उसको मेरी जिंदगी में डालने के लिए ऐसा है ना,
1: हाँ
2: तो वो भी थी, लेकिन मुझे ज्यादा ज्यादा पसंद था वो रामायण का पाठ
1: अच्छा,
2: जो गाते थे सभी
1: आपको
2: गुरु
1: धार्मिक
2: जी।
1: ग्रंथ पढ़ना वगैरह ज़्यादा अच्छा
2: धार्मिक
1: लगता है?
2: ग्रंथ
1: जी
2: बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि
1: जी
2: मैं उसको उसको लास्ट को कैसे पहली मैं उसको लास्ट पर लाती हूँ ना, इसलिए। और पढ़ना, पूजा करना तो कितनी कितनी सुंदर बात है ना,
1: जी
2: उससे
1: जी
2: जिंदगी ज्यादा जो आते हैं उस जिंदगी बढ़ते हैं और कुछ
1: जी
2: मिलते हैं। इस बारे में दशरथ के नाम से, और जो जो लाते हैं सभी सभी प्रोग्राम आते हैं, जब जो उसका पर्व आते हैं ना, तो सज्जा दर्पण से हम लोग पढ़ लेते हैं उसके साथ साथ,
1: बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, आपने भाग
2: पहुंचा
1: लिया,
2: देते हैं।
1: आपको
2: ठीक
1: भी
2: है
1: शुभ
2: भैया, ठीक
1: संध्या
2: है,
1: हम
2: शुभ
1: कहेंगे।
2: संध्या
1: नमस्कार
2: आपको, नमस्कार।
1: नमस्कार। चलिए, आज हम साहित्यकारों की बात कर रहे हैं साहित्य दर्पण इस कार्यक्रम में। ऐसे काफ़ी महान लेखक रहे हैं अपने अपने समय में, जिन्होंने अपने अपने लेखन द्वारा समाज का जो है आईना बनकर लोगों के सामने समाज की सच्चाई लाई है, समाज को बदलने का भी प्रयास किया है। कहते हैं ना कि एक कलम में बहुत ताकत होती है। चलिए, एक और श्रोता से हम मिलते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्ते।
3: हेलो, नमस्ते बहन जी,
1: नमस्ते भाई धनेश्वर जी, कैसे हैं आप?
3: बहुत धन्यवाद। मैं तो ठीक हूँ बहन जी।
1: चलिए, अच्छी बात है।
3: और तो विषय जो आपने रखा है तो मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ।
1: अवश्य।
3: तो जैसे कि मैं तो कवि की बातें सुनना पसंद करता हूँ,
1: जी
3: और उन लोगों की कविता,
1: जी
3: जैसे भारत में बहुत से कवि हैं महान महान, तो उन लोगों की बात मैं सुनाता हूँ। जो मुझे मिला है रोहित शर्मा
1: जी
3: महाकवि।
1: जी
3: एक फकीर गया राजा के दरबार में गाना गाने के लिए। फकीर ने बहुत अच्छा गाया, फकीर ने बहुत अच्छा गाया, तो राजा ने घोषणा किया इसे चांदी की माला दिया जाए। फकीर ने और अच्छा गाया तो राजा ने घोषणा किया इसे सोने की माला दिया जाए। फकीर ने और अच्छा गाया तो राजा ने घोषणा किया इसे एक महल दिया जाए। फकीर बहुत खुश हुआ, अपने परिवार को बतलाया।

0: राजा ने बहुत इनाम दिया। कुछ दिन बीत गया, फकीर को कुछ नहीं मिला। फकीर राजा के पास गया, राजा जी मुझे कुछ नहीं मिला आज। राजा ने कहा, अरे फकीर, आप लेन देन की बात क्या करता है? तू मेरे कानों को खुश किया करता और मैं तेरे कानों को खुश किया करता। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई धनेश्वर जी इन सुंदर पंक्तियों के लिए। कहीं ना कहीं ये सारी पंक्तियाँ जो है सुनने में हमें प्रेरित भी करती है, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है, और आप लोग भी जुड़ते हैं और कार्यक्रम में जो है इतना कुछ जोड़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का।
0: धन्यवाद।
1: शुभ संध्या। चलिए आज हम बात कर रहे हैं कौन से ऐसे लेखक हैं जो आपको पसंद है। ऐसे भाई धनेश्वर जी ने कवियों की बात की, ऐसे बहुत सारे महान कवि भी रहे हैं। महाकाव्य रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। थोड़ी देर पहले इंदिरा लौटन जी ने बात की इसके बारे में कि उन्हें धार्मिक ग्रंथ पसंद है। कबीरदास जी की बात करें तो भक्ति काल के महान संत कवि कबीरदास जी रहे हैं। उनके दोहे तो आज भी हम सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। जीवन को वे आज भी प्रेरित करते हैं, जीवन की सच्चाई, भक्ति के बारे में लोगों को बताना, समाज का आईना बनना। कहीं ना कहीं इनके जो दोहे हैं आज भी हमें जो है समाज का आईना दिखाते हैं। फिर गुलजार साहब को हम कैसे भूल सकते हैं, जो फिल्मों के लिए लिखा करते हैं। इनकी लिखी हुई रचनाएँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। शायरी के रूप में ये लिखते हैं, जहाँ पर प्रेम पर बात करते हैं, जहाँ पर ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर यादों के बारे में बात करते हैं। और काफ़ी इन लोगों की जो है प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जिन्हें आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, गुनगुनाना पसंद करते हैं। चलिए एक और गीत की ओर हम बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे और आपके कुछ और फ़ोन कॉल्स इस गीत के बाद फिर हम शामिल करेंगे।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: चलिए साहित्य दर्पण इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस पर। ये जो कार्यक्रम है चलता है हर शनिवार को सपेर के 4 से 5 बजे के बीच, और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि आप बताएं कि आपको कौन से लेखक पसंद है, आपको कौन से साहित्यकार पसंद है। चलिए हम हमारे अगले श्रोता की ओर बढ़ते हैं। हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
0: बसंती जी, कैसी है आप?
1: मैं ठीक हूँ
0: जी, धन्यवाद। बताइए क्या जोड़ना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: जी, आपने कहा जो महान लेखक ज्ञान,
0: आपका पसंदीदा कौन सा है?
1: मुझे तो सब पसंद लगता है। अच्छा। बहुत अच्छे लिखते हैं, और जो चला गया है उनको नाम मेरे दिमाग में है, इंद्रदीप भोलानाथ जी।
0: जी,
1: मुझको चाचा कहती थी। अच्छा। मुझे बहुत हेल्प किया था
0: जी।
1: उसमें क्या थे और क्या था, सीताराम यादव
0: जी।
1: और ऐसे तो बहुत हैं, हमारा सुंदर जी, उनके पुस्तकें मैं पढ़ी थी। और अन्य विदेशी के लोग हैं जो कमल किशोर गोयंका, सवालों की घटरी नौबत सिंह, राम परमोल कुमार, से विश्व भुआ एंड अभिमन्यु नाथ जी, और तो बहुत हैं। तो मैं आपको आज एक छोटा सा एक बच्चा की कविता सुनाने जा रही हूँ, कोरा कागज।
0: अच्छा
1: जी,
0: किसने लिखी है ये?
1: जी,
0: किसने लिखी है ये?
1: ओ नहीं है, नाम नहीं है।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, सुना दीजिए।
1: ये गुप्त है।
0: अच्छा।
1: फुटपाथ पर बैठा लड़का अचानक खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर मुस्कान थी,

भोलेपन की पहचान थी। उसने आगे हाथ बढ़ाया जिसमें था एक टुकड़ा सफेद कोरे कागज का। रास्ता सुनसान था, लड़का अनजान था। नजर मेरी जब उस पर

0: एकदम सफेद था, कोरा था। तभी आवाज आई अंदर से, टुकड़ा कोरे कागज का नहीं, यह प्रतीक है उस बालक के, कोरे निष्पाप निश्चल मन का। तो और है कुछ बोलने के लिए तो मैं समाप्त करती हूँ कि औरों को मौका दिए जाए।
1: बहुत धन्यवाद वसंती जी इन सुंदर पंक्तियों के लिए। नमस्कार आपको।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते सुमित जी।
1: नमस्ते श्यामा जी, कैसी है आप? आशा करती हूँ आप ठीक है।
2: हाँ, आप लोगों की दया से, भगवान की कृपा से।
1: धन्यवाद जी। बताइए आप क्या जोड़ना चाहेंगी, किन के बारे में बात करना चाहेंगी?
2: जी मैं मॉरिशन साहित्यकार के बारे में बात करूंगी।
1: जी बिल्कुल।
2: वे हैं इंद्रदेव भोला जी।
1: जी
2: तो मेरा ये कहना है, मरा नहीं वही कि जो जिया है औरों के लिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। तो जिस साहित्यकार के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ ना, वे हैं स्वर्गीय डॉक्टर इंद्रदेव भोला जी।
1: जी
2: हाँ, वो कहते हैं ना, साहित्यकार और कलाकार कभी मरते नहीं है।
1: जी।
2: एक अपने साहित्य के लिए तो दूसरे अपनी कला के लिए युगों युगों तक पाठकों एवं दर्शकों तथा श्रोताओं के हृदय में जिंदा रहते हैं।
1: जी
2: हाँ, यूँ तो बहुत से साहित्यकार आए और गए, उन सभी को मेरा सत सत नमन और श्रद्धा के फूल अर्पण है उनके चरणों में। हाँ, तो मैं ये कहूँगी कि हमारे देश के प्रमुख साहित्यकारों में से एक देवी प्रियमान साहित्यकार वे थे।
1: जी।
2: वे हिंदी लेखक संघ के संपादक थे। वे आदरणीय एवं परम पूज्य थे। वे आर्य समाज द्वारा निरीक्षक और शिक्षक भी नियुक्त हुए थे।
1: जी।
2: वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी घोषित हुए थे। हाँ, शिक्षक थे, लेखक थे, कवि कहानीकार सब थे वे। हिंदी भाषा की सेवा में उन्होंने अपना सारा जीवन निछावर कर दिया। वो जो काम वे करते उन्होंने किया है ना, हिंदी भाषा के लिए, जाति समाज के लिए, सहस्त्र कोई नहीं कर सकते हैं सुमी जी।
1: जी
2: हाँ, तो उन्होंने देश जाति और समाज का नाम रोशन किया। उनकी कहानी है अप्रवासी राम, अधोपतन, बारात न आई। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा पाठकों को झकझोरा है, जगाया है, प्रसुप्त आत्माओं को ललकारा है। उन्होंने अपनी कहानियों में भारतीयों की दयनीय दशा का वर्णन किया है, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सचमुच उनकी कहानियां एवं कविताएं रोचक है, समाज के लिए प्रेरणादायक है। अगर आज जो कुछ मैं हूँ, तो यूं तो मैं लिखती थी, लिख कर एक कोने में फेंक देती थी, लेकिन उन्होंने मुझे प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। एक वे हैं और एक है वीना रामफल। इन दोनों ने मुझे उसका या कि तुम कहानी लिख लिखकर क्यों एक तरफ फेंक देती हो, क्यों नहीं छपवाती हो, उन लोगों की कृपा से मैंने कुछ कहानियां छपवाई है, कविताएं भी छपवाई है।
1: जी।
2: तो इसके लिए बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो इतना समय निकाल कर हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, और आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर मिलता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी।
2: मैं तो तभी भाग ले रही नरगिस के बारे में जब आप बात कर रही थी।
1: हाँ, वहाँ पर। अच्छा।
2: तो मैं भाग लेना चाहती थी, लेकिन उस समय मेरे दिमाग से बहुत, मैं तो बहुत कुछ नोट करके रखती हूँ।
1: जी, जी जी।
2: लेकिन ऐन वक्त पर सब भूल जाती हूँ ना। अब तो हम जवान नहीं है ना, जहाँ पर आग जिस जहाँ पर हमारे कदम आ पड़े हैं ना,
1: जी, जी।
2: हम भूलने लग जाते हैं। तो बहुत कुछ इससे यादें बाकी है जिनसे हम जुड़े रहते हैं, बहुत कुछ ऐसे रह गए हैं। अब जब तक रहेंगे, जब तक तन में सांस है ना, तब जो कुछ हम जानते हैं तो हम आपको बताएंगे, और नहीं याद आएंगे तो कैसे बताएंगे ना।
1: चलिए बहुत, नहीं नहीं क्षमा की कोई बात नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत आभार। शुभ संध्या।
2: मैं तो फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन लाइन नहीं लग रही है ना।
1: हाँ, नहीं तो यहाँ पर देखिए ना, एक समय में कितने सारे फोन कॉल आते हैं, जब इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं।
2: आपका विषय बहुत रोचक है, इसलिए सभी को भाग ले रहे हैं। जो विषय आपने रखा है ना, तो सचमुच वो तो सराहनीय है।
1: बहुत धन्यवाद
2: हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए प्रेरणादायक है ना। मौका दिया सभी को ना आपने, धन्यवाद
1: धन्यवाद आपको भी, नमस्कार। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ेंगे और ऐसे सभी कार्यक्रमों के जरिए हमारे भी जो है बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर मिलता है, तो आप लोग समय निकाल कर कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। चलिए अगले श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार।
3: हेलो

0: नमस्ते सुमित जी। तो
1: नमस्ते जी।
0: मैं प्रेमचंद जी।
1: पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देवी जी है
0: नहीं
1: हाईलैंड
0: नहीं नहीं
1: से।
0: हाँ जी हाँ
1: हाँ
0: प्रेमचंद जी मुझे पता है, लेकिन भूल गई। जैसे प्रेमचंद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं,
1: जी
0: सुमित्रा पंत। हम कक्षा में पढ़ते थे हिंदी,
1: जी जी जी
0: हमें होमवर्क मिलता था, लेकिन अब तो मैं भूल गई।
1: चलिए कोई बात नहीं, कोशिश तो आप कर रही है ना।
0: तो हाँ, सुमित्रानंद पंत जी की एक एक लाइन में सुनाती
1: जी जी
0: हूँ।
1: अवश्य।
0: ये मैं नहीं भूली हूँ, हमेशा मुझे याद रहती है दिमाग में।
1: अच्छी बात
0: तो
1: है।
0: एक लाइन है, अबला नारी हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इतना ही याद है मुझे।
1: चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि बचपन में जब हम लिखते हैं पढ़ते हैं तब तक
0: हाँ
1: हमें याद रहता है, फिर अपने अपने जीवन में हम व्यस्त हो जाते हैं, फिर कभी कभार पढ़ने का अवसर मिलता है, समय नहीं मिलता है। इस बीच फिर
0: हाँ
1: भी आप लोग कोशिश करते हैं, इसके लिए धन्यवाद।
0: स्कूल के समय में हमें यही करने का समय मिलता था ना, केवल स्कूल की जिम्मेदारी हमारे सर पर थी ना।
1: नहीं तो
0: वही
1: अभी भी समय निकाल कर आप अवश्य कुछ ना कुछ कर ही सकती है।
0: हाँ।
1: बहुत धन्यवाद जी,
0: और
1: नमस्कार
0: एक
1: आपको।
0: है
1: हाँ
0: ओडिशन थे वे
1: जी
0: अभिमन्यु अनंत जी,
1: जी
0: उन्होंने लाल पसीना लिखा था, लेकिन
1: जी
0: मुझे याद नहीं है, केवल सब्जेक्ट है लाल
1: चलिए
0: पसीना।
1: कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद। मौका मिलेगा तो आप हम चाहें आप पढ़िएगा और अगली बार बताइएगा, आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, जानना
0: हाँ, मैं
1: चाहेंगे।
0: ढूंढना पड़ेगा वो पुस्तक।
1: अच्छा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, शुभ संध्या सुमित
1: शुभ
0: जी।
1: संध्या आपको भी। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते,
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: आपका स्वागत है जी। कौन बोल रहे हैं?
2: मैं मोहनलाल जगेसर जी बोल रहा हूँ।
1: कैसे हैं भाई जगेसर जी?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी है
1: बिल्कुल
2: ना?
1: ठीक है, धन्यवाद। बताएं आज
2: अच्छा,
1: के विषय पर क्या आप
2: जब
1: जोड़ना
2: आप
1: चाहेंगे?
2: साहित्यकार की बात कर रहे हैं
1: जी
2: इस मुद्दे पर, तो मुझे इस पर कुछ जोड़ना है।
1: जी अवश्य।
2: देखिए, समय और काल को देखते हुए इस प्रकार से लोग जब किसी के बारे में या किसी के जीवन से प्रभावित हो जाते हैं,
1: जी
2: तो लिख करके उस पर, मान लिया जाए, एक लेख बनाते हैं। वह गीत हो या कहानी हो या कविता हो, किसी प्रकार की।
1: जी
2: आपने मुझे मौका दिया कुछ कहने के लिए, सोचता हूँ इससे थोड़ा सा लाभ उठाकर मैं कुछ थोड़ा आपको बता दूँ तो बेहतर होगा।
1: जी
2: देखिए, 2015 में श्री मॉरीशस जी जब यहाँ पर आए थे मॉरीशस में,
1: जी
2: तो मैंने उनको साक्षात्कार देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसे बड़े व्यक्ति पर कुछ ना कुछ लिखा जाए। तो
1: जी
2: उस समय मैंने उस पर एक गीत लिखा था,
1: अच्छा
2: एक छोटा सा, हाँ छोटा सा टुकड़ा
1: जी
2: सुना देता हूँ
1: जी
2: उसकी
1: जी
2: तो बेहतर होगा। श्री मोदी आए रोशन हो गए मॉरीशस, उनके आने से साथ में अपने लाए वो खुशबू भारत भूमि की, श्री मोदी आए। मैंने सोचा ये लिख करके रख दूं, ताकि कैसे अभी हम किसी लेखक के लेख को पढ़ रहे हैं, कविता सुन रहे हैं आदि आदि, तो क्यों ना उस पर कुछ लिखा जाए, तो उनके बारे में लोगों को पता चलेगा
1: जी
2: आगे चल करके। फिर
1: जी
2: मैंने एक छोटी सी, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपके, फिर
1: ना ना
2: मैंने
1: कोई
2: बाद
1: बात
2: में
1: नहीं।
2: छोटा सा गीत लिखा उसी पर, किस
1: जी
2: प्रकार से, और वो कविता गीत के रूप में है, जो वह 2014 में मेरी पुस्तक काव्य प्रसून में प्रकाशित हुआ है, और
1: अच्छा
2: मॉरीशस में बहुत लोगों को मैंने बांटा है।
1: जी
2: तो उसका एक छोटा सा गीत इस प्रकार है, जो अभी हमने कुछ ही दिन पहले श्री मोदी जी को कहते सुना कि
1: जी
2: किस प्रकार से उनकी प्रसिद्धि आज बढ़ी है, तो वो इस प्रकार है। छोड़ कर कल की बातें, मिलकर साथ मोदी के, नए तौर से चले हैं लिखने फिर से नई कहानी, सब हिंदुस्तानी भारत की कहानी, सब हिंदुस्तानी भारत की कहानी।
1: बहुत
2: बस इतना ही,
1: धन्यवाद
2: क्योंकि
1: जगेश सर
2: काफी
1: जी।
2: समय मैंने ले लिया, गीत तो थोड़ा कुछ और है,
1: हाँ
2: लेकिन यही मैं सोचता कि ऐसे आज देखिए उस व्यक्ति के कितनी चर्चा हो रही है दुनिया भर में।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा
2: धन्यवाद
1: आपने,
2: आपने मुझे कुछ समय दिया
1: आपका भी
2: कहने के
1: बहुत
2: लिए।
1: बहुत
2: हम्म,
1: धन्यवाद, और आपको हम ढेर
2: धन्यवाद
1: सारी
2: आपको।
1: शुभकामनाएं देंगे। आप ऐसे ही लिखते रहे और सभी को प्रेरित करते रहे।
2: धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार। चलिए काफी सारे श्रोता जुड़ते जा रहे हैं, एक और फोन कॉल की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो नमस्ते।
0: हेलो, नमस्ते जी,
1: नमस्ते
0: सुमित
1: प्रभा जी, कैसी हैं
0: जी।
1: आप?

0: हूँ, अभी मैं तैयार हो रही हूँ मंदिर के जाने के लिए।
1: जी
0: तो किसी ने बोला मोदी के बारे में, तो मैंने कहा मैं भी जाती हूँ, लाइन लग
1: हाँ, नहीं ऐसे तो हम आज खासकर
0: यस
1: साहित्यकारों पर बात कर
0: लिख लो,
1: रहे हैं,
0: यस
1: जो
0: यस
1: लेखक है, तो ये
0: जी
1: जिन जगेसर जी एक
0: जी
1: लेखक है, तो उन्होंने जो लिखा था वो अपनी जो है वो सुना रहे थे। आप बताएं कि
0: जी
1: आपके पसंदीदा लेखक कौन है?
0: मेरे पसंदीदा लेखक है श्रीमती रामिया जी।
1: जी
0: वो मुझे बेटी की तरह मानते थे।
1: ओके
0: उसके लाल पत्थर और एक है, याद नहीं आ रहे हैं जल्दी जल्दी से, और भानुमती नागदान को भी हम लोग साथ में थे। यस और बहुत सी लेखक हैं, तो
1: जी
0: अभी मैं एक दो लाइन मोदी जी के लिए,
1: अच्छा, आप भी उन
0: जब मैं
1: पर
0: वो इंडिया में थी तो मैंने गाई थी ये गाना, उसने रिकॉर्ड किया हुआ, तो सिर्फ दो लाइन है।
1: अच्छा
0: अच्छा, जब

0: बहुत धन्यवाद प्रभा जी इन सुंदर पंक्तियों के लिए, शुभ संध्या आपको भी। तो चलिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद जितने हमारे श्रोता जो है जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे हमारे मॉरिशन भाई बहन जो है वो साहित्य के प्रति इनकी काफ़ी रुचि है और ख़ासकर अपनी भाषा को भी साहित्य जो है प्रमोट करने का कार्य करता है। हम जब अपनी भाषा में लिखते हैं, हम जब अपनी भाषा में कहानी कविताएं लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भाषा का भी विकास होता है। सिर्फ कहानियों ही जो है हमें आगे नहीं ले जाती है, ये भाषा भी हमें जो है हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता से जोड़ती है। चलिए अभी के लिए एक और गीत की ओर बढ़ते हैं, एकला चलो रे। अगर हम साहित्यकारों की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात होती है और उन्हें जो है नोबल पुरस्कार साहित्य के लिए मिला था, तो जो उन्होंने लिखा है इसे गाने के रूप में कहानी इस फिल्म में जो है हमें सुनने का और देखने का अवसर मिला था। तो कहानी फिल्म का ये गीत आप सबके नाम और ये जो गाना है इसे आप सुनेंगे अमिताभ बच्चन जी की आवाज में।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: जी हाँ, जैसे कि कहा ना, साहित्यकार जो होते हैं समाज को दर्शाने का प्रयास करते हैं, समाज का आईना होते हैं। ये गाना भी कुछ ऐसा ही था। जब आप पुकारे किसी को सहायता के लिए और कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आए, तो बस आगे अकेले चलते जाना है। हमें खुद का ही साथ देना होता है जीवन में, हर कोई साथ नहीं देता है। और जीवन में चाहे कैसे भी मुकाम क्यों ना आए, कैसे भी हालात क्यों ना आए, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए, उसके लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में इतने प्यार से आपने साथ दिया, साहित्यकारों के बारे में इतना कुछ आपने जोड़ा। चलिए कुछ और फ़ोन कॉल्स हम शामिल करते हैं। हेलो, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते जी, आपका स्वागत है। ये प्यारी सी आवाज़ किसकी है?
1: मैं मोगू से यहाँ पर निपुल बोल रही हूँ।
0: निपुल जी, कैसी है आप?
1: अच्छी हूँ, अच्छी हूँ जी,
0: बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद।
1: हाँ हाँ, ये तो चाहिए बेटी
0: जी। धन्यवाद चाची।
1: मैं जानती हूँ मैं क्या बोलूँगी। मेरे साहित्य इंद्रदेव भोला जी, मैं बचपन से उनके साथ पढ़ रही थी
0: जी।
1: जितने नाटक किया सब में मैंने भाग लिया
0: जी।
1: हाँ, बहुत अच्छा
0: जी।
1: ये एक नाटक किया था दिवाली के बारे में।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत समय की बात है, मेरी उम्र 15 साल की थी।
0: अच्छा।
1: शायद अभी तो चौसांजी स्वर्णकातोज हो गया है। हाँ, मैं याद कर रही हूँ उनको। उन्होंने हमको हिंदी सिखाया। हाँ, हर शनिवार को जाकर यज करते थे। हमारे हमारे गुरुजी जानते हो कहाँ ले गए? MBC के पिप में था।
0: हाँ।
1: तो हम लोगों को ले गया एक गाना गाने के लिए। वहाँ पर रामलगन एक बड़ा आदमी था, MBC में काम

0: करने वाले
1: जी,
0: हाँ रामलगन जी और फुलेना जी,
1: जी
0: हाँ ये सब वहाँ पर थे। तो हम लोगों ने एक ऐसा गीत गाया कि, और मुझको कहा एक पहेली भी बोलो, मैं अभी तक मुझको याद है।
1: अच्छा बताए तो कौन सी पहेली?
0: ये पहेली बुझना बहुत कठिन है।
1: अच्छा
0: देखो मैं बोलूँ।
1: जी
0: हाँ अच्छा, ऊपर से घूम घुमा घुमा घुमा घूम घुमा घूम घुमा घूम के ऊपर सौंसा सौंसा सौंसा के ऊपर खप खपा खप, कभी किसी ने नहीं बोला है।
1: अच्छा जवाब भी आप ही बता दीजिए।
0: हाँ जवाब है पगड़ी।
1: पगड़ी, अच्छा।
0: हाँ और एक प्रार्थना हम लोगों ने किया था
1: जी
0: कैफिक के एम्बेसी में,
1: जी
0: वो तुम्ही हो माता पिता,
1: पिता
0: ये
1: तुम ही
0: हमको
1: हो।
0: सिखाए थे।
1: जी
0: तो
1: चलिए,
0: हम लोग
1: बहुत
0: छोटे थे,
1: धन्यवाद, आप
0: बहुत
1: जुड़ी,
0: धन्यवाद,
1: आपने
0: मुझको
1: अपने
0: अपने
1: अनुभव को बांटा।
0: यादों को मैं ताजा कर लिया
1: जी
0: हमारे
1: जी
0: गुरु जी। हाँ एकदम, बहुत वो विवाह नहीं किया था तब। हाँ वो
1: चलिए
0: जवान थे।
1: धन्यवाद, आपसे
0: धन्यवाद
1: बात करके
0: प्रीति,
1: हमें भी बड़ी
0: धन्यवाद आपने
1: खुशी
0: मुझे
1: हुई।
0: मौका दिया।
1: जी नमस्कार, शुभ
0: धन्यवाद,
1: संध्या
0: नमस्कार,
1: आपको।
0: शुभ दिन आपको, शुभ संध्या आपको जी।
1: अच्छा जी, चलिए इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय खत्म होने को चला, लगभग 4:57 ऑलरेडी हो चुके हैं। फ़ोन कॉल्स तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, जहाँ पर हमारे बाद जो है आप खेल खिलाड़ी इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे यहाँ पर रोशन जी की प्रस्तुति में। और आज के लिए बस इतना ही, इस छोटे से कार्यक्रम को लेकर हमें भी आप लोगों से जुड़ने का अवसर मिला, साहित्यकारों के बारे में जानने का अवसर मिला, और बस ऐसे ही आपसे मिलना दोबारा होगा जब हम जुड़ेंगे रेडियो मॉरिशस पर, MBC रेडियो पर। तो ये सप्ताहांत आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते, ऐसी कामना हम करते हैं, और ऐसे ही आप भी रेडियो से जुड़ते रहें। अभी के लिए बस इतना ही, हमारी ओर से नमस्कार आप सभी को, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: ये था आपके लिए, सबों के लिए साहित्य दर्पण जो कराए जीवन से दर्शन। और अभी हम देखते हैं, शाम के 5:01 हो गया है।
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी
1: नमस्कार और आदाब देवी और सज्जनों, आप हैं बेमिसाल, मानो या न मानो। रोशन की ओर से खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत। वही आदत हो गई हमारी आपको बहुत प्यार करना, आपकी चाहत करना, और वही है पावत जो है जागत। ये तो एक बड़ी पुरानी कहावत है, फिर भी ये बहुत ही सत्य है। सर्वप्रथम आप सभी को कोटिशा धन्यवाद एम टू रेडियो मॉरिशस से जुड़ने के लिए, अपनी वफादारी निभाने के लिए। ओके, खेल खिलाड़ी का पहला भाग सिनेमा दिल से जो चलेगा 5:30 तक, और दूसरे भाग में मेरा सवाल तेरा कमाल, जनरल नॉलेज फुटबॉल और स्पोर्ट्स पर प्रश्न। तो चलिए सिनेमा दिल से पहला सेगमेंट, विषय गीत रंग बिरंगी अनेक और शब्द केवल एक। जी हाँ, गीत रंग बिरंगी एक अनेक, लेकिन शब्द एक। ऐसे गाने चलाएंगे जिसमें आप बार बार एक ही शब्द सुनेंगे, एक शब्द हमेशा आता है उस गीत में। अब कौन सा है वो शब्द आपको ढूंढना है मेरे मित। पहचानिए सुनकर एक के बाद एक गीत। तो चलिए पहला गाना आपके लिए हम चलाएंगे, इस गाने को गौर से सुने, इसमें एक शब्द आता है, दूसरे गाने में भी ये शब्द उसमें।
4: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दूसरे गाने में भी, तीसरे गाने में भी यही शब्द आता है, कौन सा है वो शब्द। 402-808-5 पर प्लीज आप फोन करें और हमें बताइए।

0: जब आप होंगे सत्य और प्रेम के कंपेनियन तो जीवन में उभर के होंगे आप चैंपियन। चंदू चैंपियन का गाना आप ही के लिए था मुझे बजाना। हमने सवाल किया कि हर एक गाना जो हम चलाने वाले हैं उसमें एक शब्द बार बार आता है। मौदलबिया सिंदीरा जी ने कहा दिल। ओके, शोभा जी फ्रॉम वाकवा उन्होंने कहा जीत। ओके, देखते हैं दूसरा गाना आपके लिए चलेगा। ये ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए इस शब्द को जानने के लिए, अनुमान लगाने के लिए। चलिए हम दूसरा गाना आपके लिए चलाते हैं, देखते हैं कि आप अनुमान लगा पाएंगे या नहीं।
1: 819 kilohertz, 19 kilohertz. This is Radio Mauritius.

बात को मानो मेरे मीत, और अभी शाम के 5:15। चंदू चैंपियन और मिस्टर इंडिया के दो गीतों के बाद देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया। कौन सा वो शब्द बार बार हर गाने में आता है? आशा जी फ्रॉम कटेज, उन्होंने सही जवाब दिया। इंद्रानी जी फ्रॉम लिस्कालिए, उन्होंने भी सही जवाब दिया। देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स, उन्होंने सही सही जवाब दिया। इंदिरा जी फ्रॉम मोदाबिया, उन्होंने इस बार कहा रीत। नहीं जी। हरीश भाई ने कहा जिंदगी। ये भी सही नहीं है। सुदेवी जी ने कहा जिया। नहीं नहीं नहीं। अली साहब ने सही जवाब दिया लिस्कालिए से। लक्ष्मी जी फ्रॉम बॉम्बू, उन्होंने भी कहा जिंदगी हरीश भाई की तरह, लेकिन ये भी सही नहीं है। और श्यामा जी फ्रॉम विल में, उन्होंने कहा रीत। नहीं नहीं जी। फिर से आप कोशिश कर सकते हैं, ये अगला गाना सुनिए, इसमें वो शब्द फिर से आता है और आप जरूर पहचान जाएंगे। 402-808-5। On the hour, every hour, Radio Marches.

0: जी हाँ दोस्तों, प्यार की हमेशा होती है जीत। इसलिए सच्चे मन से आप लगाएं प्रीत। इस तीसरे गाने को सुनकर हमारे श्रोतागण ने क्या जलवा दिखाया है, चलिए हम आपको बताते हैं। अभी इंदिरा जी मौदाव्या से तीसरी बार उन्होंने फोन किया और इस बार उन्होंने कहा प्यार, नहीं नहीं। सरिता जी ने कटरबोन से फोन किया और उन्होंने सही जवाब दिया। दीपा जी ने कोतवाल से फोन करके कहा है, नहीं जी ये सही जवाब नहीं है। और नन्नाल जी मौदुस्थालिया से उन्होंने सही जवाब दिया। उमा जी फ्रॉम रोजबेल, लक्ष्मी जी फ्रॉम बॉम्बू और अनीता जी फ्रॉम मौदाव्या, उन्होंने ही सही जवाब दिया। और जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनकी हो गई है जीत, यानी सही जवाब है जीत जीत जीत। और जिन्होंने सबसे पहले एक ही झटके में पहले गाने सुनकर जिन्होंने सही जवाब दिया है वो है वाक्वा की शोभा जी। उन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया और वो भी पहले गाने ही सुनकर, क्या बात है। और शोभा जी के अलावा जिन्होंने सही जवाब दिया वो है आशा जी फ्रॉम कॉटेज, लिस्कालिये से इंद्राणी जी, देवी जी फ्रॉम हाईलैंड्स, अली साहब फ्रॉम लिस्कालिये और सरिता जी फ्रॉम कटरबोन और नन्नलाल जी फ्रॉम मौदुस्थालिया, उमा जी फ्रॉम रोजबेल, अनीता जी फ्रॉम मौदाव्या, लक्ष्मी जी फ्रॉम बॉम्बू और संध्या जी, आपको हम नहीं भूले हैं, संध्या जी फ्रॉम पोएंटो पिमो। चलिए ये सिनेमा दिल से सेगमेंट यहाँ पर समाप्त हो गया। थोड़ी देर में आपके लिए दूसरा भाग मेरा सवाल तेरा कमाल, जहाँ पर आपको ऑन एयर जवाब देने का मौका मिलेगा। वर्ल्ड कप पर आधारित रहेगा ये जो सेगमेंट है और जनरल नॉलेज पर भी। अगला गाना आपके लिए हम बजाएंगे ताकि आप लोगों का जो उत्साह है वो और बढ़े। और ये गाना खासकर ये गाना मांगा है कौंजब की श्रद्धा जी ने। हमेशा आप श्रद्धा पूर्वक इस प्रोग्राम को सुनती रहती है, तो ये गाना खासकर आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके दामाद बाबू के लिए, आपके और आपकी सुपुत्री पूजा जी के लिए जो चिल्ड्रंस कोर्ट में काम करती हैं। और पूजा जी कहते हैं कि ये उनके सुपुत्र के लिए हो जाए और चिल्ड्रंस कोर्ट के सभी जो कोलीग हैं उन लोगों के लिए भी ये गाना हो जाए। और जो उनके कोलीग्स हैं वो अरुणा जी है, मेधा, पूजा, दामिनी, अनसुफी और दीपशिका। तो चलिए इस गाने को हम आपके लिए डेडिकेट करते हैं और हमारे सारे श्रोतागणों के लिए भी। और थोड़ी देर में दूसरा भाग आप लोगों के लिए।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: सुहाना हो जाता है। और ये गाना खासकर श्रद्धा जी जो कौजाब की रहने वाली हैं उनके लिए और पूजा जी और उनके पूरे परिवार के लिए, आशा है कि ये गाना आपने खूब सुनकर खूब पसंद किया होगा। और सच में हमेशा जब टीम की तरह आप चलते हैं एक होकर तो यही बात होती है, ज़िंदगी में कामयाब ही कामयाब होंगे आप। और जब टीम की तरह खेलते हैं तो वर्ल्ड कप में भी खिलाड़ी कुछ कम नहीं है। 5:30 हो गए हैं।
1: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxis. खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी खिलाड़ी।
0: जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे साथियों, स्पोर्ट्स लवर्स और म्यूजिक प्रेमियों, पुनः आप लोगों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं AM2 रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। और ये प्रोग्राम केवल आप लोगों के लिए है, खेल खिलाड़ी। और इस बारी मेरा सवाल तेरा कमाल जो रहेगा एक्सक्लूसिवली वर्ल्ड कप और जनरल नॉलेज पर, यानी सामान्य ज्ञान पर। तो चलिए हम आरंभ करते हैं फुटबॉल के साथ। और गुरुवार से वर्ल्ड कप का समा छा गया है पूरे विश्व भर में। इस वर्ल्ड कप को आप और यादगार स्मरणीय बनाइए परिवार के बीच, दोस्तों के साथ एवं नौकरी के स्थल पर। आप लोग फुटबॉल मैचेस के फाइनल्स को लेकर भविष्यवाणी कर सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। जो एग्जैक्ट स्कोर देगा उनको पुरस्कृत आप लोग करें। हमने तो ये खेल आरंभ भी कर दिया है। चलिए हम थोड़ा परिणाम की ओर बढ़ते हैं। और जो ओपनिंग मैच था मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच में, याद रहे कि ये जो ओपनिंग मैच था मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका, ये भी था 2010 का जो वर्ल्ड कप था, वाका वाका वाला, जी आपको याद है, उसमें भी यही ओपनिंग मैच था, लेकिन साउथ अफ्रीका तब होम था, इस बार मेक्सिको होम है। और मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया है। मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराकर पहले स्थान उन्होंने पा लिया है टेबल में। और देखते हैं, साउथ कोरिया वर्सेस चेक रिपब्लिक, और ये जो चेक रिपब्लिक है 1-2। कनाडा जो एक और मेजबान देश है, उन्होंने मैच ड्रॉ किया बोस्निया हर्जेगोविना के खिलाफ। और यूएसए जो तीसरा मेजबान देश है, उन्होंने पछाड़ा पैराग्वे को 4-1 के स्कोर से, जी हां 4-1। और इस मैच के दौरान 3-0 से पहले ही हाफ में यूएसए की जीत हो रही थी 3-0 से। और बाद में पैराग्वे ने एक गोल कम किया और फिर स्टॉपेज टाइम में यूएसए ने एक और गोल दाग कर 4-1 स्कोर कर दिया। और इस मैच के बाद जो अभी टॉप स्कोरर हैं वो है पालो गन, जी हाँ गन की तरह वो उन्होंने आक्रमण किया, 2 goals फ्रॉम पालोगन। और ये जो मैच है, पहला ओन गोल इसी मैच में स्कोर किया गया बोबाडिला की तरफ से, पैराग्वे का अभागा खिलाड़ी बोबाडिला ने ओन गोल स्कोर किया। और इस वर्ल्ड कप का जो फर्स्ट रेड कार्ड है वो साउथ अफ्रीका के सिटोले ने लिया है। और इस मैच के दौरान 3-3 रेड कार्ड्स, 2 मेक्सिको को और 2 साउथ अफ्रीका को और 1 मेक्सिको को दिया गया रेड कार्ड।

और जो सबसे पहला गोल स्कोर किया गया वो 90 मिनट पर किया गया, और आपको बताना पड़ेगा

0: प्लीज़ हमें बताइए कि वर्ल्ड कप का जो पहला गोल है किसने स्कोर किया है। बड़ा ही आसान है, आपको ऑन एयर जवाब देना पड़ेगा, तब हम तुरंत एक और सवाल आपसे करेंगे ऑन एयर ही। तो आप सोच के हमें प्यार से बताएं कि पहला जो गोल इस वर्ल्ड कप में स्कोर किया गया वो किसकी ओर से हुआ। 4028085
1: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius.
0: जवाब देखकर आप लोग बन जाए चैंपियन।

0: जी हाँ, वर्ल्ड कप के खिलाड़ी जीत कर फसाना लिखेंगे, ये तो तय है। अंत में किसकी होगी जीत, ये 23वां एडिशन वर्ल्ड कप का कौन ट्रॉफी ले जाएगा वर्ल्ड कप का, ये तो देखने वाली बात है। और हमने सवाल किया था कि इस वर्ल्ड कप का सबसे पहला गोल किसने स्कोर किया। सही जवाब दिया नन्नाल जी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दीपा जी फ्रॉम कोंतोगेल, शिव्या जी फ्रॉम कोंगोमा, और एक और श्रोता भी लाइन पर ऑन एयर है, उनको हम सुन लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते रोशन भाई।
0: नमस्ते, इता भाई विजय होवन क्लावेट से।
1: हाँ, धन्यवाद।
0: कैसे बात चलता?
1: हाँ चला था, तन देखे से खूब जीवन देखा थी।
0: देखा था तनी वर्ल्ड कप देखा था?
1: हाँ हाँ हाँ देखा थी।
0: हाँ, कैसे तुहरा नींबू लगा था, उकर लेवल कैसे बा?
1: हाँ अच्छा बा, बहुत अच्छा बाटे छ तनी दे फजीर के 3 बजे 2 बजे 5 बजे
0: का कर भाई, नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है ना, इसीलिए तनी हमने के दिक्कत होता। फिर भी जब फुटबॉल फैन हुआ तो ई कोनो क्या बोलब तुहरा, चिंता के बात नहीं है ना।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा बा।
0: हाँ तो बोला कौन जवाब देबा के सबसे पहला गोल दले हुआन?
1: किनोनेस।
0: हाँ जी, जूलियन किनोनेस सही जवाब देला। जैसे नन्नलाल जी, दीपा जी और शिव्या जी बताइलन, तोहरो जवाब एकदम एकदम सही है। तो चला तोहर खातिर एगो और सवाल देखब सक कि आप खिलाड़ी ऑफ द वीक बनब कि नहीं।
1: हाँ, कोशिश कर।
0: हाँ, कोशिश तो चाहना करते रहे के भाई जी। तो बोला हमनी के, अगर हम तोहरा बोलब नंबर 48, नंबर 48 48, तो तू हमके बोलबा जा आप कि 48 के मीनिंग है कि इस वर्ल्ड कप में 48 टीमें हैं ना, 48 टीम्स है, है ना। जब हम तोरा हाई फिगर दे भाई, हम तोरा संख्या दे 104, तो ही सुनबा तो कुब जुमोन में तोहरा क्या कुछ याद आवता सौकात।
1: हाँ, तो अति सब जैसे सौकात मैच खिलाई,
0: सौकात मैच खिलाई। अरे वाह, क्या बात बा विजय भाई, तू तो पहला खिलाड़ी ऑफ द वीक बन गए ला। बहुत बहुत धन्यवाद तोहरा, ऐसे ही आप भाग लेते रहिए भाई विजय जी।
1: धन्यवाद आपको भी, शुभ रात्रि।
0: तोहरा फेवरेट टीम कोच है?
1: इंग्लैंड।
0: इंग्लैंड, सभी जो मॉरिशन वासी हो जा इंग्लैंड के बहुत खुशी रहे सर।

0: अच्छा, धन्यवाद आपको, बाय
1: धन्यवाद आपके,
0: बाय।
1: बाय।
0: चलो हम चलिए, आपके लिए थोड़ी देर में दूसरा प्रश्न तैयार है आप लोगों के लिए।

जी हाँ, आप बस दे दे हमारा साथ वर्ल्ड कप स्पेशल में दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए, जरा गौर से आप सुने। 2002 में, 2002 में गोल ऑफ द सेंचुरी वोट किया गया। जी हाँ, गोल ऑफ द सेंचुरी, ये इतिहास की बात है, जरा गौर से सुने। एक ऐसा गोल जो लिजेंडरी स्वर्गीय डिएगो आर्मांडो माराडोना ने स्कोर किया था, याद आया आपको? वो जो वर्ल्ड कप के दौरान 1986 में, जिससे 2002 में वोट के बल पर घोषित किया गया 20वीं सदी का सबसे महान गोल, द गोल ऑफ द सेंचुरी। बताइए, आप जरा सोच के दिमाग के घोड़े को लड़ाकर आप हमें बताइए कि किस टीम के विरुद्ध माराडोना ने ये गोल ऑफ द सेंचुरी स्कोर किया था? याद आया आपको किस देश के खिलाफ माराडोना ने अकेले ही 5-5 खिलाड़ियों को ड्रिबल करके उन्होंने ये गोल स्कोर किया था, और वो भी हाफ लाइन से उसके उस पार आते आते उन्होंने गोल स्कोर कर लिया? तो वो किस देश के खिलाफ था? 4-0-2, 8-0-8-5।

जी हाँ, आप ज़रा साथ दे दें हमारा, हमेशा आप साथ तो देते रहते हैं। और हमने सवाल किया था कि जो गोल ऑफ द सेंचुरी है, जो स्वर्गीय डिएगो आर्मांडो माराडोना ने स्कोर किया था 1986 के वर्ल्ड कप में,

0: ये क्वार्टर फाइनल मैच था किस टीम के खिलाफ? और सही जवाब दिया दीना जी फ्रॉम मौलाशो, बुबासे से हरीश भाई, शिव्या जी फ्रॉम कुंगुमा, इंदिरा जी फ्रॉम मोदाबे। और देखते हैं ऑन एयर अभी के लिए कौन है। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते जी,
1: मैं दीपा बोल रही हूँ। नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कौन तो गैर से दीपा जी का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू।
0: कहिए दीपा जी, आप फुटबॉल में दिलचस्पी रखती हैं?
1: हाँ, वर्ल्ड कप,
0: बच्चे लोग भी, पति भी और आप भी। क्या
1: हाँ।
0: बात है। और आपका फेवरेट टीम वर्ल्ड कप के लिए?
1: इंग्लैंड।
0: आप भी इंग्लैंड?
1: हाँ।
0: तो मैं कहूँगा ईस्ट तो वेस्ट, इंग्लैंड इज द बेस्ट। तो चलिए आप हमें जवाब दीजिए, कौन सा वो देश है?
1: हाँ, अर्जेंटीना, डिएगो माराडोना अगेंस्ट इंग्लैंड।
0: इंग्लैंड। और आपने क्या खूब जवाब दिया औरों की तरह। बहुत ही धन्यवाद दीपा जी, ऐसे ही आप दिलचस्पी बढ़ाते रहें खेल खिलाड़ी प्रोग्राम के प्रति, और आप फुटबॉल देखती रहें। लेकिन फुटबॉल केवल देखना नहीं, आपको व्यायाम भी तो करना है ना। ओके दीपा जी, थैंक यू वेरी मच, बाय। थोड़ी देर में अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, आप जरा गौर से सुने। चलिए हम फिटनेस की बात करेंगे। फिटनेस की बात करते हुए आपको हम बता दें कि हम रोज लंबी सांसें लेकर सवेरे सवेरे हम लंबी सांसें लेते हैं, खिड़की खोल देते हैं, शीतल पवन को प्रवेश करने देते हैं और व्यायाम करते हैं। अगर आपको मैं केवल कहूँगा व्यायाम करने को और मैं खुद नहीं करूँगा तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो हम ये सब कुछ करते हैं, इसीलिए आप लोगों को कहते हैं हमेशा आप करते रहें और अपने आप को फिट और फाइन रखें। और जब हम लंबी सांसें लेते हैं तो कहते हैं आई एम फिजिकली एक्टिव। अब जब सांसें छोड़ते हैं तो हम कहते हैं आई एम मेंटली रिलैक्स्ड। आप कहेंगे आई एम फिजिकली एक्टिव एंड आई एम मेंटली रिलैक्स्ड, तो सचमुच आपका पूरा दिन जो है बहुत ही तनाव रहित गुजरेगा, ये आप यकीन मानिए। तो चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, एक टर्म हम आपको बताते हैं फिटनेस पर। ये प्रश्न है बॉडी मास इंडेक्स, जी हाँ BMI। ये तय करता है कि आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, या आपका जो वेट है, वजन है, ठीक है या नहीं। इसलिए हम BMI इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा जो वजन है ठीक है या नहीं, हम स्वस्थ हैं या नहीं। तो आप हमें उसका फॉर्मूला बता दीजिए, BMI इज इक्वल टू व्हाट। हाँ जी, आप ढूंढ के हमें प्लीज प्यार से बताएं कि बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला हमें बताइए, 402-808-5 पर प्लीज हमें बताइए जल्दी जल्दी।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस।

0: दम दम दम मस्त है, प्रोग्राम तो जबरदस्त है। चलिए हम देखते हैं लाइन पर कौन है। हमने सवाल किया था कि बॉडी मास इंडेक्स BMI का फॉर्मूला क्या है, उसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए लाइन पर देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: यस नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: यस यू आर शिव्या फ्रॉम कुंकुमा।
1: यस
0: आपका स्वागत है शिव्या।

0: जी, कैसी हैं आप?
1: आई एम फाइन एंड यू।
0: फाइन डियर। तो आप हमें बताइए, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है?
1: इट इज वेट ओवर हाइट।
0: यस, वेट ओवर हाइट
1: टाइम्स टू।
0: यस, वेट ओवर हाइट टू द स्क्वायर। दैट इज वेट ओवर हाइट टाइम हाइट। वेट इन किलोग्राम ओवर हाइट इन मीटर्स। बिल्कुल, आपका जवाब एकदम सही है। और आपका जो BMI है, अगर वो 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट है। अगर आपका BMI 18.5 से लेकर 25 है तो बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन आपका BMI जब 25 से ऊपर हो जाता है तो आप ओवरवेट हो जाती हैं। अगर आप 30 से ऊपर हो जाएंगे तो आप इसे कहते हैं ओबेज जिसे कहते हैं। ओके शिव्या, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए तुरंत हम देते हैं। और हमने कहा वेट ओवर हाइट टू द स्क्वायर। ओके, इट्स ए मैथमेटिक्स टाइप क्वेश्चन। आपको हमें बताना पड़ेगा, हमने स्क्वायर कहा तो द स्क्वायर ऑफ 11। If I tell you 8 to the square, you will just calculate 8 times 8, it becomes 64. So 11 times 11, what's the answer? Kya uttar hai 11 multiplied by 11? Hame bataiye please. 121, and this is the right answer, Shivya. Thank you. Okay, aap bhi khiladi of the week ban gayi hai. Dhanyavaad aapko, bye.

चलिए एक अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए, आप हमें एक कहावत को आपको पूरी करनी है, आपको ये कहावत पूरी करनी है जी, जो माइकल जॉर्डन ने कहा था, एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्समैन है, अमेरिकन स्पोर्ट्समैन माइकल जॉर्डन, उन्होंने कहा था टैलेंट विंस गेम्स बट फिलिंग द बैंक एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियनशिप्स। कौन सा मिसिंग शब्द है? टैलेंट विंस गेम्स बट एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियनशिप्स, वो क्या है? आपका हुनर, आपका कला, आपकी कला हमेशा जो खेल है उसे आप जिता सकते हैं, परंतु एक ऐसी चीज़ है जो आपको चैंपियनशिप दिला सकता है। माइकल जॉर्डन ने ये कहा था। व्हाट इज़ द इंग्लिश वर्ड 402-808-5 पर प्लीज़ आप जवाब दें।

जी हाँ, हमने सवाल किया था कि वो कौन सा शब्द है जो इस कहावत को पूरी करता है, जैसे टैलेंट विंस गेम्स बट ब्लैंक एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियनशिप्स। और हरीश भाई ने सही सही जवाब दिया और वो चले भी गए, ऑन एयर नहीं आ पाए। सही जवाब है टीम वर्क। जी हाँ, टीम वर्क ही सही जवाब है, और हरीश भाई के लिए जोरदार तालियां। और ये माइकल जॉर्डन ने कहा था, और माइकल जॉर्डन तो एक अमेरिकन बिजनेसमैन और बास्केटबॉल प्लेयर है। आपको याद है ना, बहुत ही तहलका मचाया था उन्होंने जवानी के दिनों में। उनका जो नाम है बास्केटबॉल की दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम। भूलिएगा मत, शाम को स्विट्जरलैंड का मुकाबला होगा कतर से, जो कतर 2022 में आयोजित किया गया था वर्ल्ड कप। तो कतर हैज बीन क्वालिफाइड फॉर दिस वर्ल्ड कप, और उसका जो पहला मैच है स्विट्जरलैंड के खिलाफ है। बढ़िया मैच होगा, प्लीज।

0: आप देखिए, और कल का जो गर्मा गर्म मुकाबला है, ब्राजील वर्सेस मोरक्को, 2 बजे दिन के सवेरे 2 बजे, हाँ जी, ब्राजील वर्सेस मोरक्को। और मोरक्को वो एकमात्र अफ्रीकी टीम है जो सेमीफाइनल तक पहुंच पाई थी गत वर्ल्ड कप में 2022 में कतर में, और उसकी हार हो गई थी फ्रांस के खिलाफ, आपको याद है। और मोरक्को इज़ ए वेरी गुड टीम, ब्राज़ील को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। बहुत ही सुंदर सा मैच है, आप सवेरे उठ के इस मैच को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास MBC प्ले है तो ज़्यादा अच्छा है। रोज़ MBC आपको सूचित करता है कि आप लोग डाउनलोड कीजिए MBC प्ले, और MBC प्ले के ज़रिए आप लोग ये प्रोग्राम, ये जो सभी 104 मैचेस हैं देख सकते हैं, और आपके जो मोबाइल हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं टीवी से या लैपटॉप से, जो भी आप ठीक समझें। तो इसी के साथ समाप्त होता है आज का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम, आपने खूब गौर से सुना, धन्यवाद। आपको कहेंगे व्यायाम करते रहें, वर्ल्ड कप का समय आप जिए, और लोगों को उत्साहित करें कि वो भी फुटबॉल देखें, और नौजवानों को प्रेरित करें कि वो फुटबॉल खेलें, और आप लोग व्यायाम अवश्य करें रोज प्रतिदिन। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि आप लोगों को।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो मॉरिशस।

0: This magazine was brought to you by Quality Decor, the Flow Expert.
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शाम के 6 बजे है। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ईरान और अमेरिका के बीच अगले 24 घंटों में समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की प्रबल संभावना है। वहीं वार्ता में प्रगति के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई।

0: जनवरी से फरवरी 2026 के बीच घरेलू हिंसा के 1200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बदलते स्वरूप और बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है और इसी उद्देश्य से मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सभा में डोमेस्टिक अब्यूज बिल पेश किया जाएगा। 17 जून 2026 से सेंट्रल प्लेटू के कुछ इलाकों में पानी वितरण की नई समय सारणी लागू होगी। वाक्वा, क्यूपिप और सैंपिया में पानी की आपूर्ति प्रतिदिन सीमित घंटों के लिए होगी। रोकथाम को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय जमीनी स्तर पर जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। भूपलाव में आयोजित हेल्थ प्रमोशन कैंपेन के शुभारंभ पर स्वास्थ्य कर्मियों, अधिकारियों और आम जनता को स्क्रीनिंग और रोकथाम के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए एक मंच पर लाया गया है। और फुटबॉल विश्व कप की दुनिया में 2026 विश्व कप की शुरुआत उत्तरी अमेरिका में रोमांचक रही है। कनाडा और बोस्निया हर्ज़ेगोविना का मैच 1-1 से बराबरी पर रहा, जबकि अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराकर दमदार जीत दर्ज की है। और भव्य उद्घाटन के बाद अब सभी की नज़रें ग्रुप सी के ब्राज़ील और मोरक्को के बड़े मुकाबले पर टिकी है, जिसका सीधा प्रसारण रविवार 14 जून को सुबह 2 बजे एमबीसी पर होगा। और अब समाचार विस्तार से। आगामी 24 घंटों के भीतर ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की प्रबल संभावना है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में प्रगति के बावजूद दक्षिणी लेबनान में अलग अलग इजरायली हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी सुमेरा अकबर अली के साथ।
1: लिबनान के जनूबी शहर में इसराइल ने जबरदस्त हमले किए हैं। कम से कम 5 बाशिंदों की मौत हुई है। ये हमले तब किए गए जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने कहा कि अमेरिका के साथ एक समझौता तय होने वाला है। इस संधि के जरिए इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान भी सुलह की शर्त होगी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएटर की हैसियत से अमन कायम करने की कोशिश की। उन्होंने पुष्टि की कि आते 24 घंटों में दोनों मुल्क जंग को खत्म करने के लिए ये समझौता तय करने वाले हैं। इसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। युद्ध की वजह से ज्यादातर देशों पर बड़े असरात पड़े हैं। अब नए हुर्मूज पर कभी घेराबंदी तो कभी पाबंदी से अनेक मुल्कों की अर्थनीतियों को गहरा सदमा पहुँचा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बाधाएं उत्पन्न हुई। शांति समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद अगले हफ्ते एक तकनीकी बैठक लगाई जाएगी।
0: जनवरी से फरवरी 2026 तक घरेलू हिंसा के 1200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। घरेलू हिंसा का मतलब केवल दिखाई देने वाली शारीरिक चोट नहीं है, बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और वित्तीय शोषण भी शामिल है। हाल के वर्षों में इस अभिशाप के बदलते स्वरूप और इसके मामलों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार अपने कानूनी मेकानिज्म को और मजबूत करना चाहती है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय सभा में डोमेस्टिक अब्यूज बिल पेश किया जाएगा, जिसे कल मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। ज्यादा जानकारी रजनी बिकर के साथ।
2: 5 वर्षों के अंतराल में घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या 5000 से अधिक पार कर गई, लेकिन हिंसा केवल शारीरिक नहीं, ये वित्तीय एवं मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग का रूप भी ले सकती है। घरेलू हिंसा ज्यादा जटिल हो रही है और नया नया रूप भी धारण कर रही है। डोमेस्टिक अब्यूज बिल अब से इस समस्या से हर एक रूप से निपटने की राह पर है। इस तरह घरेलू हिंसा का एक ज्यादा बड़ा अर्थ पेश हुआ है, चाहे आर्थिक हो, भावनात्मक हो या फिर यौन संबंधी, सभी कानून द्वारा दंडित। मंत्री आर्या नावामारी ने कहा,
3: Ce nouveau projet de loi là les plie large dans le sens qu'il les couvre plusieurs types de violences, pas seulement abus sexuels. Quand nous cause violence, nous cause surtout violence physique. Ou abus est capable dans plusieurs genres, plusieurs types. Il y en a aussi, mais qui pas dans ce projet de loi là, il y a des affaires qui pourraient introduire également. Il y a le marital rape, viol marital et féminicide. Parce que vous connaissez ces derniers temps, il y en a beaucoup, madame, qui finit perdre la vie.
2: Mais domestique,

0: अब्यूज बिल यही तक सीमित नहीं, इस विधेयक में एक ज्यादा कारगर न्यायिक प्रणाली का भी प्रावधान है जो घरेलू हिंसा के खिलाफ कदमों से संबंधित है।
1: Quand il y a une victime, l'y sauver pour du secours ou soutien, et pas nécessairement dans l'endroit qu'il peut rester. L'y payer du soutien ailleurs, dans l'autre endroit, à côté de sa maman, à côté d'une cousine, etc., une voisine, une famille qui ne reste pas dans la localité qu'il y restait. Donc ça veut dire, du moins là, la victime là, elle est capable de donner sa déclaration à la police quand il y était n'importe quoi de ça. Donc ça, c'est une nouveauté, bien dire.
0: इस साल के पहले दो महीनों के लिए हिंसा के 1,259 मामले दर्ज किए गए और प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए 195 मांगें प्राप्त हुई। इस विधेयक के साथ अधिकारीगण हिंसा के शिकार लोगों की रक्षा बढ़ाने और मौजूदा हकीकतों के लिए एक अनुकूल न्यायिक ढांचा कायम करने का इरादा रखते हैं।
2: सत्रह जून 2026 से सेंट्रल प्लेटू के कुछ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के नए समय लागू किए जाएंगे। वाकुआक्यूपिप और सैंपिया में पानी की सप्लाई अब दिन में केवल कुछ घंटों तक सीमित रहेगी। इस फैसले को लेकर स्थानीय लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग चिंतित हैं, कुछ असंतुष्ट हैं, जबकि कुछ पहले से ही इस स्थिति के लिए तैयारी कर रही है। मॉरिशस में रशिया के राजदूत इरिडा जिलानोवा ने मॉरिशस के साथ मजबूत सहयोग के प्रति अपने देश की प्रतिबद्धता दोहराई। ये बात उन्होंने कल इबेन में रशिया के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित एक स्वागत समारोह में कही। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थी, जिनमें राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम भी शामिल थे।
3: हर साल 12 जून को रूसी जनता अपना राष्ट्रीय दिवस मनाती है। अपने भाषण में रूसी राजदूत ने रूस और मॉरिशस के बीच 58 सालों के अच्छे कूटनीतिक संबंधों की सराहना की। इरिडा जिलानोवा ने खुशी व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच सहयोग अब शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति सहित कई अन्य क्षेत्रों तक विस्तृत हो चुका है। उन्होंने शागस द्वीप समूह पर भी बात की। सस्यु सागर राम गुलाम के नक्शे कदमों पर चलते हुए मॉरिशस शागस द्वीप समूह पर अपनी संप्रभुता के लिए संघर्ष कर रहा है। रूस हमेशा से मॉरिशस का समर्थन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। 21वीं सदी में किसी भी प्रकार के उपनिवेशवाद का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए। राजदूत जिलानोवा ने प्रधानमंत्री को 17वीं शताब्दी के मुगल चित्रकार उस्ताद मंसूर की एक कलाकृति भेंट की, जो रूस की ओर से मॉरिशस की जनता के लिए एक भेंट है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अलावा 1968 की मॉरिशस की तस्वीरों की एक प्रदर्शनी भी लगी। सोवियत फोटोग्राफरों की ये कृतियां, जो टस एजेंसी की कृतियां हैं, मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपी गईं।
2: स्वास्थ्य मंत्रालय रोकथाम को और मजबूत बनाने के लिए लोगों के करीब पहुंचने पर जोर दे रहा है। भोपाल में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की शुरुआत के अवसर पर स्वास्थ्य पेशेवरों, अन्य अधिकारियों और आम जनता ने एक साथ भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य जांच और रोकथाम के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है।
3: कुछ ही पल काफी होते हैं अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। भोपाल में कई लोग अपनी सेहत की जांच करने पहुंचे, जहां उन्हें विभिन्न परीक्षणों और व्यक्तिगत परामर्शों की सुविधा दी गई।
4: Je suis suivi le traitement cardiaque. Alors, je viens faire un test encore, je vais continuer à arriver. Parfois, nous allons dans l'hôpital, attendre un paquet de dedans encore, mais il vient un peu plus près en nous, c'est plus bon.
3: ये स्वास्थ्य अभियान एक ही स्थान पर कई सेवाओं को एकत्र करता है, जिसका उद्देश्य जनता को गैर संचारी रोगों के बारे में जागरूक करना और रोज की सेहत की देखभाल के महत्व को समझाना है। स्वास्थ्य का ख्याल मात्र मधुमेह या रक्तचाप से बचना नहीं, वजन, आहार आदि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

0: इसीलिए यहाँ कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी आए हुए हैं। आत्सु के अफसर भी हैं जो ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ा रहे हैं।
1: आत्सु parce que il y a un problème de la drogue aussi à Maurice, donc l'Atsu les fait sensibilisation côté la drogue.
0: वहाँ मौजूद महानुभावों ने गैर संचारी रोगों विशेषकर मधुमेह की प्रारंभिक जांच के महत्व पर जोर दिया और कहा कि ऐसे अभियान स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के और करीब लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कई लोगों को आज पता चला कि उन्हें डायबिटीज है। सभी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के लिए टेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। मंत्रालय अन्य जगहों तक ये पहल बढ़ाने का इरादा रखता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो।
2: कलेक्टिव अकाउंसियल के आह्वान पर 21वीं मार्च दे फियर्टी इस शनिवार रोज में आयोजित की गई गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने आंसम नुप्लीफो विषय के तहत एकजुट होकर भाग लिया। उत्सव जैसा माहौल होने के बावजूद उनकी मांगे अब भी मजबूत है, खासकर समान अधिकारों के मुद्दे को लेकर। अधिकारियों ने टिकाऊ भविष्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संतुलित और सटीक कृषि को अपनी रणनीतियों के केंद्र में रखा है। इस उद्देश्य से लालुगा मालेंगा में ग्रीन हाउस खेती की एक पहल जॉर्डन लालुगा शुरू की गई है। ये पहल अधिक जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल कृषि की दिशा को दर्शाती है, जिसमें उर्वरकों का उपयोग जरूरत के अनुसार और नियंत्रित तरीके से किया जाता है। पूरी व्यवस्था एक स्मार्ट और सटीक प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाती है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन में तेजी से अपनी जगह बना रही है और हमारे युवाओं में ये देखा जा रहा है कि ये देश की कुछ चुनौतियों को हल करने में भी योगदान दे सकती है। नेशनल लर्न एआई इनोवेशन चैलेंज के इस दूसरे संस्करण के दौरान ग्रेड 10 और ग्रेड 12 के स्कूली छात्रों ने कई क्षेत्रों में एआई पर आधारित प्रोजेक्ट पेश किए। प्रतियोगिता के समापन पर सुदना कैसेसिस की छात्राओं और लंदन कॉलेज के छात्रों ने अपनी अपनी श्रेणियों में जीत हासिल की। विदेश में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी 6 दिवसीय यात्रा के लिए फ्रांस और स्लोवाकिया के लिए रवाना हो गए हैं। अपने रवानगी के बयान में श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण में फ्रांस का एक विशेष स्थान है। मोदी ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर होगा। और 2026 विश्व कप का आधिकारिक रूप से उत्तर अमेरिका में आगाज हो चुका है और पहले नतीजे काफी ध्यान खींच रहे हैं। ग्रुप बी में कनाडा को बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया। वहीं ग्रुप डी में यूएसए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।

0: जहाँ जैसे कि हम बता रहे थे 2026 विश्व कप का आधिकारिक रूप से उत्तर अमेरिका में आगाज हो चुका है। इसी पर आधारित कल के मैच पर आधारित ग्रुप बी में कनाडा को बोस्निया हर्जेगोविना ने एक एक की बराबरी पर रोक दिया। वहीं ग्रुप डी ने में यूएसए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इस पर आधारित ये रिपोर्ट पेश है।
1: सहमेजबान देश कनाडा पहले से ही अपने स्टेडियम को रंगारंग माहौल से सजा डाला। एक विशाल खुला रंगमंच, ऊर्जा से भरपूर माहौल, कलाकारों के परफॉर्मेंस से, ऐसे संगीतमय माहौल में स्टेडियम के दर्शक एक साथ इस वर्ल्ड कप के प्रतीक एकता में सामने आए। इसके बाद मैदान में कनाडा की टीम वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत के साथ टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत करने के इरादे से उतरी। यह एक बहुत ही कड़ा मुकाबला साबित हुआ। कनाडा के सामने भी बोस्निया हर्जेगोविना की टीम बहुत अनुशासन और सटीक टेक्निक के साथ खेलने आई थी और कनाडा के खिलाड़ियों को काफी कठिनाई हुई और पहला गोल स्कोर किया बोस्निया हर्जेगोविना ने। योवो लुकिच ने 21वें मिनट पर गोल स्कोर किया। अपने होम फैंस की गूंज पर कनाडा की टीम सेकेंड हाफ में बराबरी कर पाई। साइल लारिन का गोल रहा जो सब्स्टिट्यूट के रूप में आया। एक सुंदर सामूहिक खेल का नतीजा रहा ये गोल। फाइनल स्कोर 1-1 और वर्ल्ड कप के इतिहास में कनाडा का पहला अंक। तीसरे मेजबान देश यूएसए में भी गर्म संगीतमय रोमांचक माहौल। अपना वर्ल्ड कप कैंपेन दमदार तरीके से शुरू करने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन। मैदान में टीम यूएसए शुरू से ही पैराग्वे पर टूट पड़े और फाइनल स्कोर यूएसए 4-1।
0: और न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में रोमांच अपने चरम पर होने वाला है। ग्रुप सी में पहला बड़ा मुकाबला दो मजबूत टीमों के बीच खेला जाएगा। 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील का सामना मोरक्को से होगा, जिसने कतर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक जगह बनाई थी। ये मुकाबला कल रविवार 14 जून को सुबह 2 बजे से एमबीसी पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। देश विदेश की खबरों के बारे में अब मौसम का हाल सुनते हैं। पूर्व की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान आज रात आसमान साफ रहेगा, लेकिन देश के पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर रह रहकर वर्षा हो सकती है और कल दिन के दौरान भी बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। वैसे आज सूर्यास्त शाम के 5:37 पर हुआ और कल सूर्योदय 6:42 पर होगा।

0: तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए. इसे आप तक पहुंचाने में हमें यजुर का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे. जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Branch Road, New Grove में Branch Road, New Grove में 77 साल की 77 years old की श्रीमती आमिका देवी संपत जो आमिक नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके बेटे श्री शाकिल संपत के घर ब्रांच रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एक होपयोग की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टुमरो एट 2 PM. ऋषि दयानंद रोज भॉय में 65 years old की श्रीमती गीता रत्नू पैदाइश नाम गनु और जो अनीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के बारह बजे उनके बेटे श्री गणेश रत्न के घर ऋषि दयानंद रोज भॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लन मान्यों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमरो एट नून. लिजाली बांबू मोंटाई ओरी मोका में 69 years old के श्री देवेंद्रनाथ जरी जो देवेंद्रनाथ नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु होगी.

0: गेहूं के अर्थी कल दिन के दो बजे कल दिन के दो बजे उनके घर ले जाले बांबू मोटाई ओरी मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सेंट पियर के श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। रॉय रोड मालेंगा सेंट पियर में रॉय रोड मालेंगा सेंट पियर में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदीश ग्रुदयाल जो सुनील नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10:30 बजे कल दिन के 10:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती मालिनी ग्रुदयाल के घर रॉयल रोड मालेंगा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। ब्लॉक C7 सिटी रामफो कॉम्बेटो ब्रिटानिया में सत्तर साल की की श्रीमती चंद्रमणि बुझावन पैदाइशी नाम बिहारी और जो दादी ला कौचिन अमृता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर ब्लॉक C7 सिटी रामफो कॉम्बेटो ब्रिटानिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ताया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रॉयल रोड ब्रिजेवियाजिया में 91 साल के 91 ईयर्स ओल्ड के श्री देवनानंद राम किशुन जो देवनानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनके अर्थ कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती लीलावती राम किशुन के घर रॉयल रोड ब्रिजेवियाजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पों बोंजियो की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। केडन लेन फ्लोरियाल में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सोहिनी केडन पैदाइशी नाम जगरूप और जो ज्ञानती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी मंगलवार 16 जून को दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर केडन लेन फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिकागा की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे 16 जून एट 9:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: रविवार 14 जून को सुबह 9 से 12:30 बजे तक कांस्यादी रिविया जुपस्त ओम शक्ति काली माता मंदिर में काली पूजा होगी। रविवार 14 जून को बोनाकई आर्य समाज शाखा नंबर 33 में फ्लैक आर्य सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन द्वारा सत्यार्थ प्रकाश प्रवचन का आयोजन किया गया है सुबह 9:30 से 12:00 बजे तक। रविवार 14 जून को सुबह 8 बजे थ्रेबों काली माता मंदिर द्वारा श्री काली यात्रा और पूजा का आयोजन किया गया है। रविवार 14 जून को सुबह 9:30 बजे शुमे SSS लालूसी बिल्डिंग बेले रिवे सेश के श्री आदिपत्ति मारियामन परिवार वन देवी वनधम द्वारा महाकाली पूजा का आयोजन किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस रविवार 14 जून को लासोजीन आर्य समाज में सुबह 9:00 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
3: Radio Mauritius.
4: MBC Radio, 24 hours a day.
5: CB की तरफ से कुछ विज्ञप्तियां सुनिए। CB की तरफ से कुछ विज्ञप्तियां। क्यूपिप कोसिग्नी स्ट्रीट और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि शनिवार

13 जून 2026 को सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे के बीच में मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना पूर्व सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। और ये था कौन बिल है और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 14 जून 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 11:30 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना पूर्व सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। गांव महात्मा गांधी स्ट्रीट मोसलमा बुशो गजाधर रेजिडेंस और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 14 जून 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। इस असुविधा के लिए सीईबी क्षमा प्रार्थी है।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी श्रोताओं को अनीता का करजोड़ नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस से जुड़े हुए हैं, जहां आप सुन पा रहे हैं भजली प्रभु का नाम कार्यक्रम। भक्तों, अतीत को पकड़कर बैठना मनुष्य को कमज़ोर बना देता है। जो बीत गया है वह केवल एक सीख है, उसे बोझ बनाकर मत ढो। ज्ञानी वही है जो हर नए दिन को एक नए अवसर की भांति स्वीकार करता है। तो आइए इसी सुविचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तों, जीवन में धैर्य एक उच्चतम गुण है। धैर्य रखो, शांत रहो, क्योंकि जब आपके कर्म सच्चे होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। हाँ, राह अवश्य लंबी लग सकती है, गंतव्य देर से दिख सकती है, किंतु जो आपके लिए सही है वह किसी भी हाल में आप तक पहुंच कर रहेगा। कभी कभी भगवान मात्र इतना परखना चाहते हैं कि क्या आप सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर बिना हिले डुले चल सकते हैं। समय भले ही कठिन हो, किंतु विश्वास रखिए, जो आपका है वह कभी किसी अन्य का नहीं हो सकता, और जो किसी और का है वह आपके पास टिक नहीं सकता। इसलिए व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, मात्र अपने कर्म को पवित्र रखेगा।

प्रियजन, जब सोच में परिवर्तन आएगा तभी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बना लेता है वह हर परिस्थिति को अवसर में बदल देता है। कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, किंतु अंतर इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे देखें। यदि मन में विश्वास हो तथा दृष्टिकोण में आशा हो तो कोई अंधेरा अधिक देर टिक नहीं सकता है। स्मरण रहे, परिवर्तन सदैव अंदर से शुरू होता है। अतः अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, कर्म को स्वच्छ रखें और देखें कि किस भांति जीवन में प्रकाश फैलता है।

0: श्रोताओं, संत गुरु का कहना है कि जिस दिन आप मन को शांत करना सीख लेते हैं, उस दिन जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। संसार की परेशानियां उतनी नहीं होती जितनी हम अपने मन में बना लेते हैं। सोच को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है।
1: मेरी चादर ओढ़ के

भक्तगण, कभी यह मत सोचो कि आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास आपका समय है, आपकी मेहनत है और सबसे बड़ी बात आपका विश्वास आपके पास है। जिसने इन तीन वस्तुओं का सही उपयोग कर लिया वह खाली हाथ होकर भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो है उन्हीं से शुरुआत कीजिए।

के हवाले से कुछ समात फरमाइए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा में से जो बीमार हो जाता, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते। मरीज़ की आयादत के लिए कोई दिन मुकर्रर करना आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा में से नहीं था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात तमाम औक़ात में हसब ज़रूरत मरीज़ों की आयादत फरमाते।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। भाई यूसुफ ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का।
3: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का। रात के 9:02 हो गए बाटे। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के तहे दिल से स्वागत करत है। आप सब कोई बस मजे में हवा नहाइए आशा करब जा। और अभी से ले के रात के 11 बजे ले आप सब कोई के साथ है देवब जा बढ़िया बढ़िया भोजपुरी संगीत जे रही तोहार पसीन के। चला श्रोता लोगन आज तो सामदी के रात है और सामदी के रात तो बहुत ही मजेदार रात रहेला। काहे के बहुत कोई लोग अपन परिवार संगे एगो बढ़िया समय बितावेला।

0: तो चला आज के बढ़िया समय के संगे संगे बढ़िया बढ़िया गीत भी सुनब जा और बढ़िया चुटकुला तोहर खातिर लेके आल है। तो चला बढ़िया गीत सुने खातिर कौन सी करे के चाहिला जानत हो तू 4028085 पर तू हमने के टेलीफोन करे सकब अपन पसंदीदा गीत के तू फरमाइश करे सकब और जे काम पर हवा या पोताप से मिसाज विदा करे खोजत हवा तो 5251700 सेकंड दे सकते हैं स्वासन जी 05 पर तू हमने के टेलीफोन करे सकब मिसाज विदा करे सकब टेलीफोन नहीं करिया। और चला आज के बढ़िया कार्यक्रम के शुरुआत करे खातिर एगो बढ़िया गीत लेके आल है और है जोन गीत है बहुत मजेदार गीत है। गीत है अविनाश रामदेन के आवाज में और साथ दिले हवन रेखा कुंजल और अमृता विशेषर। तो चला है गीत खूब जलीबा और है जोन गीत है आज के पहला गीत भोजपुरी के रंग एल्बम से लेवल गए। तो चला करब जा एगो बढ़िया गर्मा गर्म शुरुआत।
1: बाबू के जन्म होल बाहो थारिया बजावा

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का बस बहुते मजेदार कार्यक्रम और इस हाइक कार्यक्रम के जस्ती मजेदार बनावे खातिन जितना तू मेहनत करे लन से और खोज खोज के आने लन से संगीत बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया बढ़िया गीत के संगे हाई कार्यक्रम के चार चांद लग जाला। तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिन जलसा कोको आज के जन हाई अगला गीत है। हाई गीत के मांग करा था वन बेनी प्रसाद परिवार की ओर से। विजय बेनी प्रसाद हमनी के संगे जुड़ गल हवन शामनी के दूली परिवार और मोहताबाद से उनकर खास संगतिया हवन शास्त्री बुनवाली उनकर खातिन हाई बढ़िया गीत किशोर खीमिया की आवाज में रखल बहुत मजेदार गीत और हाई बढ़िया बढ़िया गीत संगे हईजा पर सुनीता जी भी हमनी के साथ देवत हवन गांव गोप बगल से। साथ हवन उनकर बहिन विमला कोंगोमा से और गुडलैंड से हवन अमृता जी और गांव गोप से ही साथ देवत हवन वीना जी। तो चला प्यार से साथ देते रहिए जा बहुत मजेदार कार्यक्रम चला था। और जे तरह मन बा कोनो गीत सुने के तो हाली उठावो अपन टेलीफोन 4028085 पर हमने के टेलीफोन करिया और अपन पसंदीदा गीत के तू मांग करे सकबत। चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जा किशोर खीमिया के हई गीत के साथ और चाचा चाची के किस्सा कौन दिन चाचा बोले चाची के हाई कौन ची उठा के अन दे लग तू तो चाचा चाची बोले कौन ची होल कौन ची बोला था वो बोले हाई तोरा बोक्से आने के बोले रही हमर खातिन हमर सब बोक्से वा फाट गल बा तो बोक्से तू आन दे ले हवा तो इतना हाई का कौन ची कले बोले हाँ तो प्रमोशन में रहल 12 उठा के आन देली हाई चली ना एक बरिस पूरा चल जाए बोले हाय तो ठीक है पर बोक्से तू आन देले हवा इतना एक गो रंग के 12 के करेला ऐसे तो बोले हाँ प्रमोशन में रहल हो तो प्रमोशन में किन देली बोले हाय सब तो ठीक है कोई देखी तो कौन सी बोली हाई आदमी बोक्से सांस ही नहीं करता बोले के देखी तोरा बोक्सिया में तो हम ही हाई तोरा देखे खातिर को और कौन देखा था तोरा बोक्सिया में बोला था

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 11 बजे ले चलिए। अभी तक 9:16 हो गल बा और मजेदार आज के गमट को चल गमट तो शुरू हो गल बा और हईजा पर गीता जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन। गीता बा इन अल्फोंस से साथ देवत हवन और उनकर पूरा परिवार सब परिवार संगे हवन। बेटा शिवाजी, पतो हवन श्वेता बाई, बेटी हवन सुधा बाई, दूगो प्यारी नातिन बिजबी बाई, दिया बाई और छोटा सन मल्हार। और इस संगे संगे आज तक उनकर आजी खातिन आजी लागन खातिन चलाओ अब जाएगो बढ़िया गीत मौसी जी खातिन सेता के हवन। तो चला मौसी जी तोरा बहुत बहुत प्रणाम और आज के कार्यक्रम में बस हई गीत जो है राधा।

0: के शोभेला है गीत तो बहुत खुशी हव सुने के तो जरूर है गीत चलाओ अब जा तोहर खातिर तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा औरी खुशियाली के संगे का बोलब रात के सोते सोते सुतले सुतले चाची एक कुछ चचा के हाथ मार के उठैलक अरे चचा के बोले हाय सुना ना हमनी के एगो सवाल आवता मन में बोले अभी रात के 2 बजे के सवाल आवता तोहर मन में बोले एगो सवाल है ये हा कि एक के बार में मरे के अच्छा हा कि तड़प तड़प के मरे के बोले नहीं तड़प तड़प के मरे के अच्छा नहीं है एक के बार में मरे के अच्छा हा तो बोला हाँ रख दा दूसर गोड़वा हमरी पे एक एगो गोड़ मार के हमनी के एगो तड़प तड़प के मारे पे मजबूर कर देले हुआ रख दा दूसर गोड़ हमर पेट पे तो मर जाब निमन से
1: राधा के शोभेला भर

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखते हैं। हैजाबर भाई अबू हमनी के संगे जुड़ गल हवन वाकवा बगल से और उनकर बेगम हवना फेज साथ देवत हवन असलम आया जायान जहीरा रईस काला छोटी आपी और उनकर पत्नी और उनकर सब परिवार संगे आज के कार्यक्रम में उभाग लेवत हवन और धोती पोथी पगड़ी विक्रम कोलाचन के आवाज में रखल हई गीत चाचा के बहुत भाई अबू के बहुत खुशी रहेलन हई गीत सुने के। तो चल हई गीत चलावब जा तोहर खातिन और चाचा के का बोलब जा जब देखा तब ऐसा ऐसा बतवा बोल देवेला हमर चाची के दिल दुखा देवेला हो। कौन दिन चाची के बोले तू तू हमनी के बहुत साथ देले हवा तू हमनी के दुख में जब से शादी कले है तब से हमनी के जीवन में जितना दुख आल बा सब दुख में तू हमनी के संगे खड़ा हवा हमनी के साथ दे देले हवा। तो चाची तो ऐसे शर्मा के ओकर गाल तो ऐसे लाल हो गल बोले इतना बरिस के बाद चाचा ओकर बढ़ावा करता इतना और थोड़ा देर के बाद चाचा बोले हाँ बुझाता जैसे जब से शादी कर ले हैं तू दुख में साथ तो देवत हवा पर ऐसा बुझाता जैसे तू ही पनौती हवा।

0: भोजपुरी तड़का
1: 9:34 हो गए। देखला हाली समय कैसे बीतता। और जब समय अच्छा रहेला ना तब बहुत हाली जाला। चलो मजेदार कार्यक्रम संगे तू हमनी के साथ देवत हवा इतना प्यार से। औरी का चाहिला हो, हंसते रह, मुस्कुराते रह, जिंदगी बहुत जोली है। और हैजा पर हमनी के प्यारी मानती जी हमनी के संगे जुड़ गल हवा नोएल फॉन्स बगल से। उनकर बहिन लोग आनंदी आरती औरी उनकर कुजिन चिंता। चला आज उनकर प्यारी पतो उर्वशी के जन्मदिन है। और जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई देवत हवन उनकर ससुर जी आनंद और पुपू सास मानती की ओर से। और खास कर उनकर पति उनकर बूढ़ा हवन निवेश। साथ हवन रानीश, अनुषा, मितिशा, गिरीशा, हितांशु, दूगो प्यारा बेटा भव्य और पुष्कल। तो चला हमारा टीम बगल से तोहरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई उर्वशी। जन्मदिन खुशियाली के संगे मनैया। और हमेशा जीवन में बस सदा सुखी रहिया। और हमेशा स्वस्थ रहिया। तो चला आज के कार्यक्रम के संगे संगे हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब स। औरी चाची चचा के बोले कौन दिन अहो सुनत हवा हो। काल हरदी में गल रली तो हाउ गोरा छोकरी के तू देखले रल, उज्जर छोकरी के। तो चचा बोले के जे लाल साड़ी पहन रहल। बोले नहीं हो कर सामने जोन ठड़ा रहल। तो चचा बोले हाँ कौन जोन करिया साड़ी और ऐसन ऐसन पिट्ठी उघाड़ के जोन चोली पहन रहल। बोले नहीं हो कर बगल में खड़ा रहलन उ पोताप से रील बनावत रहलन, सब कोई के फोटो निकालत रहलन। बोले हाँ देखले रहली ओकर हौजन पियर का सड़िया पहनले रहलन, बड़ा बड़ा कान में झुमका रहलन और हाथ में लाल पीला रंग के उ कंगन डले रहलन। और कितना जोली से सब कोई के फोटो निकालत रहलन, हमरो भी फोटो निकलन और उ तो एक्ट्रेस नियर लगल रहलन। बोले हाँ आउरी बोलता आउरी बोलता। बोले हाँ अगर चोली में ऐसा जोली जोली फूल के डिजाइन रहल, हम देखले रहली बहुत अच्छा लगत रहलन। बोले हाँ बुढ़ा हमनी के बोलता काल कौन कुलिया के साड़ी हम पहनले रहली। चाचा बोले अरे तो हरियर पहनले रहलन ना। नहीं नहीं नहीं हाउ हाउ बिलू बिलू कुलियर के पहनले रहलन। बोले नहीं नहीं अजी आउ। बोले हाँ दूसर छोकरी लोग कौन कान में जानो दिले हवन, कौन कलिते के साड़ी पहनले, कौन कलिते के चोली पहनले हवा है सब तू देखा था है। हमार साड़ी तोरा याद नहीं बा कौन कलर के साड़ी हम पहनले रली। देखा चचा लोग जितना कोई सुनत हवन याद रखे तोहर बुढ़िया कौन कुलिया के साड़ी पहनता।

भोजपुरी तड़का। नौ बजकर 41 मिनट आउरी मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई साथ देवत हवन बहुत बहुत प्यार से धन्यवाद सब कोई के बस ऐसे ने जुड़ल रही है आउरी छोटी हमनी के संगे जुड़ गल हवन पोन लाओ जैसे और पोन लाओ जैसे वो हमर खातिर एगो हमनी के भूले बिजमावती संपत के आवाज में रखल है गीत वा तू तनी चला द मांग के सिंदूरवा बहुत जोली लगेला ओकरा है गीत और है गीत दीदी ललिता खातिन भाई आत्माराम हरीश भैया खातिन जे बोबा से हमेशा हमनी के साथ देवेलन और सुभाष बुलक का थो बोन से हमनी के साथ देते रहेलन और चला हईजा पर सुदेवी जी वाकवा से हमनी के हमेशा बहुत प्यार से साथ देवेलन और हमेशा मिसाज विदा करेलन बहुत बहुत धन्यवाद सुदेवी जी तो हर मिसाज हमेशा हर घड़ी हमनी के पहुंच जाला त चला है ये गीत करब जा दीदी ललिता खातिन कुशल परिवार से हवन त्रियोले से और आत्माराम भैया खातिन दीदी सुनीता शोभा देवी नामालेंगा के हवन राम रतन राम गुलाम और कुआरू परिवार और बोलत हवन कि कोनो भी गीत हमर खातिन प्यार से चला दो जरूर हो काहे न और बहुत बहुत मजेदार कार्यक्रम संगे तू साथ देवत हवा है ये बहुत बड़का बात है और चाची के का बोलब चाची के कौन दिन एगो टेलीफोन चला और उ तब फूट फूट के रोवे के शुरू कर देलक त चाचा बोले कौन ची होल बोले हाँ हमर माँ टेलीफोन कले रलन त बोले हाँ कौन ची बोलन बोले हमर माँ हमनी के बोले तू त काम चोर हवा कोढ़िया हवा बोले के रहल तोहर माँ रहल कि हमर माँ रहल बोले नहीं हमर माँ रहल हमर माँ हमनी के बोल देलक हम कोड़िया हई हम काम चोर हई कुछो काम नहीं करीला बोले कैसे वो बोल देलक तोरा काम चोर हो।

ऐसे कैसे तोरा बोल देलग, तू तो एक काम बोल अब तू तो तीन चार गो काम निमन से संगे संगे करेल। अब देखा हम तोरा एगो निमन उदाहरण देला, तोरा जब बोलब जा कि चाह बना के आन तो पहला तो तू मुंह बनेब और फिर तीन चार गो बतवा बनेब, तब जाके तोरा मूड रही तोरा मन करी तब जाके तू चाह बनावेला हो रानी। काहे तोहर माँ ऐसे बोल देला कि तू कुछो काम नहीं करत हवा।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चलाता नहीं हाली हाली बती आप सब काहे के अभी थोड़ा घड़ी में 10 बजा था और जितना कोई रात के काम करत हवन बस मजे से काम करते रहिए, हंसते हंसते लोटपोट होते होते काम करते रहिए और अगला गीत जो चाची ललिता खातिन चलाओ।

ललिता जी हमनी के संगे प्यार से जुड़ल हवन त्रियोले से और सब कुशल परिवार संगे जुड़गल हवन। अपन बहिन सुदेवी संगे हवन देवीना ज्ञानी सुखलाल मौसी मालाराम जियावन भाई आत्माराम हरीश भैया और दादी प्रभावती और खासकर छोटी खातिन लागी ना ही छूटे राम और हई ये गीत करब जा गायत्री जी खातिन भी ऊ भी बहुत खुशी रहेलन हई गीत सुने के। बेटा आ जाए मामी कल्याणी मोहन और उनकर भौजी हवन शकुंतला मोताइलोंग से और साथ देवत हवन उनकर खास सखी गीता बार ये गीत करब जा श्यामा जी खातिन श्यामा रघुनंदन वो भी बहुत खुशी रहेलन लागी ना ही छूटे राम हई गीत सुने के। तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और विजय बंधन भी हई गीत के बहुत खुशी रहेलन। तो चला लता मंगेशकर और तलत महमूद के आवाज़ में रखल हई गीत सुनब जा।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला बिना कार्त के बंतार करे के बहुत लोग बहुत खुशी हवन हैजा पर पंडित राज वर्मा जी हमनी के संगे जुड़ गेल हवन। अभिमन्यु हरिपाल के आवाज में रखल है गीत, वो बहुत खुशी रहेलन सुने के और है गीत खास कर उनकर खातिर जे बहुत बंतार करेलन स और 20 में घूमे खुशी रहेलन स चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा। और का बोलब जा बढ़िया बढ़िया चाचा जी हमनी के कौन दिन बहुत ज्ञान के बात झाड़े ल

सा चचा जी और चचा जी हमने के बोले जाना था वह 50 बरिस के बाद, 50 बरिस के बाद तो हर बार कारा रही करिया करिया बिल्कुल करिया ओकर एगो राज के बात तो अब बतावत है। हम बोलनी हाँ चचा सब कोई खुशी रही सुने के, बोलो ना कैसे कैसे है बरवा कारा कैसे रहेला काला और कैसे 50 बरिस के बाद काला कैसे रही। बोले हाँ देखा रोज फजीरे उठ के तू आधा घंटा चलिए पैदल चले के और रोज 20 मिनट अपन कपार पे ठड़ा रहे के शीर्षासन करे के योगासन करे के आधा घंटा योगासन करिए और संगे संगे जानत हवा हाउ हरियर सब्जी खाए के भा भाजी बहुत नीमन से पका के खाए के फल खाए के और ताजा ताजा सब्जी खाए के और हर 15 दिन पे हाँ चचा 15 दिन पे कौन चीज 15 दिन पे नहीं भूलैया कौन सी करे के चाहिला चाचा बोला 15 दिन के बाद अपन कलर कर लिया अपन कपार पे तनी डाई लगा लिया तो हर बार हमेशा करिया रही। का हो चाचा इतना मेहनत करके जे कलर ही करे के रहल तो इतना मेहनत के करी।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का तड़का
3: घड़ी मिला ले जा अभी रात के 10 बजकर बातें और रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के जितना कोई श्रोता लोगन हमने के साथ देवत हवन एक बार फेरों से आप सब कोई के स्वागत करा था माइक पर। आप सब कोई के साथ देवत हवन रत्ना प्यार से साथ देते रहिए जा रात के 11 बजे ले मजेदार कार्यक्रम और बढ़िया बढ़िया गीत जे तू हमने खातिर ढूंढ ढूंढ के अनले हवा और हम कोशिश करा था तोहर खातिन चलावे खे तरह तोहर खातिन एगो बढ़िया और कबो कबो ऐसा हो जाला कि हमर परिवार में कबो एगो एगो लानिवेश्य रही एगो जन्मदिन के अवसर रही एगो शादी रही और तू खुशी करे खोजत हवा तोहर परिवार लोग के त जरूर हमने के कार्यक्रम में भाग लिया 4028085 और अपन परिवार के नाम अपन परिवार खातिर एगो बढ़िया गीत के मांग करब बहुत खुशहाली हो जाइब हो जाला। और ही चला अगला गीत आज के कार्यक्रम के जारी रखब जा और हईजा पर हमने के चाची शांता सुका की साथ देवत हवन से जमिल फोरेसाइट से और उनकर पतो हवन किरण बेटा सुदेश अशोक हाविन सुजीत और संगे हवन उनकर नाती फावेश और नातिन संजना औरी अशोक भैया के जन्मदिन रहल 8 तारीख पे तो चला अशोक भैया तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलब जा। और साथ ही साथ चाची शांता सुकागी हमनी के बोले उनकर भगीना संजय अर्चन के जन्मदिन रहल 60 बरिस के होगल चला 60 बरिस के तू होगल हवा और बहुत खुशहाली के मौका बा तो हमर टीम देने से तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई बस हमेशा खुश रहिए अपन परिवार के प्यार उनकर कैसे बोलब जा उनकर साथ हमेशा तोरा मिलते रही और हमेशा तू खुशहाली के साथ अपन जीवन लेके जाइब ऐसे ने आशा करब जा। और ही हंसते मुस्कुराते हम भी तोहरा हंसावे के हैजा पर पूरा कोशिश करत है और हमर चाचा और चाची के तक का बोलब जब देखा तब झगड़ा करते रहेला झगड़ा काटते रहेला और ही कौन दिन चाचा खीस में आके चाचा चाची से बोले चुप हो जाइया तो चाची भी खीस में आके बोले हम काहे चुप हो अब तू चुप हो या। और जे तू चुप नहीं होइब त हम भाई घर छोड़ के चल जाब हमर त जीवन तू हमनी के नरक बना देले हुआ हम त खुशहाली है हमर जीवन में कोनो खुशहाली नहीं बा हम त बहुत बहुत रंज हो गल है तोहर से घर छोड़ के चल जा। चाचा बोले खबरदार ऐसन गुस्सा के माहौल में तू काहे हमनी के ऐसन अच्छा अच्छा सपना दिखावत हुआ

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में और एगो जन्मदिन बा, और जन्मदिन बा शांति जी के और सभी शांतों की परिवार की ओर से। शांति जी तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बहुत बधाई, और खास कर तोहर संगतिया हवन राधा जी जिन वेलफॉन्स से तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बहुत बधाई देवत हवन। और संगे हवन गायत्री मामी, बेटा अजय और दादी प्रभावती खातिन है अगला गीत। चला हंसते मुस्कुराते बस साथ देते रहिए जा, औरी खुशियाली के संगे आगे बढ़ब जा। चाची कौन दिन नीमन से खाई के पकैलक, और जब चाचा के परोसे के रहल तो ओकर अगाड़ी चाची पूछे चाचा के कुछो खैलक, तो चाची के खिसिया खिस करे के तनी खेल करे के चाचा बोले कुछो खैलक, तो चाची बोले देखो हम फेरा से पूछा था कुछ खैलक, तो चाचा बोले देखो हम फेरो से पूछा था कुछ खैलक, तो चाची बोले हमर नकल करत हवा हो, तो चाचा फेरो से बोले हमर नकल करत हवा हो, तो चाची बोले चल तनी शॉपिंग जाब, तो चाचा बोले नहीं खैले हई हाँ।

0: भोजपुरी तड़का
1: 10:15 होवता औरी चला है जा पर पीतों से हमनी के संगे जुड़ गल हवन अमृता गणेश और उनकर दूगो नातिन हवन परी और सुनिया बेटा विशन और पतो हवन मीनाक्षी और उनकर सब गणेश परिवार खातिन एक बार फेरों से सुनीता नन को के आवाज में रखल चमेली चमेली के है गीत के मांग करत हवन। और चचा कौन दिन चाची के बोले तू तो नेगेटिव हव तो चाची तो सुरुए हो गल बोले हाँ हम नेगेटिव हैं तू कैसे हवा तू तो बूढ़ा हवा जिद्दी हवा घमंडी हवा एक नंबर के कोड़िया आदमी हवा कंजूस आदमी हवा कबो हमर कदर नहीं करले हवा हमर परिवार के जब देखा तब तू बुराई करते रहेला जब देखा तब अपन संगतिया संगे घूमते रहेला हमर कबो तू कदर नहीं करले हवा। तो चाचा बोले अरे बुढ़िया मुंह बंद कर तोहरा बोलत है तोहर कोविड के जो 3 साल बा ऊ नेगेटिव है तू तो हमनी के इतना बात सुना दिलक तू नारिये के

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला आगे बढ़ब सा और 10:20 हो गल बा और अगला गीत जो है फटफटवा पर घुमावब सा तोरा कुणाल बाबूलाल के आवाज में रखल अगला गीत के मांग करत हवन महन जी पालमा से हमनी के साथ देवत हवन और उनकर खास दीदी मान खातिन है ये गीत और जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन चला गमट के कार्यक्रम है साथ देते रहिए जा और चचा गजोधर के का बोलब हो चचा गजोधर कौन दिन गल रहल वाक्से कराए खातिर और सांझ ले तो ओकर जो नाक फुला गल हाथ गोड़ में तो प्लास्टर लगा दिलक हाँ हो प्लाक चलाल तो गजोधर भैया के जो संगतिया हम मनोहर भैया बोले का होल वाक्से के तोरा कोनो कोनो ऐसा साइड इफेक्ट होल बाका बोले नहीं हो हम तो जब वैक्सीन लगा के अइनी तो तोहर भौजी से हम बोलनी कि हाउ जो नर्स रहल वो बहुत जोली रहल तो हमनी के ऐसे पीट पीट दिलक कि हमनी के प्लाक पड़ल डाले

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:26 और सब कोई हंसता है। जहाँ पर हमनी के संगे संगे गीता जी भी मोताइलोंग से हमनी के टेलीफोने करके हाइये बोला था, बहुत लोट पोट होके हंसत हवन, हंसते रहा है ये जीवन है। और चला है जहाँ पर विजय बंधन जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन, क्लावेद से पत्नी रेखा चंदनी बिंदु कुमारी और उनकर तीन गो बहन संगे संगे हवन, उनकर सब कोई संगतिया जितना परिवार संगे हवन, सब कोई खातिन चलाओ। अब जा अगला गीत है, एक बार फिर उसे सुनीत अन्नकू के आवाज में रखल, और है जोन गीत है बहुत मजेदार गीत है, और चिरई बोले चुक चुक है जोन गीत हवन। चला हाई गीत जितना कोई हमनी के साथ देवत हवन बहुत प्यार से। और साथ देते रहिए जहाजा पर हमनी के विश्वानी जी साथ देवत हवन। विश्वानी जी हाई गीत के मांग कर ले हवन, उनकर बहिन इंदिरा, शारदा सहेली हवन, नीला और प्रतिभा साथ देवत हवन, शोभा और गीता के जादर और ही चचा गजोदर चाची के बोले हाँ रामायण देखले हुआ, रामायण सुनले हुआ, रामायण में एको पात्र रहल बाली जाने ल न। हाँ बोले हाँ काहे बोला था, बोले नहीं बाली के एगो वरदान मिलल रहल कि जैसे कोई ओकर सामने ओकर अगाड़ी खड़ा हो जाए तो ओकर जितना शक्ति रही बाली के शरीर में चल जाए।

हाँ तो हमनी के काहे बतावत हवा। बोले नहीं हमनी के भी जाना था, ऐसने बुझाता। बोले कौन सी बुझाता? बोले जैसे तू हमर सामने चलावेला ना, हमनी के हमर हम हमनी के कपार घूमे लगेला। बोले तो काहे? बोले हमनी के भी लगता जैसे तू हमर सब जितना शक्ति हवन हमर शरीर में वो सब खींच ले वेला। बोले कोनो काम नहीं हा, तोहर शक्ति हम खींचब, हमनी के चाहिला तोहर शक्ति।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखत है। अगला गीत जन है सुना नयन के आवाज में रखल और है गीत करब जा साजिद जी खातिर ना रोज हिल से साथ देवत हवन और दीना सरोवर उनकर खास दोस्त खातिर है ये गीत दुनिया गोल बा। और चला है जा पर बेलगोज से हमनी के संगीत जुड़ गल हवन प्रभा दसोई और साथ हवन उनकर जितना लालुईस मंदिर के सब सदस्य खातिर अगला गीत के मांग करत हवन और काल सब कोई साथ मिलके कांजी मनयन जा। तो चला बहुत बहुत शुभकामना देवत हैं तोरा और हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा। और सुना नोयन के हाई गीत के संगे संगे चचा और चाची के किस्सा कैसे बोलब चाची हमनी के बोले चाची चचा के सुनावत रहलन कि पड़ोसन गुजर गल तो चचा बोले हाय कैसे गुजर गल तो चाची बोले हाँ दाल के भाव तनी जस्ती बढ़ गल बा ना दाल महंगा हो गल बा हवे से मर गल तो चचा बोले पगला गल हवा का दलवा के भाव तनी लाहो चल जाए ता कोई आदमी मरेला बोले हम झूठ नहीं बोला था डॉक्टर के हाइजन सर्टिफिका मिलल रहल ओकरा डेथ सर्टिफिकेट हवे में लिखल रहल बोले का लिखल रहल बोले हम अपन आँख से देखले रही बोले का देखले रहल बोले डेथ ड्यू टू हाई पल्स रेट हवे से गुजर गल बोले बुढ़बक अंग्रेजी नहीं आवेला सलमा हाई हाई सब बतवा कहाँ से तू कपार में ढुकावेले बोले पल्स रेट यानी ओकर धड़कन बढ़ गल हवे से वो गुजर गल का हो

चाचा गजोदर के भी हमेशा पोल खुल जाला और चारों बगल दुनिया दुनिया गोलवे बात चला। आगे बढ़ब सब बहुत मजेदार गीत के कार्यक्रम आगे बढ़ावा था। अभी 10:40 हो गल बा और रतन हमनी के संगे जुड़ गल हवन खो बे बगल से रतन भैया खातिन और हवन करुणा जी उनकर पत्नी और उनकर सब परिवार खातिन चलाओ अब जा

ठंडा के मौसम में गर्मा गर्म दाल औरी ऐसन खाई के आहा पेट भर जाला। बहुत बहुत मजेदार गीत के संगे चला आगे बढ़त है विनोद सिद्धत के आवाज में रखा लगला गीत। कौन चिले के आल हवा कौन चिले के जाइबा गीत भाई आत्मा राम की ओर से चलावत है बेलिया से उषा देवत हवन उनकर चार गो बहिन दादी प्रभावती संगे हवन दीदी छोटी दीदी ललिता और सुदेवी खातिन और विष्णु परिवार जे बेलिया से हमनी के संगे जोड़ल बा।

बहुत बढ़िया गीत और स्वर्गीय विनोद सिद्धत की आवाज में रखल हई गीत और एकर संगे चला आगे बढ़ब सर संतोष महादेव के आवाज में रखल अगला गीत और हई जोन गीत हमर मीट में चढ़ल बा गरम पानी हई गीत के मांग करत हमर अनिता जी फ्लिक ऑन फ्लाक से बहुत मजेदार गीत और चला थोड़ा घड़ी रह गल बा 11 बजे के त हाली से चलाओ अब जा हई अगला गीत

कहूँ मरमिट में गरम पानी चढ़ल बा तो कहूँ चटनी बनावता कोई, और हैजा पर अवेदानंद बीजन के आवाज में रखा लगला गीत के मांग करत हवन उमा जी फूजू साक से। और है गीत जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन, जितना सुनत हवन श्रोता लोगन सब कोई खातिन। चलो सेंशुलिया विला से नीता खेदनी जी भी हमनी के संगीत जुड़ गल हवन। वैसे चाची नीता तू एगो गीत के मांग कर ले हवन, तो कोशिश करब जा अगला कार्यक्रम में है तोहर पसंद के गीत चलावे खातिन, काहे कि अभी समय बहुत कमती रह गल बा और तोहर खेदनी परिवार खातिन है ये गीत करब जा। पर श्यामा रघुनंदन जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन गांव गोब से, उनकर सब रघुनंदन परिवार के साथ।

0: चला इसी के साथ आज के कार्यक्रम के हिजा पर समाप्त करेंगे। समय हो गलबाज शो भाजी का खुबोन से हमनी के साथ दिव्य धवन और उनकर प्यारी नातिन वर्षा के जन्मदिन है। उनकर मामा, उनकर पापा प्रदीप और बहन नेहा के ओर से बहुत बहुत प्यार वर्षा के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई वर्षा तोहरा, और बस खुश रहिए। और आज के है आखिरी गीत तोहर खातिन कर अब जा हैप्पी बर्थडे एक बार फिर उसे हमर टीम देने से, जितना कोई आज जन्मदिन मना हुआ था वन उन सब कोई खातिन हमर टीम देने से हैप्पी बर्थडे बोल अब जा। और फिर उसे आज के कार्यक्रम के बस हैजा पर समाप्त करे के समय हो गल बा।
1: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर
0: चला इसी के साथ जाए के बेरा होगल बा। आप सब कोई अपन ख्याल रखिया और आवत सामदी के फेरों से भेट आप सा हाइजे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर रात के 9 बजे से 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, जहां पर बढ़िया बढ़िया गीत बढ़िया बढ़िया चुटकुला सुनाओ अब जा आप सब कोई के मनोरंजन करे खाते। चला इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि, नमस्कार।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। प्रणाम श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल हैं और हमारा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह सुनहरे पल कार्यक्रम। तो आइए, देर न करते हुए आज एक ऐसे महान कलाकार के बारे में हम बात करेंगे। वैसे भी एक निर्माता, निर्देशक, फिल्म मेकर जैसे कहते हैं, फिल्म बनाने वाले इंडियन सिनेमा में मशहूर आप रहे प्रसिद्ध लेखक नासिर हुसैन। नाम तो सुना ही होगा आपने, तो साथ निभाते रहिएगा। उनके जीवन, उनके फिल्मों के बारे में आपको और भी बताते चलेंगे।

जी हाँ, जैसे कि हमने कहा, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक नासिर हुसैन का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने बॉलीवुड को सिर्फ सफल फिल्में नहीं दी, बल्कि एक नई सोच, नई कहानियों और मनोरंजन का एक अलग अंदाज भी दिया। उनका जन्म 16 नवंबर 1926 को भोपाल में हुआ था और उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत एक लेखक के रूप में की थी। बाद में वे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बने और हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्मकारों में शुमार हुए।

नाज़िर हुसैन को अक्सर म्यूजिकल एंटरटेनर सिनेमा का बादशाह कहा जाता है। उनकी फिल्मों में रोमांस, दोस्ती, परिवार, संगीत, हास्य और रोमांच का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। उन्होंने 1957 में फिल्म तुम सा नहीं देखा से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म ने शम्मी कपूर के करियर को एक नई पहचान दी और नाज़िर हुसैन को एक प्रतिभाशाली डायरेक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद दिल दिखे देखो, जब प्यार किसी से होता है और फिर वही दिल लाया हूँ जैसे सफल फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

नाजिर हुसैन की फिल्मों की एक विशेष पहचान उनका मधुर संगीत था। उन्होंने कई बार प्रसिद्ध संगीतकार आर डी बर्मन के साथ काम किया और दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड को अनेक अमर गीत दिए। तीसरी मंजिल, कारवान, हम किसी से कम नहीं के गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसते हैं। साल 1973 में आई उनकी फिल्म यादों की बारात को हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक माना जाता है। कई फिल्म विश्लेषक इसे पहली सफल मसाला फिल्म मानते हैं जिसने एक्शन, रोमांस, ड्रामा और म्यूजिक को एक साथ जोड़कर एक नई परंपरा शुरू की। इस फिल्म के साथ और कहानी ने दर्शकों को दीवाना बना दिया और ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में अमर हो गई।

नाजिर हुसैन की एक और बड़ी उपलब्धि थी नए कलाकारों को मौका देना। उन्होंने अपने परिवार और फिल्म जगत के कई युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने बेटे मंसूर खान के साथ मिलकर कयामत से कयामत तक और जो जीता वही सिकंदर जैसे यादगार फिल्मों का निर्माण किया। इन फिल्मों ने 1980s और 1990s के दशक में रोमांटिक सिनेमा को एक नई दिशा दी और आमिर खान को भी सुपरस्टार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गाइए ना। दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

0: एक बार और।
1: दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा।

पुरस्कार की बात करें तो नाजिर हुसैन को उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। कयामत से कयामत तक के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीनप्ले अवार्ड मिला। जो जीता वही सिकंदर को भी बेस्ट फिल्म का फिल्मफेयर अवार्ड प्राप्त हुआ। साथ ही उन्हें स्पेशल फिल्म अवार्ड और बाद में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी नवाजा गया।

नाजिर हुसैन की सबसे बड़ी विरासत उनकी फिल्मों का सदाबहार मनोरंजन है। उनकी फिल्मों में गीत, संगीत, प्यार, जज्बात और जीवन की रंगीन तस्वीर नजर आती है। आज भी जब बॉलीवुड के सुनहरे दौर की बात होती है तो नाजिर हुसैन का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। उन्होंने हिंदी सिनेमा को सिर्फ हिट फिल्में ही नहीं दी बल्कि एक ऐसी फिल्मी परंपरा दी जो आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। 13 मार्च 2002 को मुंबई में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गीत और उनकी रचनात्मक सोच उन्हें सदा अमर बनाए रखेगी। हिंदी सिनेमा के इस महान शिल्पकार को हम हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करेंगे। प्रणाम, शुभ रात्रि।

सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। बेनवेनिडा अ मेक्सिको, वेलकम टू मेक्सिको। 2026 वर्ल्ड कप चल पड़ा रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी लेजेंडरी आस्तेका स्टेडियम में। मेक्सिको सिटी में चमक दमक और स्टार परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस मेक्सिको की फुटबॉल टीम की ओर से भी रही। ओपनिंग मैच में 2-0 की जीत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। अपने 80,000 प्लस फैंस को निराश नहीं किया टीम मेक्सिको ने। फर्स्ट हाफ में जुलियान क्विनोनिस का गोल, फिर सेकंड हाफ में राउल यिमेनेज का गोल। वर्ल्ड कप फाइनल्स में ये इसका पहला गोल है। इस मैच में 3 रेड कार्ड्स भी दिए गए, 2 साउथ अफ्रीका के लिए, 1 मेक्सिको के नाम। ब्राजील से रेफरी विल्टन सम्पायो पूरी शक्ति के साथ मैच ऑफिशिएट कर पाया, अपना काम किया। एक ही मैच में 3 रेड कार्ड, जबकि पिछले वर्ल्ड कप में कतर 2022 में टोटल 4 रेड कार्ड दिए गए थे। मतलब इस साल रेफरी से बचना होगा खिलाड़ियों को। राउल यिमेनेज अपनी टीम का हीरो बना। ये वही खिलाड़ी है जो 2020 में फुटबॉल मैदान में मर जाता फ्रैक्चर्ड स्कल के साथ। वुल्व्स का स्ट्राइकर वापस आया है, 6 साल बाद हीरो बना। इमोशनल घड़ी यिमेनेज के लिए जो अपनी आंसू नहीं रोक पाया। परफेक्ट स्टार्ट मेक्सिको के लिए जो अपने वर्ल्ड कप में बहुत दूर जाना चाहता है। आज 6 बजे से दूसरा मैच शुरू हुआ है साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच। अभी फर्स्ट हाफ पूरा हुआ है, स्कोर 0-0। आपको थोड़ी देर बाद पूरा मैच यानी फुल रिजल्ट देंगे। आज ग्रुप बी की बारी है, होस्ट कंट्री कनाडा वर्सेस बोस्निया हर्जेगोविना। मॉरिशन टाइम 11 बजे किक ऑफ, ये लाइव होगा एमबीसी टीवी पर। ग्रुप बी का दूसरा मैच कतर स्विट्जरलैंड, ये कल रात 11 बजे, और ब्राजील की एंट्री होगी संडे सुबह 2 बजे मोरक्को के खिलाफ। ये मैच भी एमबीसी टीवी पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। ग्रुप स्टेज के 17 मैच एमबीसी टीवी पर लाइव दिखाए जाएंगे और एमबीसी ऐप डाउनलोड करने पर और पेमेंट करने पर सभी मैच देख पाएंगे। इसके लिए एमबीसी में खास डेस्क है, फोन के द्वारा भी आप अपने मोबाइल लैपटॉप या टीवी पर सभी मैच देख पाएंगे एनबीसी ऐप के साथ। वर्ल्ड कप एक तरफ, ट्रांसफर बाजार में भी कारोबार होने लगा है। द स्पेशल वन योजे मोरिनो ऑफिशियली औपचारिक रूप से रियल मैड्रिड

0: मैनेजर बन गया है। 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट उसको वापस लाने के लिए रियल मैड्रिड को बेनफिका को 13 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग कॉम्पेंसेशन देने पड़ी। 2010 में वो आया था जोसे मोरिनो रियल मैड्रिड में, ला लीगा टाइटल, कोपा डेल रे और स्पैनिश सुपर कप जीत पाया। अब उसे लाया गया है रियल मैड्रिड में चैंपियंस लीग ट्रॉफी वापस लाने के लिए। सोमाली का रेफरी ओमा आर्टन, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री नहीं मिली थी और जो वर्ल्ड कप में ऑफिशिएट नहीं कर पाएगा, यूईएफए सुपर लीग का रेफरी नॉमिनेट किया गया है। ये होगा पेरिस सेंट जर्मेन और एस्टन विला के बीच। यूईएफए ने यह फैसला लिया क्योंकि ओमा आर्टन एक बहुत ही काबिल रेफरी है, अफ्रीका का लीडिंग रेफरी। पहली बार होगा कि अफ्रीका से एक रेफरी यूईएफए सुपर कप का रेफरी होगा। नॉटिंगहम फॉरेस्ट का स्टार इंटरनेशनल खिलाड़ी एलियट एंडरसन के लिए मैनचेस्टर सिटी ने इस बार 120 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा, पर इससे भी ठुकरा दिया गया, रिजेक्टेड आउटराइट। एंडरसन इंग्लैंड की टीम के साथ वर्ल्ड कप में खेलने गया है, पर सिटी और नॉटिंगहम फॉरेस्ट के बीच इंटेंस मालामाल डील हो रही है। 4 साल पहले एंडरसन लीग 2 में था ब्रिस्टल सिटी में, अब इंग्लैंड का सबसे कीमती खिलाड़ी बनने जा रहा है। मैनचेस्टर सिटी के अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड भी एंडरसन पर फिदा है, पर जितने पैसे नॉटिंगहम फॉरेस्ट मांग रहा है, यूनाइटेड रेस से हटने लगा है। न्यूकासल यूनाइटेड स्पेन के विक्टो मुनोज को साइन करना चाहता है। मुनोज ओसासुना का खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है। इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड की नजर न्यूकासल यूनाइटेड के डिफेंडर लेविस हॉल पर है, लेविस हॉल जाना चाहता है। फिर बेर्नार्डो सिल्वा के लिए एल क्लासिको रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों उसे साइन करने के रेस में है। और एथलेटिक्स में यूएसए का याकोबे टॉप 110 मीटर हर्डल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर गया। अमेरिकन कॉलेज चैंपियनशिप में ये नया रिकॉर्ड बना, 12 सेकंड्स 75। पहले रिकॉर्ड 12 सेकंड्स 80 था, जो 2012 में एरिस मेरिट के नाम था। क्रिकेट, बांग्लादेश ने इतिहास रचा, ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ओडीआई में हराकर पहली बार के लिए सीरीज अपने नाम किया। इधर अफगानिस्तान ए ने इंडिया ए को हराया। और वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप आज से इंग्लैंड में शुरू हो रहा है। इनॉग्रल मैच आज इंग्लैंड श्रीलंका के बीच। 2 ग्रुप है, ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, नेदरलैंड्स, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। ग्रुप बी में इंग्लैंड, श्रीलंका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज। टीम इंडिया का पहला मैच संडे को होगा पाकिस्तान के खिलाफ। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, वर्ल्ड कप 2026 शुरू हुआ और पहले ही मैच में मेक्सिको ने 2-0 से साउथ अफ्रीका को हराया। और अभी इसी समय मैच खेला जा रहा है दक्षिण कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच। फर्स्ट हाफ में स्कोर 0-0 था, सेकंड हाफ में गोल बनेंगे तो आपको बताएंगे जरूर। हमारा साथ दीजिएगा RN2 पर, 7:30 बजे वहां पर स्पोर्ट्स बुलेटिन लेकर आएंगे। और वर्ल्ड कप स्पेशल ये होगा 8:30 बजे RM2 पर ही। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: NBC रेडियो, हर पल आपके साथ।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।